सुप्रभात। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 20 मई 2026 सवेरे के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रथम सभा मीडियम वेव और FM पर एक साथ आरंभ हो रही है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों में रिले किया जाएगा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये 3रा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

माँ वो होती है जिसकी आंचल की छांव में हर बच्चे को सुकून की प्राप्ति होती है। माँ है तो जीवन है, माँ नहीं तो दुनिया अंधेरी होती है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कलाकार थे महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, जाकिर खां, पंकज उधास, सोनू निगम। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का चिंतन। विषय है निर्भीकता।
1: भय मनुष्य की ही नहीं, पशु पक्षी हर प्राणी की प्रवृत्ति है जो हमें अनिष्ट से सचेत करता है, हमें यही सोच के विकास का अवसर प्रदान करता है। वस्तुतः यह प्रकृति प्रदत्त एक सुरक्षा कवच है। भय के अभाव में कोई भी प्राणी अपने को पूर्ण सुरक्षित नहीं कर सकता, किंतु किसी भी भय से भयभीत हो जाना घातक है। भय दो रूप में विद्यमान रहता है, पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक। शारीरिक भय अचानक हमारे आसपास होने वाली घटनाओं एवं वातावरण से संबंधित होता है, जबकि मानसिक भय आकांक्षा एवं जीवन की सुरक्षा से संबंधित होता है। भौतिक संपन्नता बढ़ने के साथ साथ मानसिक भय बढ़ रहा है, जिसका मूल कारण विषमताएं एवं जीवन से असामंजस्य है। भयभीत व्यक्ति के मन में अनेक शंकाएं घर कर लेती हैं, जिससे उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। धीरे धीरे तनाव और अकर्मण्यता पनपने लगती है। इससे दिमागी सूझबूझ एवं निर्णय लेने की क्षमता में कमी आती है। व्यक्ति चिड़चिड़ा एवं व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है। अपने कैरियर, आजीविका एवं संतान आदि का भय व्यक्ति को निरंतर सताता रहता है। हम भयभीत रहते हैं अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में, सफर में, जिंदगी के अन्य मोड़ पर। एक तरफ किसी दुर्घटना का भय है तो दूसरी तरफ जीवन का भय। हम अपने को तब और भी मुसीबत में डाल लेते हैं जब जीवन की साधारण बातों को लेकर दुखी होने लगते हैं, जबकि सही मायने में वे अर्थहीन होती हैं। निर्भीकता जीवन को साहस, वीरता एवं जोखिम उठाने की शक्ति प्रदान करती है, जो हमारी प्रगति के लिए आवश्यक है। नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साहस, निष्ठा एवं लगन का होना अपेक्षित है। भय व्यक्ति को लक्ष्य से भटका देता है। निर्भीकता का पर्याय है उन्नति, तो भय का पर्याय है अवनति। अतः अभय होकर हमें अनवरत आगे बढ़ने का प्रयोजन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, दुख का मुख्य कारण भय है। निर्भीकता के बल से मनुष्य पृथ्वी पर ही स्वर्ग के समान सुख भोग सकता है। यदि निर्भयता पूर्वक कार्य करोगे तो तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन यदि तुम डर गए तो तुम शक्तिहीन होकर दुख के भागी बनोगे। आज का मानव अनेक विषम परिस्थितियों में फंसा है, चाहे कोई भी हो, परिवार, समाज, राष्ट्र, इन सब में विषमताएं नजर आ रही हैं। इन सब असामाजिक और अनैतिक प्रकार के तत्व इन सब पर हावी हो चुके हैं। इन सब का संचालन व्यक्ति के हाथ में है, मानव समूह के हाथ में है। उस समाज को आज तमाम आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं से खतरा महसूस हो रहा है, स्वयं से खतरा महसूस हो रहा है। चारों तरफ भय का वातावरण स्वतः ही निर्मित होता जा रहा है, जिसका परिणाम है आज की आयोजित होने वाली प्रतियोगिताएं। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है, जिसमें हर व्यक्ति दूसरे से आगे निकल जाना चाहता है। जीवन असुरक्षित है, यह शाश्वत सत्य है। जीवन है तो एक दिन मृत्यु आएगी ही, यह निश्चित है। आज आप सफल हैं तो कल असफलता का भी मुंह देखना पड़ेगा। आशा के साथ निराशा और शुभ के साथ अनिष्ट का प्रादुर्भाव भी होगा। जीवन है तो कष्टों एवं बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा। फिर हम सिर्फ सुख और मंगल ही क्यों चाहते हैं? जो शाश्वत है उसे नकार कर हम भय को और बढ़ा लेते हैं, ओशो ने कहा। वे जो बड़े पदों की खोज में हैं, बड़े धन की खोज में, बड़े यश की खोज में लगे हैं, वे सिर्फ सुरक्षा खोज रहे हैं। भीतर एक भय है, इंतजाम कर लेना चाहते हैं, भीतर एक दीवार बना लेना चाहते हैं ताकि कोई डर न रहे। कल बीमारी आए, गरीबी आए, भिखमंगी आए, मृत्यु आए, कोई डर नहीं है, सब इंतजाम किए करते हैं। भय है, भय की सुरक्षा के लिए हम सब उपाय कर रहे हैं। क्या ऐसे कोई आदमी अभय हो सकता है? सुरक्षा की व्यवस्था अभय होने का रास्ता नहीं है, असुरक्षा की स्वीकृति अभय होने का रास्ता है। जीवन असुरक्षित है, इसकी परिपूर्ण स्वीकृति मनुष्य को अभय कर जाती है। समय अनुसार अपनी परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाकर काफी हद तक हम भय मुक्त हो सकते हैं। भाग्य स्वयं के कर्म से बनता बिगड़ता है, अतः भाग्य के भरोसे बैठे नहीं, असफलता मिलने पर निराश न हो, प्रगति के लिए व्यापक क्षेत्र है, सारे दरवाजे खुले हैं, प्रकृति के साधन विकास की एक कहानी छुपाए हुए हैं। अतः भय की ऊर्जा को नए जोश से, नई प्रेरणा एवं उत्साह से उन्नति में बदलें।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, विषय था निर्भीकता। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश, जानकारी गुणकारी सहजन, जानकारी दे रहे हैं असीम सक्सेना।
2: श्रोताओं, गुणों का खजाना है सहजन, जिसे मोरिंगा भी कहा जाता है। आमतौर पर लोग सहजन का प्रयोग केवल उसकी सब्जी बनाने के लिए करते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए और भी कई तरीकों से फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग एक प्रमुख औषधि के रूप में किया जाता है। सहजन के पेड़ को सेहत के लिए वरदान माना जाता है। सहजन यानी मोरिंगा का इस्तेमाल एक दवा के रूप में प्राचीन काल से होता रहा है। इसका पाउडर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। कई लोग तो सहजन को सुपर फूड भी कहते हैं, जो सेहत के लिए न सिर्फ फायदेमंद है बल्कि ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। सहजन में सभी जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइकोथेरेपी रिसर्च में ये जानकारी सामने आई है कि सहजन में संतरे की तुलना में 7 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है और गाजर की तुलना में 10 गुना ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। इतना ही नहीं, दूध के मुकाबले मोरिंगा में यानी कि सहजन में 17 गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है और साग के मुकाबले 25 गुना ज्यादा आयरन पाया जाता है। तो है ना कितना उपयोगी ये सहजन। मोरिंगा में फाइटोकेमिकल्स पाया जाता है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने का काम करता है, कम करता है ब्लड शुगर को। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं जो पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मोरिंगा में आयरन की मात्रा भरपूर होती है, जिसकी वजह से हेल्थ एक्सपर्ट्स एनीमिया दूर करने के लिए इसके इस्तेमाल की सलाह देते हैं। इसमें खूब सारा प्रोटीन, एमिनो एसिड, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ई पाया जाता है। इसका पाउडर चेहरे पर जादू की तरह काम करता है। ये मुहासों को दूर करता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। सहजन मोरिंगेसी वृक्ष परिवार से संबंधित है। ये तेजी से बढ़ने वाला सदाबहार पेड़ है जो ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उगता है। भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके प्रत्येक भाग में मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक गुण होते हैं। ये महत्वपूर्ण पोषण संबंधी जड़ी बूटियों में से एक है। सहजन महत्वपूर्ण खनिज और पोषक तत्वों की बड़ी और दुर्लभ किस्म प्रदान करता है। सहजन के कंद, पत्ते, फूल, छाल, जड़ और बीज में बायो एक्टिव यौगिक होते हैं। सहजन का प्रयोग कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकता है। इसमें एंटी सीजर के गुण होते हैं। ये एंटी अस्थमैटिक हो सकता है, सूजन को कम करने में मदद करता है और एंटी पैरासाइटिक

0: के रूप में भी काम करता है। इसमें एंटी फंगल गुण भी होते हैं। ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है और किडनी की पथरी को कम करने में सहायता प्रदान करता है। ये लीवर को क्षति से बचाता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। इस पौधे के विभिन्न भाग उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। सहजन के पत्ते के रस में एंटी डायबिटीज गुण मिलते हैं जो हमारे ब्लड ग्लूकोज के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। सहजन की छाल, पत्तियां, बीज, फूल और जड़ों में ड्यूरेटिक गतिविधियां होती हैं जो किडनी डिसफंक्शन वाले रोगियों में पेशाब के बनने में सहायक होती हैं। जब इसे तिल के तेल के साथ मिलाया जाता है तो सहजन द्वारा उत्पादित गम पाचन संबंधी समस्याओं, सिरदर्द, दस्त, बुखार और अस्थमा जैसी बीमारियों में मददगार साबित होता है। सहजन के बीज अम्लीय होते हैं और उनमें कई उत्तेजक होते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए सहायक होते हैं। तेज बुखार के लिए सहजन की फलियां उपयोगी हो सकती हैं। सहजन के पत्ते का रस हिचकी रोकने में मदद कर सकता है। सहजन की सूखी जड़ की छाल से पाइल्स, गाइटर और अंदरूनी फोड़ा के इलाज में मदद मिलती है। लेकिन विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि सहजन का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से परामर्श कर लेना बहुत जरूरी है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। जानकारी गुणकारी सहजन। जानकारी दे रहे थे असीम सक्सेना। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर के बाद 6:45 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान भाग संख्या 303। कलाकार होंगे शोभना राव, संगीत सतीश भाटिया का होगा। सात बजे सुनिएगा अमृत कलश। सूचना अधिकार के 21 वर्ष पूरे होने पर भेंटवार्ता उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त श्री स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता से। भेंटकर्ता होंगे असीम सक्सेना। 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सवेरे।

8:45 पर सुनिएगा 102.9 मॉर्निंग हिट्स नए फिल्मी गीत। 9:25 पर कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग में आप सुनेंगे भगवान बुद्ध के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग। नौ बजकर 50 पर उप शास्त्रीय संगीत में रुद्र वीणा वादन आप सुन सकेंगे राग तोड़ी में, कलाकार होंगे बहाउद्दीन डागर। 10:05 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

10:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग पेश किया जाएगा और 11:00 सुनिएगा कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत धारावाहिक जिंदगी के आईने में कड़ी संख्या 7। कार्यक्रम मन भावन में एक ही गीतकार के अंतर्गत सुनिएगा गुलजार के लिखे कुछ फिल्मी नगमे। 12:10 पर कार्यक्रम गीत आपके नाम पेश किया जाएगा। एक बजकर 15 पर सुनिएगा लोकगीतों का कार्यक्रम धरती गाती है। कलाकार होंगे मदन मोहन ब्रिजवासी। 1:30 पर कार्यक्रम कुमकुम पेश किया जाएगा और 2:30 पर सुनहरा दौर के अंतर्गत 80 के दशक के फिल्मी नगमे आप सुन सकेंगे। ये था संक्षिप्त विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग संख्या 303। कलाकार हैं शोभना राव, संगीत सतीश भाटिया का है।
1: एपिसोड नंबर 303 303।

लंका में श्री राम के वानरदीज सेनानियों ने उत्पात मचा दिया है। मंदोदरी की अपने पति रावण से प्रार्थना है कि वो विषय भोग छोड़कर उन प्रभु की शरण में चला जाए, कौशलाधीश की दया उसे प्राप्त हो जाएगी।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्रीमोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्ध कला परम्परायाः उत्सवे, भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः, नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.8 शताधिक 79,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्ण विद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्यसर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघा परम्पराणि प्रवर्तयितुम् अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत कलश। भेंटवार्ता उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त श्री स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता से। भेंट करता है असीम सक्सेना।
3: श्रोताओं नमस्कार, ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है आकाशवाणी के लिए और आकाशवाणी से जुड़े लोगों के लिए। 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा राष्ट्र सेवा के विशिष्ट स्तर को स्पर्श करते हुए आकाशवाणी ने तय की है। पूरे देश भर को एक सूत्र में जोड़ा है, संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है, साहित्य का संवर्धन किया है और कलाकारों को प्रोत्साहित किया है। इन 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी का उद्देश्य रहा सूचना, शिक्षा, ज्ञान और मनोरंजन का प्रसार। लोक प्रसारक की भूमिका को भी आकाशवाणी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाया और इस यात्रा में आकाशवाणी के साथ कई ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो दिल से साहित्यकार हैं, कवि हैं और कर्म क्षेत्र में वो इस समय उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त हैं। राज्य सूचना आयुक्त श्री स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी का हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस यात्रा में आपका भी लगभग 45 से अधिक वर्षों का साथ रहा है, तो इन 90 वर्षों की यात्रा को अपने जहन में रखते हुए कौन कौन सी यादें आज आपके भीतर उमड़ रही हैं, शुरुआत वहीं से करेंगे सर।
4: जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने और यहाँ आकर मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था, मैं 16-17 वर्ष की आयु यानी लगभग 79-80 से
3: जी
4: आकाशवाणी रामपुर से जुड़ गया। मैंने आकाशवाणी की के महत्व के, आकाशवाणी की प्रासंगिकता के उच्च स्तरीय मानबिंदुओं को बहुत निकट से देखा है। आज भी आकाशवाणी प्रासंगिक है, लेकिन आज आकाशवाणी भी प्रासंगिक है, उस समय आकाशवाणी ही प्रासंगिक होती थी, कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आप जब यहाँ से रिकॉर्डिंग करा के अपने शहर में जाते थे तो लोगों को पता लगता था, अखबार में भी छपता था कि स्वतंत्र प्रकाश की या जो भी आया है कलाकार उसकी रिकॉर्डिंग है, तो सेलिब्रिटी फील होता था उसे। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, आज का संभल, अमरोहा, इन जिलों में कलाकारों को आकाशवाणी रामपुर ने, कवियों को, शायरों को, साहित्यकारों को न केवल

0: पैदा किया, तरीके से उनका संरक्षण भी किया। अब मैं अपनी बताऊं, मैं औरों का उदाहरण क्या दूं, 16 वर्ष मैं बीए कर रहा था उस समय, मेरे एक मित्र आकाशवाणी से प्रसारित हुए थे, तो उनको जो ट्रीटमेंट मिला उसे देख के मैं भी अभिभूत हुआ। चूंकि वो मेरे खास मित्र थे तो उन्होंने मुझे तरीका पूरा बताया और ये कहा कि अगर आप कोई पहले पद भेजेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी स्वीकृत होता है। तो आप ये जानिए, आकाशवाणी रामपुर के लिए ही मैंने गज़लें लिखी थी, उसी वक्त गज़ल लिखी थी। उसके बाद फिर मैं ज़्यादा काव्य लेखन में मेरी काव्य सुनने में रुचि रही, लेखन में रुचि नहीं रही, मैं गद्य में लिखता था, उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी। तो आप समझिए कि आकाशवाणी रामपुर ने मेरे अंदर का कवि जागृत कर दिया। और यहाँ आकर वो पहली बार जब मैंने, मुझे आज सारा दृश्य याद आ रहा था, कैसे मुझको कैश में रुपए मिले थे, चेक में भी नहीं, और कैसे बदायूं से बरेली और बरेली से रामपुर आना हुआ था। तो मैं समझता हूँ आज मैं जो कुछ लिख पा रहा हूँ, मैंने कई उपन्यास लिख दिए, तो इसके मूल में कहीं ना कहीं आकाशवाणी रामपुर है। और ये मुझ जैसे जाने कितने, इसकी संख्या अनगिनत है, जिसको आकाशवाणी रामपुर ने पैदा किया, उनके अंदर का साहित्यकार जीवित किया, उनके अंदर का कलाकार जीवित किया। मैं आज 90 वर्ष की इस यात्रा में, जिसमें आधी यात्रा का साक्षी मैं भी हूँ, आकाशवाणी रामपुर को उन सब परिवारों की ओर से जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े रहे, हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ।
1: तो इन 90 वर्षों में जिन लक्ष्यों के साथ आकाशवाणी शुरू हुआ था, आपको क्या लगता है कि उस यात्रा में आकाशवाणी क्या सफलता के साथ उन उद्देश्यों को पूरा कर पाया है?
0: इस प्रश्न का उत्तर मैं बिना किसी संकोच के दूंगा कि निश्चित ही आकाशवाणी ने वो काम करके दिखाया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आकाशवाणी प्रसार भारती कहीं ना कहीं केंद्रीय या राज्य के वित्त पोषित संस्था है। इसके बावजूद अगर आज आम जनमानस में किसी की प्रामाणिकता है तो आकाशवाणी की ही है। ये आपकी वास्तविक कमाई है, किसी संस्था की प्रामाणिकता ही उसकी वास्तविक कमाई होती है। आज के दौर में जब कई एजेंसियां, मैं नाम नहीं लेता, जिनसे जिनका संपर्क था आम आदमी से, वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, और आकाशवाणी 90 साल से पहले दिन से आज तक अपनी विश्वसनीयता कायम किए हुए है, ये निश्चित ही इतनी बड़ी उपलब्धि आकाशवाणी इतिहास की है जो याद रखी जाएगी और समाज के लिए वरदान के रूप में साबित होती है।
1: उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त हैं आप, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम ने भी 20 सालों की यात्रा पूरी कर ली है और सफलता के साथ वो आगे की ओर बढ़ा है।
0: देखिए, हम 20 साल पूरे कर चुके, 21वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो आपने उत्तर प्रदेश का संदर्भ कहा, तो मैं आपको बढ़िया खबर ये सुनाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ के सूचना आयोग में सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। यानी अब आसान शब्दों में समझ लीजिए, एक आम आदमी जो ट्रेन पे या बस पे सफ़र करके लखनऊ तक जाकर अपनी बात कहता था, उसे अब ये अपनी बात कहने के लिए, यानी द्वितीय अपील की सुनवाई के लिए लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं है। और न केवल अपीलार्थी, बल्कि जो हमारे अधिकारी थे उनकी पूरी एनर्जी वेस्ट होती थी। दोनों ही पक्षों को ये अधिकार है कि सुबह उन पर लिंक आ जाता है और वो अपने घर से ऑनलाइन जुड़ जाते हैं, हमारे सामने स्क्रीन पर उनका फेस आता है, और जैसे सहजतापूर्वक सुनवाई कोर्ट में, आयोग कक्ष में होती थी, वैसी सुनवाई आराम से होती है। इस बात के लिए, इस काम के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग वाकई जनता के लिए ज़्यादा ही सहूलियत का एक
1: क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रयास है। आपके नेतृत्व में ही वही कार्य पूरा हुआ है। निश्चित रूप से एक सहूलियत उस आम आदमी को
0: बड़ी
1: मिली है,
0: जी, बड़ी सहूलियत
1: जिसके लिए ये आयोग काम कर रहा है।
0: और जो
1: है।
0: उसकी स्प्रिट में भी था, जब हमने शुल्क केवल 10 रुपए रखा है,
1: जी जी,
0: अब शुल्क तो 10 रुपए है और भाग दौड़ में उसके 10,000 खर्च हो जाए तो कोई मायने नहीं रखता। दूसरा, आपने जो सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में पूछा, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं विधि का छात्र हूँ, आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा अधिनियम है जिसने भारत के नागरिक को मत, जो वोट का अधिकार है, राइट टू वोट है, एक इतना ही महत्वपूर्ण अधिकार दिया है। बाकी जितने अधिनियम बने हैं वो किसी के अधिकारों को लेकर हैं, किसी के दंड को लेकर हैं, किसी के रोक को लेकर हैं, लेकिन ये सूचना अधिकार अधिनियम 2005 RTI एक्ट जिसे कहते हैं, ये पहला ऐसा एक्ट है जिसने आम आदमी को, केवल भारत का नागरिक हो, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेकर उसे वही अधिकार मिल जाता है प्रैक्टिकली अगर आप देखें, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संसद में खड़े होकर मिलता है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को विधान परिषद या विधानसभा में खड़े होकर मिलता है। इतना बड़ा अधिकार मिलता है, वो पूछ सकता है, वो कह सकता है, वो जान सकता है। तो ये जो पारदर्शिता बनी है, इस पर निश्चित ही आम आदमी को प्रशासन से जुड़ाव अनुभव हुआ है, प्रशासनिक कार्य या विकास के कार्य हैं उससे उसका जुड़ाव बनता है, और ये बाकी क्रांतिकारी है। 21 साल की या 20 साल से अधिक की जो यात्रा है, इसमें लोगों में बहुत जागरूकता सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर पैदा हुई।
1: जैसा कि आपने कहा कि पारदर्शिता उद्देश्य था और जवाबदेही सुनिश्चित करना ये प्रयास रहा, और इसमें पर्याप्त सफलता भी आपने प्राप्त की है, और इसके चलते आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन भी आए हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुआ है और रास्ता बड़ा आसान हो गया है, लेकिन चुनौतियाँ भी साथ साथ चलती हैं।
0: देखिए, हर चीज़ का कहते हैं ना, वही चाकू डॉक्टर इस्तेमाल करता है, वही चाकू लुटेरा इस्तेमाल करता है। चाकू तो रामपुरी एक ही है
1: जी,
0: लेकिन उसका प्रयोग करने का तरीका अलग है। ठीक ऐसे ही आरटीआई को लेकर है। आरटीआई एक आम आदमी जो कोई जानकारी चाहता है उसके लिए एक माध्यम बनाया गया, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने इसका इतना दुरुपयोग कर दिया, और उनका उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना नहीं है, उनके उद्देश्य कुछ अन्य है, जिनको ऑन एयर यहाँ कहना ठीक नहीं है। तो एक माहौल बनाया उन्होंने आतंक का, और फिर ऐसे सब बात। तो इसके लिए हमने रोक की है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे कई ऐसे व्यवस्थाएं दी हैं कि इस तरीके का कोई व्यक्ति है जो रिपीट करके बड़ी संख्या में सूचनाएं मांगता है, तो उस पर अलग से ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, हमारा उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 और 2019, मैं सबसे कहता हूं उसका भी अध्ययन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने अपनी जो व्यवस्थाएँ की हैं वो बहुत बढ़िया हैं, उनमें इन बातों पर भी अंकुश लगाने का प्राविधान है। जैसे कि सूचना का आकार 500 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। लोग पहले 5-5, 6-6 पेज की सूचना मांगते थे, एक्ट में कुछ था नहीं। अब उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली ने यह कह दिया कि 500 शब्दों से अधिक का अगर आवेदन है तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। प्रश्नवाचक, जिसमें आप औचित्य पूछ रहे हो कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, आकाशवाणी रामपुर ऐसा क्यों करती है, अब सूचना में अगर आ जाए तो वैसी बात है कि जिसको जिसमें लोग आतंकित हो सकते हैं, उस पर भी रोक लगा दी। यहाँ तक बहुत आरटीआई डालकर कुछ अन्य उद्देश्य प्राप्त करने की बात है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी सफलता मिली है, हमने रोक लगाई है। हमारी आपके माध्यम से भी उन लोगों से ये अपील है, कृपया आरटीआई का माहौल ख़राब ना करें। आप लोगों के कारण जो आम आदमी है उसको आरटीआई मिलने में देर लग जाए।
1: आयुक्त महोदय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भारत की अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी भी बड़ी देर से मिलती है, या फिर उनकी जागरूकता में कहीं कुछ कमी रह जाती है, तो इस अधिकार के प्रति जागरूकता के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास?
0: बड़ा मज़ेदार प्रश्न है आपका। थोड़ी सी तो मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ, जो काम मैं हम कर रहे हैं
1: जी।
0: शहरी क्षेत्र के अलावा हमारे यहाँ जो आवेदन आते हैं वो ग्रामीण लोगों के ही ज़्यादा होते हैं। आरटीआई चूंकि एक लंबा सफ़र हो गया तो पूर्ण जागरूकता है, और ग्रामीण क्षेत्र में आपको जान के बड़ा प्रसन्नता होगी, और अधिक जागरूकता है। इसके अलावा हमारा सबका प्रयास ये रहता है कि एक तो जितने सरकारी कार्यालय हैं जहाँ से आरटीआई आवेदन जहाँ दिया जा सकता है, उन सबको निर्देश दिया गया है कि वो सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी अपने ऐसी दीवार पर लिखवाएं जो सहज रूप से व्यक्ति की पहुंच में हो, इसका भी लाभ मिलता है। अब यहाँ तक के जो ग्राम पंचायत, हर गांव में ग्राम पंचायत का कार्यालय बना है जिसको ग्राम सचिवालय कहते हैं, वहाँ पर भी सब लिखा गया है कौन सूचना अधिकारी है, कौन प्रथम अपीलीय अधिकारी है
1: जी।
0: तो जागरूकता है, और इन 20-21 साल में खूब जागरूकता हुई है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा सहभागिता कर रहे हैं। और तो और, आपको जान के बड़ा प्रसन्नता होगी कि अपने बीपीएल कार्ड का भी प्रयोग कर रहे हैं। 10 रुपये पोस्टल ऑर्डर की जगह वो अपने बीपीएल कार्ड की फोटो स्टेट लगाते हैं, वो 10 रुपये का जो शुल्क है उससे भी एग्जेम्प्टेड है
1: जी।
0: तो बड़ा प्रसन्नता होती है, ग्रामीण क्षेत्र का आदमी खूब जानकारी ले रहा है।
1: मतलब जिन उद्देश्यों के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था, लगभग लगभग हम
0: बेशक
1: सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भविष्य में कुछ और सुधार या कुछ और परिवर्तन की गुंजाइश है, क्योंकि आपने इन सालों में बहुत कुछ अनुभव किया हो?
0: मैं व्यवहारिक बात आपको बताता हूँ। जिस समय एक्ट लागू हुआ उस समय जुर्माना सन 2005 में 25,000 था
1: जी।
0: आज भी कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, जुर्माना 25,000 ही रहे है। अब ये 25,000 राशि यहाँ आज के दौर में इतनी कम हो गई है जो ज़्यादा भय पैदा नहीं करती, एक जिम्मेदारी पैदा नहीं करती। इसके अलावा जो शुल्क है, 10 रुपये का शुल्क है, इसमें भी कुछ संशोधन किया जा सकता है। बाकी समय के अनुसार जिन संशोधनों की मांग है दो एक बात चीज़ें, जैसे कि एक्ट में भी कुछ चीज़ें ऐसी जो कन्फ्यूजिंग हैं उनको दूर करना चाहिए। इसके अलावा बाकी जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य जो था सूचना अधिकार अधिनियम का, वो पारदर्शिता, पारदर्शिता काय के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए। तो मैं ये तो नहीं कहता कि आरटीआई एक्ट के माध्यम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लग गया, लेकिन आपके माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हर आदमी को काम करते समय कहीं ना कहीं आरटीआई का भय जरूर रहता है, और मैं सोचता हूँ यही हमारे अधिनियम की सफलता भी।
1: जिस कुशलता के साथ आप इस समय सूचना आयोग का नेतृत्व कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के सूचना आयुक्त पद पर रहते हुए, आपने बहुत कुछ परिवर्तन किया है, वो परिवर्तन जनहित में भी बहुत काम आया है।
0: बस यही लगता है कि जो व्यक्ति हमारे पास तक आया है उसको उचित सूचना मिल जाए, इसी उद्देश्य के साथ हम अपना काम शुरुआत करते हैं। और मुझे बड़ा प्रसन्नता है, मेरा 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, इन 2 वर्षों में 90% से अधिक का परिणाम है हमारा, जिसमें हमने उचित सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचाई हैं।
1: हमारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपके प्रयास सफलता तक पहुंचे हैं। आज आकाशवाणी रामपुर के इस माइक्रोफोन के जरिए बहुत सारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, क्या संदेश है आपका उनके लिए?
0: सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर मेरा उत्तर प्रदेश या जो भी मेरी आज बात सुन रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि ये बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र अधिनियम है। पवित्र शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसा मैंने कहा कि चाकू के 2 उपयोग हैं, सूचना मांगिए, सजग रहिए, लेकिन सूचना को किसी को परेशान करने का टूल मत बनाइए प्लीज।
1: क्या
0: उससे फिर जो आम आदमी को सूचना चाहिए वो लाइन में बहुत पीछे हट जाता है। तो बाकी ये है, कोई निर्माण कार्य भी चल रहा है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, और उसमें जो ईंट लग रही है वो उस गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है जो आपकी जानकारी में लगनी चाहिए, तो आपस में चर्चा करके अपनी ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय आप 10 रुपए का पोस्टर आर्डर खरीद के जरूर इस सूचना को लीजिए कि ये विकास कार्य हो रहा है, ये गुणवत्तापूर्ण हो रहा है, मानक के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अधिनियम दिया है, इसका इसका जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए जो भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हों वो जरूर उपयोग करें, इसका अध्ययन करें और इसका उपयोग करें। आज इसको और आसान कर दिया गया, सब कुछ यानी आवेदन से लेकर अपील की सुनवाई तक सब आप अपना घर बैठे कर सकते हैं, तो जरूर इसका लाभ उठाएं।
1: उत्तर प्रदेश राज्य के सूचना आयुक्त के पद को सुशोभित करते हुए जिस तरह से आपके नेतृत्व में आयोग संचालित है, इसका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, ये प्रयास जारी रहेंगे और आप सफलतापूर्वक निश्चित ही उन बातों को कर पाएंगे जो आपके मन में है। यहाँ आने के लिए, हमें समय देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के सूचना आयुक्त महोदय श्री स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत कलश भेंट वार्ता, सूचना अधिकार के 21 वर्ष पर भेंट वार्ता उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त श्री स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता से, भेंट करता थे असीम सक्सेना। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:18 हुए हैं। अब अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: दूसरी जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा ये मंच। कल से करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बताते हुए लोगों से अनावश्यक अतिरिक्त खरीदारी न करने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की दी अनुमति। लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जन कल्याण, सुशासन और क्षेत्रीय विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष तौर से चर्चा की गई। बैठक से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने इसे सहकारी संघवाद, समन्वित विकास और राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल को नई दिशा देने वाला मंच बताया। श्री योगी ने कहा कि ये मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल से लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपये प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 98.73 रुपये से लेकर 92.21 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। एक रिपोर्ट।
3: यह बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और LPG की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। LPG सिलेंडरों की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
2: प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। इस समय राज्य में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन DAP सहित कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है।

0: में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दे दी है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। उन्होंने बछरावा में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया। श्री गांधी ने रायबरेली में PSC के 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का भी उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद आज भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुआई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। प्रदेश के कई जिलों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो गई हैं और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दिन चढ़ते ही सड़कें सूनी हो जा रही हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी।
0: भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और संबंधित सभी राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। IPL क्रिकेट में जयपुर में हुए मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। कल शाम को हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। इसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 220 रन बनाए। जवाबी बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने

0: 19 ओवर और एक गेंद पर 3 विकेट खोकर 225 रन हासिल कर अपनी जीत दर्ज कर ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा ये मंच। कल से करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बताते हुए लोगों से अनावश्यक अतिरिक्त खरीदारी न करने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की दी अनुमति। लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हुए हैं। पेशे खिदमत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कीजिए कबूल तरन्नुम का प्यार भरा आदाब व सलाम। श्रोताओं, मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है और अब हम सबको बहुत तेज गर्मी के आने का एहसास भी होने लगा है। लू के थपेड़ों, गर्म हवा, शिद्दत की धूप होने लगी है। ऐसे में अपना और अपनों का ख्याल बहुत अच्छे से रखिए। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों, ताज़े फल, तरबूज, खीरा, ककड़ी, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा सुपाच्य भोजन और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। साथ ही छाछ, लस्सी, शिकंजी, नींबू पानी और गन्ने का जूस जो भी मिल सके पिए, और कच्चे आम, नींबू, पुदीने का पना भी इस तपती गर्मी में आपको लू के थपेड़ों और बुखार से बचाता है। तो अपने परिवार का खूब ध्यान रखें और जो बेजुबान जानवर हैं उनके लिए भी दाने पानी का इंतज़ाम ज़रूर करें, क्योंकि श्रोताओं, ये प्रकृति हमें सब कुछ देती है। तो हमारा भी फर्ज है कि हम सब भी इस प्रकृति में रहने वालों का ध्यान रखें, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, उन खूबसूरत नन्हे मुन्हे पक्षियों, हमारे आसपास के जानवरों का भी इस तपती गर्मी में ख्याल रखें, क्योंकि ये कुदरत भी तो हमारा ख्याल रखती है। जितना ज़्यादा खुशहाली हर तरफ होगी, उतना ही खुशहाल होगा हमारा और आप सबका जीवन।

0: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे अपने रेडियो साथी तरन्नुम के साथ। श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर हमने बात की अपने एक बहुत ही पुराने श्रोता से, तो आइए सुनते हैं उनकी और आकाशवाणी के रिश्ते की कहानी उनकी अपनी जुबानी।
1: जी नमस्कार सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अपना परिचय दीजिए आप।
2: जी, मेरा नाम ठाकुरराम यादव है।
1: जी,
2: मैं छत्तीसगढ़ के जिला कांकेर के छोटे से ग्राम संबलपुर में निवास करता हूँ मैडम जी।
1: अच्छा सर, रेडियो से आप कब से जुड़े हुए हैं ये बताइएगा हमारे श्रोताओं को।
2: सुनना तो मैडम जी मैंने बचपन से ही रेडियो सुन के बड़ा हुआ है, प्रकार से बोल सकते हैं, लेकिन एक्टिव रूप से जहाँ तक कि मैं 81 से सुनना प्रारंभ किया है और रेडियो के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने का सिलसिला 86 से मैंने चालू किया है।
1: अच्छा सर, रेडियो सुनना आपको कैसा लगता है और हमारे कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आप बहुत दिल से सुनते हैं?
2: रेडियो मैडम जी मेरा जीवन का अंग बन गया है। ऐसा लगता है कि इससे बिना शायद अधूरा सा सारा जीवन लगता है। और इसमें आपके यहाँ आकाशवाणी धामपुर से गीत गाते चल है, आपके अनुरोध पर है, गीत आपके नाम है, हेलो फरमाइश है और श्रोता मंच है, और खास करके युवाणी के जो आज का सवाल रहता है बहुत इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक रहता है मैडम जी।
1: और आपके परिवार में किस किस को रेडियो सुनने का शौक है?
2: जी मेरे साथ साथ मेरी श्रीमती जी है, वो भी रेडियो सुनती है। अभी के जो बच्चा है मेरा, थोड़ा सा ऐसा है कि उसका जुड़ाव नहीं हो पाया है, चलता जरूर है लेकिन उसका इसमें इंटरेस्ट उतना रह नहीं पाता। मैं तो बोलता भी हूँ उनको कि आप थोड़ा रेडियो से जुड़िए, आपको इसमें नित नई नई जानकारी मिलेगी आपको।
1: जी
2: तो क्या थोड़ा सा जुड़ाव हो रहा है, समाचार वगैरह आजकल सुनने लगा है।
1: और रेडियो पर तो वैसे भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो हमारे बच्चों के लिए भी आते हैं, जैसे कि सुबह में कलियां आता है तो उसमें भी बहुत सारी, छोटे बच्चे हैं अगर तो उनके लिए भी, नन्हे मुन्नों के लिए कविताएं हैं, कलियां कार्यक्रम जो आता है उसमें कविताएं आती हैं और काफी कुछ नॉलेज जो है उस कार्यक्रम में भी दी जाती है। कुछ और जानकारी साझा करिए आपकी और रेडियो के साथ रिश्ते की।
2: मैं तो यही बोलना चाहूंगा मैडम जी कि अपना आकाशवाणी है ये कार्यक्रम क्या है कि अपने किसी भी प्रकार के समाचार को सनसनीखेज के तरीके से प्रस्तुत ना करके निष्पक्ष और प्रामाणिक रूप से खबर प्रदान करके बहुत बड़ी बात है। और अपने जो क्षेत्रीय कार्यक्रम है, शास्त्रीय संगीत है, इसको जनमानस तक की आसानी से पहुँचा रही मैडम जी। और एक बड़ी और बात है, किसानों के लिए जैसे मौसम की जो सटीक जानकारियां हैं, उन्नत खेती के जो तरीके हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में बहुत सुंदर जानकारी दी जाती है, खास करके कृषि जगत में। और एक बात और बात बोलना चाहूंगा मैडम जी कि भारत में भी ऐसे बहुत सारे दूरस्थ अंचल है जहाँ और माध्यम जैसे इंटरनेट वगैरह पहुँच नहीं पाई है, तो वहाँ भी आकाशवाणी कभी भी जीवन रेखा का काम कर रही मैडम जी।
1: काफी कुछ जानकारियां उनको मिल जाती है जहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुंचा है, वहाँ पर भी आप रेडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां, जैसे कि कृषि के क्षेत्र में है या शिक्षा के क्षेत्र में है या देश विदेश की कुछ भी जानकारियां है, न्यूज है, वो सब उनको सुनने को आराम से मिल जाती है।
2: जी।
1: सर एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि पहले के समय से अब के समय में जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की करी है और हर जगह टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ परिवर्तन हुए हैं, तो इस क्षेत्र में आप रेडियो पर कैसा परिवर्तन महसूस करते हैं टेक्नोलॉजी के आ जाने से?
2: अब मैं एक बात बोलना चाहूंगा मैडम जी कि पहले हम लोग जैसे मीडिया में के जो कार्यक्रम होते थे वो रात में सुन पाते थे, तो अभी जब से प्रसार भारती का न्यूज ऑन AIR आया है तब से भारत के किसी भी कोने से कोई भी आकाशवाणी केंद्र कार्यक्रम को इस पर सुन पा रहे हैं, जो कि मेरी नजर में बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है श्रोताओं के लिए।
1: अच्छा सर, आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तो इस खुशी में आप हमारे सभी श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं कुछ बोलना तो चाहूंगा मैडम जी, लेकिन मैं जो बोलना चाहूंगा मैं अपने शब्दों में
1: जी सर,
2: वो मैं बोल रहा हूँ कि आकाशवाणी के जो 90 साल पूरे होने की है ना मैडम, वो हमारे लिए बहुत ही आत्मगौरव और आत्मसम्मान का विषय है।
1: जी जी,
2: जिसने ध्वनि के माध्यम से जन चेतना शिक्षा समाचार जन जन तक के पहुँचाने में सुगढ़ और सुदृढ़ माध्यम का साधन बना है, और इन सब कार्यों के लिए आकाशवाणी से धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं कहना चाहूँगा कि आकाशवाणी रामपुर और तमाम आकाशवाणी केंद्र ऐसे ही उन्नत होते रहें, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और श्रोताओं से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमें फरमाइशी कार्यक्रमों के अलावा, अधिकतर मैं तो ऐसा बोलना नहीं चाहूँगा कि फरमाइशी कार्यक्रम में रुचि लेते हैं, लेकिन फरमाइशी कार्यक्रम के अलावा हमारे आकाशवाणी केंद्र विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी, कृषि संबंधी जानकारियाँ जो प्रदान की जाती है उनको सुने और उससे अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करें तो बहुत अच्छा होगा।
1: जी सर, बहुत सारी जानकारियाँ हर क्षेत्र में, मैं कहूँगी कि हर क्षेत्र की जानकारियाँ आकाशवाणी आप तक पहुँचाने की कोशिश करता है, तो आप सब ध्यान से सुने और अच्छे से इन कार्यक्रमों का आनंद लें। कार्यक्रम में बात करने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

श्रोताओं, अब बात करते हैं आज की और आज के इतिहास की और जानते हैं देश और दुनिया में घटित होने वाली आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 1995 में रूस द्वारा मानव रहित अंतरिक्ष स्पेक्ट्र का सफल परीक्षण आज ही के दिन किया गया था। सन 2000 में फिजी में बंदूकधारियों के नेता जॉर्ज स्पेट ने देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 1498 में वास्को डिगामा भारत के दक्षिण छोर कालीकट के तट पर आज ही के दिन पहुंचा था और 1609 में विलियम शेक्सपियर की कविताओं का पहला संग्रह प्रकाशित किया गया था। 1784 में पीस ऑफ पेरिस संधि के तहत नीदरलैंड ने भारत और इंडोनेशिया में अपने कब्जे वाली कुछ जगहें ब्रिटेन को दे दी थीं। सन 1902 में क्यूबा को अमेरिका से आज़ादी मिली थी और अमेरिका ने 1899 में स्पेन के साथ युद्ध के दौरान क्यूबा पर कब्जा कर लिया था। अब बात करते हैं आज के दिन जन्मे कुछ व्यक्तियों के बारे में। 1941 में गोह चोक होंग सिंगापुर के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनका जन्म आज के दिन हुआ है। 1926 में गोदे मुरहारी छठवीं लोकसभा के लोकसभा उपाध्यक्ष थे जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ है। पीरू सिंह 1918 में जन्मे भारतीय सेना के वीर अमर शहीदों में से एक थे। सन 1900 में सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध हिंदी कवि जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ है और 1910 में राम किंकर बैज पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार थे जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ है। आइए जानकारी लेते हैं आज हुए कुछ निधन के बारे में। 1766 में मल्हार राव होलकर इंदौर के होलकर वंश के प्रवर्तक थे जिनका निधन आज के दिन हुआ है और 1994 में कासू ब्रह्मानंद रेड्डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, उनका निधन भी आज ही के दिन हुआ है। और 1929 में राजकुमार शुक्ल स्वतंत्रता सेनानी एवं चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख लोगों में से एक था जिनका निधन आज ही के दिन हुआ है। श्रोताओं, आज हम एक महत्वपूर्ण दिवस मना रहे हैं। ये दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को हम विश्व मधुमक्खी दिवस के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य पॉलिनेशंस के महत्व को उजागर करना, उन्हें विलुप्त होने से बचाना और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागकणों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार विश्व की लगभग 75% खाद्य फसलें परागण के लिए इन्हीं पर निर्भर करती हैं। मधुमक्खियां न केवल शहद प्रदान करती हैं बल्कि जैव विविधता और पर्यावरण के स्वास्थ्य को संतुलित रखने में भी सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। इस दिन के इतिहास की यदि बात करें तो ये दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन का प्राणेता एंटोन जांसा के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है जिनका जन्म 20 मई 1734 को स्लोवोनिया में हुआ था। वर्तमान चुनौतियों की यदि बात करें तो जलवायु परिवर्तन, कीटनाशकों का अत्यधिक
उपयोग और आवास के नुकसान के कारण मधुमक्खियों का जीवन बहुत खतरे में है। दोस्तों, इन छोटे छोटे कीट पतंगों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है, तो प्रकृति को बचाए रखने के लिए इनका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है।

कार्यक्रम के इसी अंतिम गीत के साथ सुबह सवेरे संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी तरन्नुम को दीजिए इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे, आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है, सुबह के 8 बजने को है। अब अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों में रिले किया जाएगा।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले

0: प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: India is accelerating towards universal health coverage.
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
8: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो, जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787 8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
9: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
10: IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
11: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
12: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की

0: टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार, नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य। गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st, Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honor of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
3: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honor. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal, and agricultural significance. This is Suparna Bhatia from Rome.
2: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
4: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।

0: a Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हमनसब जॉर्जियो मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इक्तिसादी कॉरिडोर के बारे में ताउन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरका कलीदी अमली मंसूबे का जायजा लेंगे। मगरबी बंगाल सरकार 1 जून से अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करेगी, जिसके तहत 25 से लेकर 60 साल तक की खवातीन को 3,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कहा कि लोकसभा और असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से तकरीबन 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी और भारत की जीडीपी की शरह तरक्की में 1.6% का इजाफा हो जाएगा। डीजीसीए ने इस साल के अवाइल में एयर इंडिया के बोइंग 787-8 तैयारे में तकनीकी खराबी के तनाजुर में ईंधन कंट्रोल स्विच का मजीद मुआयना किए जाने का हुक्म दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इटली के अपने पहले बाहमी दौरे पर कल रात रोम पहुंचे, जहां वो अहम शोबों में मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत करेंगे। इनमें तजारत, दिफा, मोबिलिटी, बहरी सिक्योरिटी, बंदरगाहों से मुतालिक इश्तराक और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई शामिल हैं। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो तजानी के हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। बाद में इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने जनाब मोदी के एजाज में एक जियाफत का अहतमाम किया। इसके बाद जनाब मोदी अनंतारा प्लाजो नईदी होटल पहुंचे, जहां भारत निजाद अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए गर्मजोशी और पुरतपाक अंदाज से जनाब मोदी का खैर मकदम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी पुरजोश भारतीय बिरादरी के लोगों के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने इटली के एक आर्टिस्ट जियांपाओलो टोमा सेटी की एक पेंटिंग की नकाब कुशाई भी की, जो वाराणसी के घाटों और भारत के कदीम और दायमी शहर की सकाफती और रूहानी झलक पेश करने के लिए खासतौर पर बनाई गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: जनाब मोदी आज क्यूरिनल पैलेस में इटली के सदर सर्जियो मटेरेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। जनाब नरेंद्र मोदी की आज की मसरूफियात में वफूद की सतह की बातचीत, प्रेस बयान, मुफाहमत नामों का तबादला, दो तरफा मीटिंगें और खुराक और ज़राअत की तंजीम का दौरा भी शामिल हैं। जनाब मोदी ब्लैक मलबरी का एक पौधा भी लगाएंगे, जो खाने, तिब्बी और उसकी सकाफती अहमियत के जरिए भारत और इटली को अलामती तौर पर मुनसलिक करता है। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: इससे पहले कल भारत और नॉर्डिक मुल्कों ने अपने बाहमी ताल्लुकात को ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराई कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाने का ऐलान किया। इन मुल्कों में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक सरबराह इजलास में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के रहनुमाओं के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए ये ऐलान किया।
3: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान भारत में नॉर्डिक मुल्कों की सरमायाकारी में 200% का इजाफा हुआ है।
3: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी

0: भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हालिया तिजारती समझौतों के साथ एक नए सुनहरे दौर में दाखिल होंगे, जिसमें तिजारती और इक्तिसादी साझेदारी नीज भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारत का माहदा भी शामिल है। दहशतगर्दी के मामले पर जनाब मोदी ने कहा कि इस मामले पर दोनों मुल्कों का वाज़ेह और मुश्तरक मौकफ है, कोई समझौता नहीं और कोई दोहरा मियार नहीं।
0: आज हम सबने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: पेश है वज़ीर-ए-आज़म के नॉर्वे के दौरे के बारे में एक रिपोर्ट।
2: तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के मुश्तरका मकासिद और तसव्वुर का खाका पेश किया गया है। दोनों फरीकों ने भारत नॉर्डिक ताल्लुकात को माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी और इख्तराई दिफाई शराकतदारी तक के ले जाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओस्लो के अपने दौरे में कसीर मुल्की और दो तरफा सरगर्मियों के तहत माहौल के लिए साजगार राहदारी समुद्री मईशत जहाजों की तामीर सेहत दिफा जैसे मैदानों में नॉर्डिक सरमायाकारी को दावत दी है। भारत ईयू आज़ाद तजारती समझौते और टेपा मुआहिदे के रोशनी में उन्होंने नॉर्डिक खित्ते के साथ मजबूत तर इक्तसादी और तिजारती ताल्लुकात की भारत की दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले समेत हर तरह की दहशतगर्दी की एक आवाज में सख्त मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत नॉर्डिक तआवुन को मजीद गहरा करने के अज़्म को दोहराया। अब अगली भारत नॉर्डिक समिट फिनलैंड के शहर हेलसिंकी में मुनाक़िद होगी। ओस्लो से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: मगरबी बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका मकसद ख्वातीन को उनकी समाजी व इक्तिसादी बेहतरी के लिए 3,000 रुपए की यकीनी माहाना माली इमदाद फराहम करना है। ये स्कीम ख्वातीन और बच्चों की तरक्की और समाजी बहबूद के महकमे ने शुरू की है, जिस पर अगले महीने की पहली तारीख से अमल शुरू हो जाएगा। स्कीम के तहत ये माली इमदाद फायदे की रास्त मुंतकली के तहत अहल खवातीन के आधार से मरबूत बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल कर दी जाएगी। स्कीम के लिए अहल होने की शराइत ये है कि उनकी उम्र 25 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए, वो इनकम टैक्स अदा न करते हों, वो किसी मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत में ना हों, या उन्हें रियासत या मरकजी कानूनी पंचायती बल्दियाती मकामी इदारे या सरकार की मदद वाले तालीमी इदारे की तरफ से कोई लगातार तनख्वाह या पेंशन न मिलती हो। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासती सरकार के तहत खिदमात और ओहदों में रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के 66 दर्जात की एक फेरिस्त जारी की है। ये फेरिस्त कोलकाता हाईकोर्ट के हुक्म के बाद जारी की गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने ओबीसी ए के लिए 10% और ओबीसी बी के लिए 7% रिजर्वेशन मंसूख कर दी है। मगरबी बंगाल सरकार के पसमानदा तबकों के बहबूद के महकमे की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में 7% रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के 66 तबकों की फेरिस्त शाय की है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी, जिसे एक मुल्क एक चुनाव के मकसद से तश्कील दिया गया है, इसके अरकान कल से गुजरात के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी सेंटर में पीपी चौधरी की क्यादत में जेपीसी के अरकान ने चीफ सेक्रेटरी एम के दास, डीजीपी डॉक्टर के एल एन राव और दीगर सीनियर अफसरान के साथ बातचीत की। गांधीनगर में कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा कि हर एक ने इस नजरिए का इजहार किया कि सभी इंतखाबात एक साथ कराए जाने चाहिए। उन्होंने एक

0: एक चुनाव को कौमी मफाद के तहत एक अहम कदम करार दिया। जेपीसी में चेयरमैन के अलावा 39 अरकान हैं, जिनमें 27 अरकान पार्लियामेंट लोकसभा और 12 राज्यसभा के हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 69वीं आलमी सेहत असेंबली में सबके लिए सेहत बीमा, डिजिटल सेहत इख्तरा और आलमी सेहत यगानगत के तई भारत के अज़्म को एक बार फिर दोहराया है। उत्तर प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है और हर गुजरने वाले दिन के साथ वहां रिकॉर्ड तोड़ दर्जे हरारत देखने में आ रहा है। रियासत के बुंदेलखंड खित्ते में बांदा जिला लगातार तीसरे दिन मुल्क में सबसे गर्म मकाम रहा और वहां पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: रियासत के दीगर हिस्सों में भी शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है और दिन का टेम्परेचर कई मकामात पर 44 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। हत्ता के रात में भी मौसम गर्म है और कई शहरों में कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: मध्य प्रदेश में भी शदीद गर्मी का जोर जारी है। रियासत में पहली मर्तबा दर्जे हरारत 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कौमी राजधानी दिल्ली में इस महीने की 25 तारीख तक शदीद गर्मी और लू चलने के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने डीजीसीए के अफसरान की मौजूदगी में असली कलपुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री में एयर इंडिया के एक बोइंग 787-8 तैयारे के ईंधन को कंट्रोल करने वाले स्विचेस के मुआयने की हिदायत दी है। डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया के इस तैयारे VTNX को इस साल 2 फरवरी को जमीन पर उतार लिया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू सहाफत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए दरखास्तें तलब की हैं। ऑनलाइन दाखिले का अमल शुरू हो चुका है और ख्वाहिशमंद तलबा इदारे की वेबसाइट के जरिए 26 मई तक दरखास्त दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक दाखिला इम्तिहान 1 जून को नई दिल्ली में IIMC हेडक्वार्टर्स में होगा। तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री हासिल कर चुके ग्रेजुएट तलबा इस कोर्स के लिए दरखास्त दे सकते हैं। फाइनल ईयर या सेमेस्टर इम्तिहान देने वाले तलबा भी दाखिले के लिए दरखास्त दे सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह राजस्थान की टीम ने प्लेऑफ मरहले में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का बड़ा निशाना महज 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जबकि 5 गेंदों का खेल बाकी था। उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 38 गेंदों पर तेज रफ्तार 93 रन बनाए, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के 2 रोजा नॉर्वे दौरे की खबर को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, भारत नॉर्वे तिजारती और तहकीकी सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि नॉर्वे और भारत के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में तआवुन के वसी इम्कान और हमारे मुल्क में गजाई सिक्योरिटी, माही परवरी जैसे शोबों में पार्टनरशिप के मौके मौजूद हैं। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, भारत और वियतनाम के रहनुमाओं ने हिंद बैरुल काहिल खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती और समंदरी रास्तों की आजादी बरकरार रखने के अजम का इरादा किया। इसी अखबार ने एक और अहम खबर को सुर्खी बनाया है, भारत और नॉर्डिक ममालिक ने दहशतगर्दी पर नो कॉम्प्रोमाइज नो डील स्टैंडर्ड का पैगाम दिया।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हममनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इकतसादी कॉरिडोर के बारे में ताउन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरक कलीदी अमली मंसूबे का जायजा लेंगे। मगरबी बंगाल सरकार 1 जून से अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करेगी, जिसके तहत 25 से लेकर 60 साल तक की खवातीन को 3,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कहा कि लोकसभा और असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से तकरीबन

0: 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी और भारत की जीडीपी की शरह तरक्की में 1.6% तक का इजाफा हो जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 8:45 हुए हैं। पेशे खिदमत है 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

0: कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म सिम्बा से। गायक कलाकार थे अरिजीत सिंह। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संजू से पॉपॉन रणबीर कपूर और सुप्रिया पाठक की आवाज़ों में इस खूबसूरत से गीत को।
1: Ladies and gentlemen,
2: let me tell you the story of Mr. Sutro.
1: Sutro.
2: One, two, three, start.

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म सलामे इश्क से। गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दबंग 3 से जावेद अली की आवाज में साजिद वाजिद के संगीत से सजे दानिश साबरी के लिखे इस खूबसूरत से गीत को।

अभी आप सुन रहे थे 102.9 मॉर्निंग हिट्स। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कुछ ही पलों में 9:15 होने को हैं। अब अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से कुछ ही क्षणों में रिले किया जाएगा।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और मुजफ्फरनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतिये का।
1: महोबा जिलाधिकारी गजल भरद्वाज की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता तथा आगामी कार्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान कार्ड, मातृ शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक रोग नियंत्रण एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। डीएम ने अस्पतालों में साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति तथा मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की भी गहन समीक्षा की। महोबा में सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी और गाली देने के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने सांसद और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन कर सांसद का पुतला फूंका था और जिला मीडिया प्रभारी की तहरीर के बाद यह कार्रवाई हुई। सपा सांसद का वीडियो वायरल होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए सांसद ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने दावा किया कि वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और एआई तकनीक के जरिए उनके शब्दों से छेड़छाड़ कर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई है। महोबा जनपद के प्रसिद्ध देसावरी पान को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने राठ रोड स्थित एपीओ जैविक बाजार का फीता काट कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विशेष रूप से देसावरी पान से जुड़े नवाचारों को सराहा और पान उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने पर जोर दिया। डीएम ने मयंकता चौरसिया द्वारा स्थापित अच्युतम ऑर्गेनिक एंड हर्बल्स पान प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। इस प्रतिष्ठान में देसावरी पान से निर्मित मुखवाश, पान लड्डू, पान शरबत, पान चॉकलेट सहित कई आकर्षक उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। डीएम ने नवचारों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को ब्रांडिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए बाजार में नई पहचान दी जा सकती है। उन्होंने जैविक सब्जियों एवं अन्य उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सभी एफपीओ एवं स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद यहां विक्रय करेंगे तथा जिनके उत्पादों का जैविक प्रमाणीकरण नहीं हुआ है वे शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण करा लें। महोबा के इस जैविक बाजार में अब तक कुल 12 एफपीओ एवं स्वयं सहायता समूहों को दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं। यह बाजार नगर पालिका परिषद महोबा द्वारा जिलाधिकारी के नेतृत्व में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में उद्यान विभाग द्वारा स्थापित हाईटेक नर्सरी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस आधुनिक नर्सरी में तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले तरबूज और खरबूज के पौधे लगाकर किसान भारी मुनाफा कमा रहे हैं। महोबा के जैतपुर में स्थापित यह हाईटेक नर्सरी किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं और किसानों को होने वाले फायदे इस प्रकार है। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पारंपरिक खेती के मुकाबले तरबूज और खरबूज की बागवानी में कम समय में प्रति एकड़ लाखों रुपए तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे यहाँ ऑटोमेटिक मशीनों और आधुनिक तापमान नियंत्रण प्रणाली से यहाँ हाइब्रिड और रोग मुक्त पौधे तैयार किए गए थे जिससे किसानों को अब अच्छा मुनाफा हुआ है। उन्होंने कहा
2: तरबूज की और खरबूजा की खेती लगभग 1400 हेक्टेयर की जाती है। एक हेक्टेयर में आराम से 3-4 लाख रुपए किसानों को 3-4 महीने मिल जाती है। कुछ किसान ने बताया कि 8-10 किलो के तरबूज तैयार है और किसान बड़े खुश है कि यहाँ का जो पौधा है अच्छा है और उत्पादन अच्छा हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। महोबा जिले में कुल 4,25,310 आयुष्मान लाभार्थियों के सापेक्ष अब तक 2,79,612 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने शेष पात्र लाभार्थियों से जल्द अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पात्र लोग जिला अस्पताल के महिला एवं पुरुष आयुष्मान कक्ष सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर आयुष्मान मित्र की सहायता से निशुल्क कार्ड बनवा सकते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में CHO, ANM एवं आशा संगनी द्वारा भी यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि आयुष्मान कार्ड बन जाने से जरूरतमंद परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता मिलेगी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
0: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मुजफ्फरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रणवीर सिंह सैनी का।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में इसी महान नुमाइश ग्राउंड के मैदान में एक रोजगार मेले का उद्घाटन किया, जिसमें लगभग 200 कंपनियों ने भाग लिया और भारी संख्या में युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। सांकेतिक रूप से लगभग 10 युवक युवतियों को मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम में केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी शामिल रहे। श्री चौधरी ने मंच से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कराए जा रहे देश हित और प्रदेश हित के विकास कार्यों की जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर को नगर निगम का दर्जा दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने गन्ना किसान, गन्ने का भुगतान, सुगर मिल के साथ साथ किसानों की जमकर तारीफ की। चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया। श्री योगी ने कहा कि वह कभी जातिवाद के पक्षधर नहीं रहे। मुजफ्फरनगर जिले में बीते एक माह से लगातार आंधी तूफान और ओलावृष्टि के कारण कई पेड़ उखड़ कर गिर गए। वहीं ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। विद्युत आपूर्ति भी जनपद में आंधी तूफान से लगातार बाधित रही। उत्तर भारत की पौराणिक तीर्थस्थली मुजफ्फरनगर के सुखतीर्थ स्थित हनुमत धाम के पीठाधीश्वर स्वामी केशवानंद जी महाराज का बीमारी के चलते निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। उनके निधन से तीर्थ के साधु संतों में शोक की लहर दौड़ गई। स्वामी केशवानंद जी महाराज को हनुमत धाम के प्रांगण में भू समाधि दी गई। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा मुजफ्फरनगर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भाजपा शासित सभी राज्यों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। रेलवे के दोहरीकरण, रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यकरण और विद्युत आपूर्ति में बड़े स्तर पर सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। श्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2029 में भाजपा की सरकार बनने के बाद महिलाओं की राजनीति में अधिक भागीदारी देने के लिए महिला आरक्षण से जुड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे महिलाओं को 50% से अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट विकास की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 22,000 से अधिक वाद प्रकरणों को निस्तारण किया गया। इस दौरान जिला जज ने कहा कि लोक अदालत विवादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित करने का बड़ा माध्यम है। यह त्वरित न्याय को अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। इस दौरान मोटर दुर्घटना के 56 वादों का निस्तारण कर 6,11,00,000 रुपए प्रतिकर प्रदान किया गया। विभिन्न न्यायालयों के 6,190 सामान्य फौजदारी वादों का निस्तारण कर 7,27,000 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। 33 दीवानी वादों का निस्तारण किया गया। 138 NIA एक्ट के 31 वादों के निस्तारण में 2,97,00,000 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। राजस्व के 15,876 मामलों का निस्तारण कर 4,54,00,000 रुपए का राजस्व वसूला गया। विभिन्न बैंकों के द्वारा 384 बैंक ऋण मसलों का निस्तारण कराकर लगभग 5,62,00,000 रुपए का सेटलमेंट किया गया। पारिवारिक न्यायालयों के द्वारा 64 मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मुजफ्फरनगर जिले में इस समय स्व जनगणना का कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि 7 मई से प्रारंभ होकर 21 मई 2026 तक होने वाली स्व जनगणना में जनपद के सभी नागरिक स्वयं की जनगणना पोर्टल पर अपनी सूचनाएं दर्ज कराने का कार्य करें। मुजफ्फरनगर में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर विशाल शक्ति प्रदर्शन किया गया। हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले जुटी हजारों महिलाओं ने पैदल मार्च निकालकर संदेश दे दिया कि अब देश की आधी आबादी अपने हक के लिए जाग चुकी है। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारे लगाती ये महिलाएं प्रकाश चौक पहुंची, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एवं राष्ट्र हित में किए गए आह्वान के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने निजी गाड़ी के स्थान पर मेट्रो का उपयोग किया। कपिल देव ने गोरखपुर से लौटते समय निजी वाहन का उपयोग न करते हुए दिल्ली हवाई अड्डे से मोदीपुरम तक मेट्रो एवं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के माध्यम से यात्रा कर जनमानस को ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा का प्रेरणादायी संदेश दिया।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: ये प्रेरक प्रसंग भगवान बुद्ध के जीवन से है। भगवान बुद्ध उस समय मृत्युशैया पर थे। निकट बैठा हुआ उनका शिष्य आनंद सेवा कर रहा था। तभी भद्रक नाम का एक अन्य शिष्य रोता हुआ वहां आया। रोने की आवाज भगवान बुद्ध के कानों में पड़ी। उन्होंने आनंद से पूछा, आनंद कौन रो रहा है? बंते, भद्रक आपके दर्शन के लिए आया है, आनंद ने उनसे कहा। तो उसे मेरे पास भेज दो, भगवान ने स्नेह से कहा। आते ही भद्रक उनके चरणों में गिर पड़ा, फूट फूट कर रोने लगा। तब भगवान ने उससे रोने का कारण पूछा। भद्रक ने कहा, भगवान जब आप हमारे बीच नहीं होंगे तब हमें प्रकाश कौन दिखाएगा, यही मेरे रोने का कारण है, भद्रक भर्राई हुई आवाज में बोला। भगवान बुद्ध ने स्नेह से उसके माथे पर हाथ रखा, उपदेश दिया, भद्रक प्रकाश तुम्हारे अंदर है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जो अज्ञानी इसे देवालयों, तीर्थों, कंदराओं, गुफाओं में भटककर खोजने की चेष्टा करते हैं उन्हें अंत में निराशा ही प्राप्त होती है। इसके विपरीत मनसा वाचा कर्मणा एक निष्ठ होकर साधनारत जनों के लिए उनका अंतःकरण स्वयं दीप्त हो उठता है। अपने दीपक आप बनो, अपदीपो भव। यही था भगवान बुद्ध का अंतिम संदेश और इसी के प्रचार के लिए उन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। उन्हीं से जुड़ा एक और प्रसंग है कि श्रावस्ती में जब एक बार अकाल पड़ा तो भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों से पूछा, तुम में से कौन इन भूखों के भोजन की जिम्मेदारी उठा सकता है? रत्नाकर शाह ने कहा, इनके लिए तो मेरे धन से भी कहीं अधिक धन चाहिए। राजा के सेनापति ने कहा, इसके लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं, पर मेरे पास इतनी संपत्ति नहीं है। सैकड़ों बीघे भूमि के मालिक धर्मपाल निश्वास भरते हुए बोले, अनावृष्टि के कारण मेरी खेती सूख गई है, राजा का कर कैसे चुकाऊंगा यही नहीं सूझा। अंत में एक भिखारी की लड़की सुप्रिया ने उठकर सभी का अभिवादन किया और संकोच के साथ बोली, मैं दूंगी भूखों को भोजन। सभी आश्चर्यचकित होकर एक साथ बोल उठे, किस प्रकार प्रतिज्ञा पालन का यह कर्तव्य तुम किस प्रकार पूरा करोगी? सुप्रिया ने उत्तर दिया, मैं सबसे गरीब हूं, यही मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति और भंडार आप सबके घरों में है। भगवान बुद्ध के ही जीवन से एक और प्रसंग है। भगवान बुद्ध को प्यास लगी थी। आनंद निकट के पहाड़ी झरने पर पानी लेने गया, किंतु देखा झरने से अभी अभी बैलगाड़ियां गुजरी हैं और सारा जल गंदला हो गया है। वो वापस लौट आया, भगवान से बोला, मैं पीछे छूट गई नदी पर जल लेने जाता हूं, इस झरने का पानी तो बैलगाड़ियों के कारण गंदा हो गया है। किंतु भगवान ने आनंद को वापस उसी झरने पर भेजा, तब भी पानी साफ नहीं हुआ था। आनंद लौट आया, तीन बार ये प्रक्रिया हुई। चौथी बार आनंद हैरान रह गया, सब सड़े गले पत्ते नीचे बैठ चुके थे, काई सिमटकर दूर जा चुकी थी, पानी आईने की तरह चमक रहा था। इस बार वो पानी लेकर लौटा, तब भगवान ने कहा, आनंद हमारे जीवन के जल को भी विचारों की तरह बैलगाड़ियां रोज रोज गंदला करती हैं और हम।
1: अभी आप सुन रहे थे भगवान बुद्ध के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कुछ ही पलों में 9:30 होने को हैं। अब उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ मरकज से नश्र किए जाएंगे।
2: आज इस कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी प्रयागराज की प्रस्तुति।
3: पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। सामईन हजरात आदाब, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर जावेद अहसन आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ उर्दू प्रोग्राम। हजरात, जब भी उर्दू अदब में इन

0: फिर उठाएंगे तो क्या होगा। मुख्तसर ये कि हिंदुस्तानी सिनेमा को हुस्ने जबान, नाजो अदा, गमजो उशवा, इश्क वारफ्तगी उर्दू ही का अतिया है। हिंदुस्तानी फिल्मों का आयदे जर्री उर्दू का मरहूने मिन्नत है। ये एक मुसलमा हकीकत है कि उर्दू के फनकारों, अदीबों और शायरों ने हिंदुस्तानी फिल्मों के फिक्रो फन की आबियारी अपने खूने जिगर से की है और इसे बुलंदियों तक पहुंचाया है। बॉलीवुड से वाबस्ता कोई भी फनकार इसकी तरक्की में उर्दू की अहमियत किरदार से रूगरदानी नहीं कर सकता। नगमा निगारों की एक तवील फहरिस्त है जिसमें अख्तरुल ईमान, जानिसार अख्तर, मोहिन हसन जज्बी, हसरत जयपुरी, साहिल लुधियानवी, शकील बदायूनी, शहरयार, खतीर शिफाई, कैफी आजमी, मजू सुल्तानपुरी, निदा फाजली, गुलजार और जावेद अख्तर वगैरह के नाम काबिले जिक्र हैं। इन शोरा ने अपने फिक्र फन से अदब और फिल्म दोनों को बुलंदी अता की। अली सरदार जाफरी भी इनमें से एक हैं। फिल्मों में उनके नगमों की तादाद जरूर कम है लेकिन जितनी भी है उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता।
1: अली सरदार जाफरी बतौर नगमा निगार, अभी आपने इस मौजू पर डॉक्टर मोहम्मद अफजल की तकरीर सुनी और अब कलाम शायर के तहत समात फरमाइए डॉक्टर तालिब इकराम से उनका कलाम।
2: गजल के चंद अशार पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा फरमाएं। सबब यही है रगे जामे इनकलाब नहीं, सबब यही है रगे जामे इनकलाब नहीं, हमारे पेशे नज़र अब कोई किताब नहीं, हमारे पेशे नज़र अब कोई किताब नहीं। चमन में खुशबुए तहजीब का गुलाब नहीं, चमन में खुशबुए तहजीब का गुलाब नहीं, निज़ामे नौ है तमद्दुन पे यहाँ खिताब नहीं, निज़ामे नौ है तमद्दुन पे यहाँ खिताब नहीं। और पहाड़ जुल्म के ढाए हैं एहतसाब नहीं, पहाड़ जुल्म के ढाए हैं एहतसाब नहीं। खुद ही को जिंदा करो खुद का क्यों हिसाब नहीं, खुद ही को जिंदा करो खुद का क्यों हिसाब नहीं। और ये शेर देखें कि कहूँ ना कैसे कोई दूजा महताब नहीं, कहूँ ना कैसे कोई दूजा महताब नहीं, तुम्हारे सीने में पहले सा इस्तराब नहीं, तुम्हारे सीने में पहले सा इस्तराब नहीं। और ये शेर बतौर खास मुलाहजा करें कि इबादतों की हो कसरत कोई सवाब नहीं, इबादतों की हो कसरत कोई सवाब नहीं, सिवाय फितने के वाइस तेरा खिताब नहीं, सिवाय फितने के वाइस तेरा खिताब नहीं। और छुपाना खुद को है कहना कि मुस्तजाब नहीं, तजमीन का शेर है कि छुपाना खुद को है कहना कि मुस्तजाब नहीं, निगाहे नरगिसे राना तेरा जवाब नहीं, निगाहे नरगिसे राना तेरा जवाब नहीं। और ये शेर देखें कि खुमारो खुम नहीं ज़ौको तलब शराब नहीं, खुमारो खुम नहीं ज़ौको तलब शराब नहीं, बजुस सनम मुझे हाजत नहीं जनाब नहीं, बजू सनम मुझे हाजत नहीं जनाब नहीं। और बचश्मे यार दिलो जहाँ पे अब अजाब नहीं, बचश्मे यार दिलो जहाँ पे अब अजाब नहीं, खुदा का शुक्र है कि बरसरे एताब नहीं, खुदा का शुक्र है कि बरसरे एताब नहीं। और मकता है कि गुमा गलत है कि तालिब के दिल में ख्वाब नहीं, गुमा गलत है कि तालिब के दिल में ख्वाब नहीं, इल्ला तुम्हारे कोई शमे आफ्ताब नहीं, इल्ला तुम्हारे कोई शमे आफ्ताब नहीं, सबब यही है रगे जामे इनकलाब नहीं, हमारे पेशे नजर अब कोई किताब नहीं। चंद शेर और मुलाहजा करें उर्दू के हवाले से कि तहजीब की पहचान है इंसान की जबा है, तहजीब की पहचान है इंसान की जबा है, उर्दू ना मुसलमान का ना हिंदू का निशा है, तहजीब की पहचान है इंसान की जबा है, उर्दू ना मुसलमान का ना हिंदू का निशा है, नफरत के अंधेरों में ये उम्मीद सहर है, नफरत के अंधेरों में ये उम्मीद सहर है, उर्दू की फजा महरो अखुवत का समा है, उर्दू की फजा महरो अखुवत का समा है। और शेर देखें कि गंगा की रवानी है हिमालय की बुलंदी, गंगा की रवानी है हिमालय की बुलंदी, ये रूहे वतन शाने दिले अहले जहां है, ये रूहे वतन शाने दिले अहले जहां है। और ये शेर देखें कि उर्दू को मिटाना कहाँ मुमकिन है जहां से, उर्दू को मिटाना कहाँ मुमकिन है जहां से, इस कौम के सीने में अभी शोला जवा है, इस कौम के सीने में अभी शोला जवा है। और मकता है कि तालिब भी है जिस नगमे बेदार पे नाजा, तालिब भी है जिस नगमे बेदार पे नाजा, वो नगमे उर्दू दिले इंसान की अजा है, वो नगमे उर्दू दिले इंसान की अजा है। एक गजल और आपके

0: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। सुबह के 9:50 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:50 हुए हैं। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत रुद्र वीणा वादन। कलाकार हैं बहाउद्दीन डागर।

अभी आप सुन रहे थे उप शास्त्रीय संगीत रुद्र वीणा वादन राग तोड़ी में। कलाकार थे बहाउद्दीन डागर। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

कार्यक्रम आपके अनुरोध पर सुनने वाले हमारे सभी रेडियो श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कीजिए स्वीकार तरन्नुम का प्यार भरा नमस्कार।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना। फिल्म सौदागर से गायक कलाकार थे कविता कृष्णमूर्ति और मनहर उदास। फरमाइश आप सबकी, कस्बा उगहती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार और कार्तिक गुप्ता की। जिला मुरादाबाद, ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, डॉक्टर जाबिर सकलैनी की। छत्तीसगढ़, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार की। अलीका डबवाली से बसंत सिंह चन, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी की। सहारनपुर यूपी से आशा नारंग और सुरेश नारंग की। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू, जीएस रामगढ़िया की। बेडू सरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांश साहू की। पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिराह के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहरुन निशा, असलम हुसैन, महमूद हसन। बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली की। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सिंघम रिटर्न से अंकित त्रिवारी और तुलसी कुमार की आवाज में इस खूबसूरत से गीत को। फरमाइश आप सबकी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका और तेजल यादव की। रहमानिया मोहल्ला महसौल सीतामढ़ी बिहार से तलत जहां नाज, रफत जहां, रिफत जहां, रूही नाज, वसीम अकरम, नदीम अकरम, शमीम अकरम और अमन अकरम की। जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान, इमराना राजा, आलम शेख।

चांदनी नाज और नाज प्रवीण की। गांधी समाधि रोड रामपुर से गफार खान, राजिया, रूमा, बॉबी, शमा, मिक्की, बुशरा, आसिम। जिला अस्पताल के पास से गजन खां, शहजादे शकील, मंजूर खां, किरण वजीर, राजिया गफ्फार और नसीम खां की। मोहल्ला हलवाई आन शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी और चांदनी रानी की। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय की। दुबिहा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, मुस्ताबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दाग द फायर से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में इस खूबसूरत से गीत को। फरमाइश आप सबकी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जैतेक बिरक मीका बिरक की। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर से मुकेश कश्यप सोनू सुरेश राज्यपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी और ऋतिक की। मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से भाई रफत साहब सईद भाई मंसूरी राशिद भाई मंसूरी शायना काजल असद भाई और फिरोजा मुस्कान की। राजनाद गांव से याकूब आसमा यूसुफ आसमा इमरान इरफान आसमा की। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी सोनम तिवारी आबिदा तिवारी की। ग्राम घाटमपुर से रामभजन सैनी हरप्यारी सैनी राजीव संजय मुकेश आशा अंशिका और पूजा सैनी की। आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा की। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी नाजमा बेगम सिद्दीकी रियाज रिफाकत रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आशिफ की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

कार्यक्रम के इसी अंतिम गीत के साथ आप कार्यक्रम आपके अनुरोध पर संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी तरन्नुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: चापला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
1: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी
0: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
1: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
1: जी
0: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी जी जी श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
0: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
1: जी
0: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
1: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
0: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
1: जी
0: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में,
1: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
0: और श्रोताओं जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
1: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
0: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
1: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
0: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
1: जी
0: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
1: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है।
1: जी।
0: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
1: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
0: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
1: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
2: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
2: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
2: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
2: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है मगर।
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
2: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं। हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
2: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते एक पौधा लगाओ?
2: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
2: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: लो माली काका, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ माली काका, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद माली काका।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: जी
0: चलिए दादाजी।

0: सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: हाँ। अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
2: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: संबंध सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: AIR at 90. मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
1: बंदूक से निकली गोली का कोई नाम, कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। जब ये गोली लगती है किसी इंसान को तो घायल होती है मानवता। छूट जाता है एक बचपन, वीरान हो जाता है किसी का जीवन, टूट जाती है किसी के बुढ़ापे की लाठी, बुझता है एक दीपक उम्मीद का। अपने इस देश में बारूद का ढेर नहीं, फूलों का चमन महकाएं, जीवन के हर रंग से इंद्रधनुष बनाएं।
0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, प्रातः के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं धरोहर। आज धरोहर के अंतर्गत आप सुनने जा रहे हैं धारावाहिक जिंदगी के आईने में, इसकी कड़ी संख्या 7 का प्रसारण हम आपको आज सुनवाने जा रहे हैं।
2: जिंदगी के आईने में सभी श्रोताओं को असीम सक्सेना का नमस्कार। जिंदगी सांसों की सरगम पर एहसासों की रवानी, कुछ पाने कुछ खोने की कहानी। समय इंसान को बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ हाथों से फिसल भी जाता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम कुछ पल ठहरते हैं, जिंदगी के आईने में बीते हुए लम्हों को निहारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में लबों पर कभी मुस्कुराहट थिरकती है तो कभी आंखों की कोर से आंसू भी जमते हैं।

0: श्रोताओं, खुशनसीबी है हमारी कि आज हमारे साथ वो शख्स है जिसने हॉकी को जिया है, अपना सब कुछ इस खेल के लिए समर्पित किया है। एक लंबा अनुभव उनके साथ है। शायद ही कोई ऐसा नामी खिलाड़ी हो जिसके साथ उन्होंने खेला ना हो या उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त ना हुआ हो। रामपुर में वरिष्ठ खिलाड़ियों का जब भी जिक्र आता है तो एक ही नाम बड़े ही आदर के साथ, अदब के साथ लिया जाता है, जनाब लड्डन खान साहब का। रामपुर के वरिष्ठतम हॉकी खिलाड़ी हैं आप। आपका आशीर्वाद इस खेल को, बल्कि तमाम खेलों को वक्त वक्त पर मिलता रहा है। आज हमारे साथ हैं लड्डन खान साहब। पहले तो ये बताइए कि आकाशवाणी रामपुर के स्टूडियो में आकर आप कैसा महसूस करते हैं?
1: मेरे यहाँ कई बार प्रोग्राम हो चुके हैं
0: जी,
1: कम से कम 6-7-8 बार। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे अगर ऐसे प्रोग्राम चलते रहें तो बहुत कुछ बढ़ावा मिलते हैं और जानकारी होती है बहुत ज्यादा।
0: खेलों की तरफ लड्डन खान साहब, कब से आपका रुझान हुआ? कितने छोटे थे आप, कुछ याद है?
1: मैंने साहब को 9 वर्ष की उम्र से हॉकी शुरू कर दी थी। और मैं समझता हूँ कि अगर स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को सिखाएं तभी हम लोग अपना जो खोया हुआ मुकाम है हासिल कर सकते हैं। मगर यहाँ इत्तेफाक से बदनसीबी है कि स्कूल कॉलेजेस में फीस तो ली जाती है स्पोर्ट्स के नाम से, मगर प्रैक्टिस कहीं नहीं होती।
0: तो आपने जब 9 साल की उम्र से हॉकी खेलनी शुरू की तो किसको देख के आपके मन में विचार है, क्योंकि उस समय तो ऐसा माहौल भी नहीं होगा?
1: नहीं, हमारे यहाँ असल में रामपुर में हॉकी थी सिर्फ।
0: अच्छा।
1: और वो ऐसा था कि गरीब मुल्क था, गरीब वो थे, तो हम लोग ऐसा भी करते थे कि बांसी की बॉल बना ली बच्चे और ऐसी उसके हॉकी बना ली और अपने खेलने लग गए। उसके बाद स्टूडेंट क्लब में जब मैं जरा अच्छा खेलने लगा तो वहाँ उन लोगों ने खिलाना शुरू कर दिया जो बड़े थे हमारे
0: जी जी।
1: तो वहाँ से स्टूडेंट क्लब में मैं रहा और करीब करीब 20 साल में स्टूडेंट क्लब का कैप्टन रहा और करीब करीब 10 साल जनरल कैप्टन। पहले ये DSA होती थी हर जगह।
0: अच्छा।
1: डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन
0: जी जी,
1: हर डिस्ट्रिक्ट में
0: जी।
1: तो उस डिस्ट्रिक्ट में काम भी मैं करीब 10 साल कैप्टन रहा रामपुर DSA का। और पहला नेशनल मैंने 1948 में बॉम्बे में खेला था हैदराबाद के खिलाफ।
0: आपने 1948 का जिक्र किया, जिस समय आपने हॉकी खेलनी शुरू की थी तो उस समय यहाँ पर स्थिति कैसी थी, क्योंकि वो तो शायद रियासत का दौर रहा होगा, हॉकी का चाहने वाला, हॉकी को प्रमोट करने वाला दौर था क्या वो?
1: सिंध में स्टेट पीरियड था
0: जी।
1: इसमें एक जफर मसूद था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे वो, इस इत्तेफाक से रामपुर में काउंसिल सेक्रेटरी होकर आ गए। तो उनको, चूंकि खुद हॉकी के खिलाड़ी थे बहुत अच्छे, उन्होंने रामपुर में हॉकी को बहुत बढ़ावा दिया और हिजाइनस से कह के, ये आपने ग्राउंड देखे होंगे, स्टूडेंट क्लब है, यंग मैन क्लब है, जुल्फकार क्लब है, ये रोलर टाइगर है, ये सब उन्होंने अपने उसे हिजाइनस से कह के 99 साल की लीज पे इस हॉकी क्लबों को दिलवाए और आज तक उन्हीं क्लबों के नाम से वो ग्राउंड है। उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा हॉकी को सपोर्ट किया रामपुर में, उनकी वजह से बहुत तरक्की हुई।
0: कोई ऐसा यादगार मैच है आपको कि आप खेल रहे हों और रामपुर के नवाब साहब मैच देखने आए हों?
1: पहले की बातें हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, देहरादून में मैंने सुना कि रामपुर की जो मिलिट्री की टीम थी
0: जी जी,
1: उसका वहाँ बहुत ज्यादा एक, कभी उन्होंने ब्राउन साहब के नाम से एक टूर्नामेंट होता था वहाँ, कर्नल ब्राउन
0: जी,
1: उसमें रामपुर की टीम जाया करती थी और उसमें नवाब साहब भी कभी फाइनल में टीम आ गई तो पहुँच जाते थे। तो ये रामपुर में बहुत पहले, और कई खिलाड़ी रामपुर में ऐसे थे जो ध्यानचंद के जी के अगेंस्ट में भी खेले।
0: अच्छा।
1: मिलिट्री में थे, एक वाजिद खान थे जो फुल बैक खेलते थे, एक यामीन खान साहब थे जो सेंटर हाफ खेला करते।
0: आपकी ध्यानचंद जी से मुलाकात कब हुई और किस तरह से हुई?
1: मेरी ध्यानचंद जी से मुलाकात 1950 में हुई।
0: अच्छा।
1: 50 में हम दिल्ली में नेशनल खेल रहे थे, इत्तेफाक से हमारा ओपनिंग ही मैच था। ओपनिंग उन्होंने की थी जनरल क्रियापा, कमांडिंग चीफ जो इंडिया के थे।

0: उन्होंने ओपनिंग की थी और ऑल इंडिया सर्विसेज से हमारा मैच था
1: जी,
0: और ऑल इंडिया सर्विसेज के कोई ध्यानचंद जी थे, तो उस दिन हमने एक गोल से लीड लिए खेल रहे थे हम।
1: अच्छा, आप आगे थे?
0: हाँ, रामपुर की टीम एक गोल से लीड लिए हुए थी, ध्यानचंद जी बैठे देख रहे थे मैच। जब हाफ टाइम हुआ तो ध्यानचंद जी ने अपनी सारी टीम को क्लोज किया, तो मैं भी वहाँ चला गया देखूँ क्या कह रहे हैं ये। तो उन्होंने, ध्यानचंद जी ने कहा कि देखो भाई, ये रामपुर की टीम है, मैं इन्हें जानता हूँ, इनके खिलाफ बहुत खेला भी हूँ मैं, और ये लोग तुम्हें पकड़ लेंगे, गिरा देंगे, तुम्हें करीब से नहीं निकलने देंगे, इनमें स्टैमिना नहीं है, लंबे लंबे गैप से तुम खेलो तब तो तुम इन्हें जीत सकते हो, और जो खेल तुम खेल रहे हो उस तरह नहीं जीत सकते। वही हुआ कि हाफ टाइम के बाद जो उन्होंने लंबे लंबे गैप बनाए हैं, तो ऐसा मालूम हुआ हमारा ही जैसे नवाब गेट खुल गया। 5 गोल किए उन्होंने हाफ टाइम के बाद।
1: अच्छा,
0: 5-1 का रिजल्ट रहा।
1: आपकी ध्यानचंद जी से कभी व्यक्तिगत मुलाकात हुई?
0: बहुत करीब 1.5 घंटा हुई। आपने पेपर में भी देखा होगा
1: जी, जी।
0: ब्रॉडवे होटल में
1: जी,
0: वहाँ पर कलकत्ता में ऐसा हुआ था कि उनका बड़ा लड़का राजकुमार मेरे साथ मोहन बगान में खेल रहा था।
1: अच्छा,
0: मोहन बगान ने मेरे साथ गुरबख्श इंडिया टीम के कैप्टन गोविंदा, अशोक, राजकुमार का छोटा भाई।
1: तो किस दौर में आप खेले मोहन बगान से?
0: मैं कोई 65 या 67 में, 2-3 साल खेला मोहन बगान।
1: अच्छा,
0: तो उसी जमाने में राजकुमार मेरे साथ था, राजकुमार हुआ ऑलरेडी ईस्टर्न रेलवे में नौकर भी था, मोहन बगान में हमारे साथ खेल लिया था। तो उसने, राजकुमार ने मुझसे कहा कि डैडी आए हैं और वो कह रहे हैं सिलीगुड़ी जा रहे हैं।
1: अच्छा,
0: और वो उन्होंने ये कहा है कि एक चाइनीज़ का जूता, चाइनीज़ जूता बहुत अच्छा बनाते हैं वो कलकत्ता में, तो एक चाइनीज़ का जूता मेरे लिए ले आओ। तो मैंने कहा राजकुमार मैं भी चल रहा हूँ साथ में, और ब्रॉडवे होटल में ठहरे हुए हैं, तो साहब मैं उनके साथ में, कुमार और मैं जूता खरीदा पहले हमने, और ख़रीद के वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ उनसे करीब 1/2 घंटा उनसे बातचीत हुई। अच्छा, ये भी मेरे साथ था, आप जानते होंगे यूनुस
1: जी, जी जी जी,
0: जो टीसी था
1: जी जी,
0: ये भी मेरा, ये भी मोनवान में खेला था मेरे साथ।
1: अच्छा,
0: मैं इसे लेके गया था।
1: कैसी पर्सनालिटी थी और किस तरह का?
0: ध्यानचंद जी, ध्यानचंद जी कोई हाइट वाइट तो ज्यादा नहीं थी, हाइट तो उनकी, उनके जो छोटे भाई थे रूप सिंह,
1: हाँ।
0: रूप सिंह उनकी ज्यादा थी, वो भी मेरे साथ बरेली में ग्वालियर के साथ खेले हमारे खिलाफ।
1: तो आपने 1948 में अपना पहला नेशनल खेला, इसके बाद आपका हॉकी का सफर किस तरह से आगे बढ़ा?
0: बस इसी तरह से आगे बढ़ा कि अगर मैं रामपुर में रहता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। केडी सिंह बाबू बेचारे बहुत मेहरबान थे मेरे ऊपर, वो मुझसे बहुत कहते थे कि रामपुर छोड़ दे तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो, वो उनका एक लेटर भी मेरे पास है, कभी होगा तो आपको दिखाऊंगा, जो उन्होंने नॉर्दर्न रेलवे के मैनेजर के नाम लिखा है।
1: अच्छा,
0: मेरे लिए, मगर मेरी बदनसीबी थी, मेरे हालात ऐसे थे कि मैं जा नहीं सका। तो केडी सिंह बाबू बेचारे बहुत चाहते थे मुझे। तो साहब दूसरा नेशनल वहाँ खेला था दिल्ली में।
1: अच्छा।
0: मैंने आपको कमांडिंग चीफ जनरल क्रियापा थे, ध्यानचंद जी थे। आखिरी तीसरी मुलाकात जो उनसे हुई तो वो उसमें ब्रॉडवे में हुई, कलकत्ता में, कोई 1/2 घंटा। उसके बाद मैंने फिर तीसरा नेशनल खेला भोपाल में 1951 में, और उसके बाद फिर मुझे ऐसा हुआ कि मुरादाबाद वाले, बरेली वाले, और साहब शाहजहाँपुर, लखनऊ, मेरठ, ये लोग मुझे अपने साथ ले जाने लगे
1: जी जी।
0: तो इसलिए मेरा ज़्यादा मतलब वो, अगर मैं रामपुर में रहता तो मैं इतना मतलब पॉपुलर नहीं होता।
1: तो लड्डन खान साहब, खेल के सिलसिले में किन किन जगह जाना हुआ आपका?
0: देखिए, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, बंगलौर, भोपाल, ग्वालियर, तो मतलब, और इधर यूपी साइड में तो सभी, रोहिलखंड में तो नैनीताल वगैरह, रानीखेत, ये तो सब है ही।
1: केडी सिंह बाबू भी हॉकी का एक सम्मानित नाम है और आपको उनका आशीर्वाद मिला,
0: बहुत साथ।
1: उनको आप किस तरह से देखते हैं, उनके साथ मुलाकात को?
0: मैं तो साहब ये समझता हूँ कि उनको, आपने शायद सुना होगा, उनको एक गोल्ड मेडल मिला था, मैं सुना था अमेरिका ने दिया था उनको।
1: अच्छा,
0: बेस्ट खिलाड़ी होने का, और उनका गेम ऐसा था कि कुछ ऐसा ध्यानचंद जी से मिलता जुलता, जो ध्यानचंद जी ने चीजें जो लोग कहते हैं बॉल हॉकी में चिपक जाती थी
1: जी जी,
0: वो थोड़ी बहुत बाबू साहब में भी थी। और बाबू साहब में ये था कि फॉरवर्ड लाइन को सजा देते थे, इतनी अच्छी फील्डिंग करते थे। बाबू साहब के साथ में एक बलवीर सिंह खेला करते थे सीनियर, वो सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे, और उद्धम सिंह
1: जी जी,
0: उद्धम सिंह लेफ्टिन थे, ये इंडिया की टीम बता रहा हूँ आपको
1: जी जी,
0: और राइट इन बाबू साहब। तो ये दोनों इतने अच्छे थे, लेफ्टिन उद्धम सिंह और राइट इन बाबू साहब, कि इन्होंने सारा सबको काटा और बलवीर के सामने रिंग में रख दिया।

0: के लिए मार दे। अब बलबीर सिंह साहब 6 फीट के आदमी थे तो उनका हिट मारा तो गुरु इस इंडिया में आज तक जितने स्कोर सबसे ज्यादा किए हैं बलबीर साहब ने किए और इन्हीं दो की वजह से।
1: लटंगा साहब आप किस पोजीशन से खेलते थे?
0: मैं साहब पहले तो मैं राइटिंग खेलता था, राइटिंग से मैंने शुरू किया, बाबू साहब भी राइटिंग खेलते थे और उसके बाद जब मैं कलकत्ता पहुंचा 1962 में तो फिर मैंने चूंकि मेरा इतना स्टेमिना नहीं रहा था मेरे पास कि मैं फॉरवर्ड लाइन में बहुत स्पीड चाहिए, वो स्पीड नहीं थी तो सेंटर हाफ में थोड़ा रेस्ट मिल जाता। मैंने मोहन बगान में खेला 3 साल सेंटर हाफ खेला और सारे ओलंपियन मेरे साथ थे, गोविंदा था मेरे साथ, इनामुर रहमान था मेरे साथ, गुरबख्श इंडिया टीम का कैप्टन था मेरे साथ, अशोक था मेरे साथ, ये सब लोग मेरे साथ थे।
1: इतने नामी खिलाड़ियों के साथ आप खेले और जिस समय आपने खेलना शुरू किया यकीनन वो भारतीय हॉकी का गोल्डन दौर था
0: जी।
1: दादा ध्यानचंद ने पूरी दुनिया में भारतीय हॉकी की पहचान करा दी थी और सब मानने लगे थे कि हिंदुस्तान से बेहतर हॉकी कोई नहीं खेलता, तो कैसा लगता था उस वक्त हॉकी से जुड़ा?
0: आप देखिए हिंदुस्तान की पहचान अगर असल में फॉरेन कंट्री में कराइए तो हॉकी की बदौलत
1: जी।
0: ध्यानचंद जी की कप्तानी में 1932 से लेके 1936 तक कंटिन्यू वर्ल्ड कप जीता है, ये आप देख लें हिस्ट्री में है ये
1: जी जी।
0: तो ये सारी से हॉकी तो पहचान हुई इंडिया की वो हॉकी से हुई। और ध्यानचंद जी के जैसे एक और भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे जो ध्यानचंद जी के ज़माने के थे, उनके साथी थे, वो थे हाबुल मुखर्जी, जिन्होंने इंडिया की टीम को कोच किया जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, उसके बाद भी इंडिया जीत के आई, वो हाबुल मुखर्जी की उसमें जीत के आई थी। तो बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी इंडिया ने पैदा किए। अब पता नहीं क्या है असल में, ये हो ये रहा है कि छोटे बचपन से जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि स्कूल कॉलेजेस में जब तक ये नहीं आएगी 9-10 बरस की उम्र से तब तक ये ठीक नहीं हो सकता।
1: पहले आपने जिक्र किया कि हॉकी के क्लब हुआ करते थे और रामपुर के क्लब खासे मशहूर होते थे, दूर दूर तक टूर्नामेंट खेलने जाया करते थे, तो ये रिवायत क्यों खत्म हो गई?
0: ये रिवायत ये खत्म हो गया कि स्कूल हॉस्टल खुल गए, गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है इस पे कि अगर इसको कायदे से हो तो एक नहीं दो टीमें निकल सकती हैं
1: जी।
0: मगर बस वही है, क्या बताऊँ, हॉस्टल तो हैं, लड़के सिफारिश हो गए किसी मिनिस्टर साहब का है तो कोई पैसे दे के आ गया, तो ऐसे जो लड़का रखने के लिए है काबिल उसको नहीं लिया जाता, ये बात है असल में। वरना हमारा इतना बड़ा देश हिंदुस्तान हमारी टीम नहीं बन सकती क्या? एक मामूली सा अर्जेंटीना और कोरिया ये गजब उठाए दे रहे हैं।
1: लटंगा साहब आपने अपने करियर में बहुत सारे हॉकी मैच खेले होंगे, कोई ऐसा एक हॉकी मैच या एक दो हॉकी मैच ऐसे होंगे जो आपके लिए खास तौर पर यादगार होंगे, आज भी आपके जहन में उसकी यादें ताज़ा होंगी?
0: साहब एक मैच यादगार है, शाहजहाँपुर में गांधी मेमोरियल हम लोग खेल रहे थे, हमारी टीम खेल रही थी स्टूडेंट क्लब
1: जी,
0: और हमारा सेमीफाइनल मैच था पंजाब पुलिस से। तो पंजाब पुलिस में उस जमाने में 9 इंडिया की टीम खेला करते थे, अश्विनी कुमार साहब DIG थे, उन्होंने बहुत शौक था उन्होंने टीम बनाई थी, तो 9 इंडिया के उसमें खेला करते थे। धर्म सिंह साहब एक बैक थे 6 फुट से ऊपर के आदमी, अब मैं छोटा सा आदमी राइटिंग खेल रहा था, 15 मिनट तक ऐसा हुआ और पाकिस्तान फाइनल में पड़ी हुई थी।
1: अच्छा,
0: हमारा सेमीफाइनल था पंजाब पुलिस से, तो ऐसा हुआ कि 15 मिनट तो उन्होंने मुझे हाथ नहीं रखने दिया, राइट से मैं काटता था उन्होंने हाथ बढ़ाया बॉल ले ली, लेफ्ट से काटा उन्होंने हाथ बढ़ाया, मैं बहुत परेशान बड़ा नर्वस के करूं क्या, इतना लंबा चौड़ा आ रहा है इंडिया टीम के वो खिलाड़ी। तो फिर मैं अब शाहजहाँपुर में उस जमाने में पब्लिक बहुत होती थी, उस जमाने में लाउड स्पीकर तो नहीं होते थे मगर वो ग्रामफोन का वो ले आते थे, वो
1: जी जी
0: वो धोतु जैसे पब्लिक वो उससे बड़ा कदर मारते, पब्लिक बहुत हुआ करती थी वहाँ पर। तो साहब अब मैं बहुत परेशान हुआ, साहब क्या करूँ, तो मैंने ये किया कि मैं एक बॉल बहुत स्पीड में उनके सामने लेके आया और उन्होंने मैंने राइट को उन्हें बॉल दिखाई कि मैं राइट को काट रहा हूँ, उन्होंने पैर खोल के जैसे लंबे हाथ से ले लेते थे वो पैर खोल के उन्होंने चाहा कि मैं बॉल ले लूँ, मैं उनकी टांगों बीच में सट से निकल गया, बड़े पब्लिक ने गदर मचाया था और वो कुछ झुंझलाए भी। उसके बाद दोबारा ऐसा हुआ कि फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो ऐसी हुआ तो उन्होंने ये किया कि पीछे से मेरे स्टिक डाला था, उस जमाने में जर्सी में जेब हुआ करती थी ऐसी, वो जेब में उनका स्टिक फंसा, मेरी जर्सी झर से हो गई, जर्सी फट गई। मैंने कहा भी साहब इतने बड़े आप ओलंपियन प्लेयर हैं और एक मामूली सा आदमी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, कमाल करा आपने। तो साहब वो उससे हम हार तो गए थे मगर एक वो वाकया जिंदगी में याद है आज तक।
1: लेटना साहब, आपके दौर से और आज के दौर तक हॉकी में बहुत बदलाव आया है। पहले इंडियन स्टाइल की हॉकी दुनिया के दूसरे देश खेला करते थे, आज कुछ स्थितियां इस तरह से बदल गई हैं कि हिंदुस्तान को अपनी शैली छोड़कर यूरोपीय शैली अपनानी पड़ी है, तो इस बदलाव को आपकी पारखी आंखें किस नजरिए से देखती
0: हैं? बदलाव तो ये है असल में कि गेम बहुत फास्ट हो गया। अब पहले फुटबॉल बाय पावर कहलाता था, अब हॉकी बाय पावर भी हो गया। टर्फ लगने से बॉल की इतनी स्पीड बढ़ गई है कि अगर उसमें स्टेमिना आप में जान नहीं होगी तो आप नहीं खेल सकते। पहले जैसे कि मैंने मुझे आपने देखा कि मैं 1948 में पहला खेला और उसके बाद 1965 में मोहन बगान के साथ ओलंपियन पैरों में खेला, इतने साल अब खेलने का सवाल ही नहीं है।
1: जी जी।
0: इसलिए कि ट्रम्प जो है 3-4 साल के अंदर ही आदमी की जान खींच लेता है, इतनी स्पीड और उसमें से वो आग भी निकलती। इसलिए आपने देखा होगा कि उस पर हमेशा हाफ टाइम में पानी डाला जाता और खेल से पहले ही पानी डाला जाता, तो कुछ ऐसा उससे है कि कुछ उस पर असर पड़ता है ग्राउंड से, तो उस वजह से हमारी टीम जो है वो हो रही। दूसरी बात ये कि कोचेस हमारे सही नहीं हुए। मैंने टीवी पे देखा खड़े हैं, इतनी बड़ी तोंद है उनकी, झुक सकते नहीं, प्रैक्टिकल करके कुछ बता सकते नहीं, तो टीम का क्या होगा? डायग्राम बना के आप टेबल पे बता रहे हैं, अब आप देखें डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं, जब पास करके निकलते हैं तो कुछ भी नहीं जानते जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करते।
1: जी, जी, जी।
0: वो नील होते हैं बिल्कुल, तो इसी जब प्रैक्टिकल जब नहीं होगा। एक साल जफर साहब ने किया कोच, इंडिया टीम को इतना अच्छा रिजल्ट दिया, 8वें नंबर से 3rd नंबर पे आ गई, तो कोचेज हमारे जब सही नहीं होंगे जो ग्राउंड में जाके कुछ बताएंगे तो कैसे होगा? अच्छा, बहुत सी चीज़ें क्योंकि फॉरेन वालों की तादाद ज़्यादा है इसलिए उन्होंने रूल्स रेगुलेशन इतने चेंज करा लिए, उनकी मेजॉरिटी है कि उसमें अभी बड़ा फ़र्क पड़ा हम लोगों को। मसलन ये है कि हमारे ज़माने में बॉल को लेकर अगर आप घूमें तो ट्रेंडिंग हो जाती, फाउल हो जाता था। अब आप कितना बॉल को लेकर घूमते रहिए कुछ नहीं होता। उसमें उनको फॉरेन कंट्री को एडवांटेज है, उनके 6-6 फीट के लोग हैं, हमारी 2-3 ही मुश्किल से ऐसे होते हैं, बाकी सब 5.5-5 ऐसे। तो वो हम जब उस बॉल को लेकर घूमते हैं तो हमारा कितना डायमीटर बनेगा, वो घूमते हैं तो कितना, कई कई हॉकी डालते हैं, कई कई प्लेयर चेक करते हैं, एक स्कूपिंग पावर है, अब स्कूपिंग का सारा गेम चल रहा है, लिया स्कूप किया और ऑफ साइड ख़त्म कर दिया। पहले हमारे ज़माने में ऑफ साइड होता था, ऑफ साइड ख़त्म कर दिया, अब तो उनका प्लेयर गोलकीपर के पास खड़ा है, उसने यहाँ से स्कूप किया, उसके पास गिरा, उन्होंने लिया गोल पे।
1: जी जी,
0: हमारे इतनी स्कूपिंग पावर भी नहीं है।
1: आपको क्या लगता है कि भारतीय हॉकी की कमजोरी क्या पेनल्टी कॉर्नर ठीक से न ले पाना भी है?
0: अब पेनल्टी कॉर्नर में देख लीजिए आप, फॉरन वाले इतनी प्रैक्टिस करते हैं और उसको उनके अगर 3 पेनल्टी कॉल में मिलते हैं तो 2 जरूर गोल होते हैं, हमारे 3 मिलते हैं तो एक भी मुश्किल से होता है। पहले हमारे ज़माने में पेनल्टी कॉर्नर के अंदर गोल के अंदर पूरे 11 प्लेयर खड़े होते थे
1: जी,
0: अब 5 खड़े होते हैं और गोल नहीं होता, और उस ज़माने में 11 प्लेयर गोल के अंदर खड़े होते थे, पेनल्टी कॉर्नर में गोल होते थे।
1: तो भारतीय हॉकी में ये जो गिरावट आई है इसके लिए कौन कितना जिम्मेदार है?
0: इसका जिम्मेदार तो साहब मैंने बताया ना कि इसमें हम लोगों को कोई ज़्यादा खाना पीना भी नहीं मिलता, प्रैक्टिस भी नहीं मिलती।
1: जी जी।
0: ट्रफ हमारे यहाँ नहीं है, फॉरेन वाला देखिए एक जगह में 8-8-10 बच्चों की प्रैक्टिस के लिए ट्रफ लगे हुए, तो जब हम प्रैक्टिस ही नहीं मिलेगी हमें तो क्या होगा?
1: लडनगा साहब, बहुत सारे खिलाड़ियों का कोई ना कोई आइडियल होता है, आपने जब हॉकी खेलना शुरू किया तो कौन ऐसा था जो आपका आइडियल था?
0: साहब ऐसा मैंने हमेशा लड़कों से अपना ये कहा है, जो नए लड़के होते थे मैं उनसे कहा भाई देखो हॉकी का मैच हो रहा है, आप टूर्नामेंट में आओ, हॉकी को देखो और जो तुम्हारी पोजीशन पे तुमसे अच्छा खिलाड़ी खेल रहा है उसको देखो, वो क्या करता है क्या नहीं करता है तुम उसको करके देखो, अगर तुम्हें कुछ फ़ायदा होता तो करो नहीं करो। मैंने बाबू साहब से चीज़ ली, मैं भी राइट इन खेलता था, बाबू साहब भी राइट इन खेलते थे, बाबू साहब चलते चलते बॉल को और यूँ स्कूप करके राइट आउट को फेंक दिया करते थे हाफ के ऊपर से, मैंने उसे प्रैक्टिस की मैं भी करने लगा। तो मैंने इदरीस साहब को मैंने देखा, अलाहाबाद के थे
1: जी,
0: वो भी राइट इन खेलते थे, असल में इंडिया में चांस इदरीस साहब को सिर्फ बाबू साहब की वजह से नहीं मिला क्योंकि दोनों एक ही टाइम में थे, वरना इदरीस साहब भी बहुत स्पीड उनकी बहुत थी विद बॉल, इतनी स्पीड मैंने विद बॉल किसी भी नहीं देखी जो इदरीस साहब में थी। बाबू साहब को कंट्रोल बहुत था, हॉकी पे बॉल पे कंट्रोल बहुत था, वो जो आता जहाँ जाते थे घुमा लेते थे, तो उस मैंने उनकी इदरीस साहब को देखा कि उन्होंने राइट इन से और लेफ्ट इन और लेफ्ट आउट को फिट की बॉल, तो तो मैंने कैसे करते हैं, मैंने भी करना शुरू किया।

0: लटंगा साहब, आपकी हर सांस में हॉकी बसी हुई है। आपने वो सुनहरा दौर भी देखा और आज भी आप भारतीय हॉकी को देख रहे हैं, दिल में क्या एहसास आते हैं?
1: साहब बस बड़ा अफसोस होता है देख के। बहुत से लोग तो मेरे यार दोस्त हैं, एक वो हैं जुबैर साहब हैं, एक्साइज सुपरिंटेंडेंट हैं यहाँ, उन्होंने मुझे देखा फाइनल मैच में रॉयल टाइगर में जो एक टूर्नामेंट हुआ था अभी, तो उन्होंने मुझसे कहा चाचा क्या करोगे तुम देख के, तुम्हें क्या मज़ा आएगा, क्यों आ जाते हो? मैंने कहा भाई टाइम पास करने आ जाता हूँ, क्या करूँ, टाइम पास नहीं होता, यही देख लेता हूँ। तो वाकई ये है। अब सर दूसरी बात ये कि नए लड़कों में एक और चीज़ आ गई है। एक लड़का बड़ा अच्छा खेल रहा था मेरे क्लब का, मैंने उससे कहा भाई देख तू बहुत अच्छा खेलता है, तेरे पास सब कुछ है, मगर खिलाड़ी वो है जो दूसरे की बॉल से खेले, अपनी बॉल से तो हर एक खेल लेगा, एक बॉल है आप घुमाते फिर रहे।
0: जी जी।
1: और जैसे ध्यानचंद जी ने मुझसे कहा था कलकत्ता में, अंडरस्टैंडिंग भी टीम की बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक दूसरे की समझ, को बॉल कहाँ फेंकता है, क्या करता है, ये उन्होंने बताया था कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी चीज़, टीम में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो खेल ही नहीं सकती। तो मैंने उससे ये कहा समझाया, मगर वो उन्होंने कहा चाचा आपके ज़माने का खेल नहीं है, ये जवाब दिया
0: जी।
1: उस ज़माने से, उस बात से मैंने आज तक किसी को बताने ही छोड़ दिया, क्या करूँ जो ऐसा जवाब दिए।
0: दिल में एक दर्द भी होता है और अफसोस भी होता है कि क्या दौर था वो और आज हम कहाँ आ गए हैं। किस डेडिकेशन के साथ खिलाड़ी मैदान में उतरा करते थे, बड़ों के प्रति, अपने वरिष्ठ खिलाड़ियों के प्रति कितना सम्मान होता था, आज वो सब कुछ गायब है। शायद सफलता के लिए जो शॉर्टकट लेने का तरीका चल निकला है उसने खेलों को काफी नुकसान पहुंचाया है।
1: हाँ
0: लटंगा साहब, हॉकी के लिए आप अब किस रूप में सेवा दे रहे हैं?
1: मैंने आपसे कहा ना पहले भी कि अगर हमें अपने देश का वो विकार हासिल करना है जो हमें कभी था हमारा, केडी सिंह बाबू साहब के ज़माने तक हम वर्ल्ड कप जीतते रहे जब तक कैप्टन तो रहे, उसके बाद फिर हमारी हारी शुरू हो गई। तो मैंने कहा ना ये कि हम अगर छोटे बच्चों पर तवज्जो नहीं देंगे, स्कूल कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो हमारा सुधार होना बहुत मुश्किल।
0: तो इस वक्त आप बच्चों को सिखा रहे हैं?
1: मैं बच्चों को अब सन 2005 तक सिखाया, अब मुझमें इतनी जान नहीं रही, अब इस वक्त मेरी 82 है
0: जी,
1: तो अब मुझमें इतनी जान नहीं रही है। मैं मेरा पोता बहुत शौकीन है, बहुत खेलता है, मैं उसी को नहीं बता सका।
0: 82 साल की आपकी इस वक्त उम्र है
1: जी,
0: और हॉकी आपने बहुत पहले से 9 साल की उम्र से खेलना शुरू कर दी थी
1: जी।
0: तो आपके घर से किस तरह की सपोर्ट मिली आपको?
1: घर से तो मेरा बचपन में फादर की डेथ हो गई थी, बहुत गरीब आदमी, मेरा दुनिया में कोई था नहीं, ना मेरा कोई बहन भाई था, मैं और माँ सिर्फ। माँ ही चाहती थी कि तुम रामपुर में छोड़ो, इसीलिए मैंने रामपुर नहीं छोड़ा। केडी सिंह बाबू साहब ने चाहा, अपॉइंटमेंट लेटर एनी रेलवे गोरखपुर का मेरे पास आ गया, 15 दिन वो मुझे ले गए बॉम्बे में, ले जाके उन्होंने इन्विटेशन गोल्ड कप खिलाया अपने साथ, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, मगर मेरी माँ ने मना कर दिया कि मैं वहाँ गोरखपुर नहीं भेजूँगी। वो मेरी माँ, दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई था नहीं, इसलिए मैंने वो नहीं किया। मुझे असल में सारी सपोर्ट जो मिली वो हॉकी की, वो ब्रिटिश पीरियड में ज़्यादा मिली।
0: अच्छा।
1: मैं फुटबॉल भी खेलता था बहुत अच्छी, फुटबॉल की वजह से मुझे टेक्सटाइल में नौकरी मिली, फुटबॉल की वजह से मुझे शुगर फैक्ट्री में नौकरी मिली। वो इंग्रेज था एक एडवर्ड जनरल मैनेजर टेक्सटाइल का, वो खुद फुटबॉल खेलता था, उसने मुझे फुटबॉल खेलता देखा, मेरी उम्र उस वक्त कोई 15-16 साल थी, बाप की मेरे डेथ हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे देखा तो मुझसे बोला कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तो मेरे आंसू निकल आए, मैंने कहा मेरे बाप की डेथ हो गई, मैं पढ़ता और था कुछ नहीं है, फिर क्या करोगे, मैंने कहा आप कुछ मेरी मदद करें, उर्दू बहुत अच्छी बोलता था वो, तो मैंने कहा आप कुछ मेरी मदद करें, तो उसने मुझसे कहा अच्छा तुम कल टेक्सटाइल में आ जाओ, मैं कुछ करूँगा। वो मैं पहुँचा साहब उसके पास, उसने मुझसे कहा तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या है? मैंने कहा मैं बिजली का काम करना चाहता हूँ, तो उसने मुझे एज ए अप्रेंटिस 15 रुपये का
0: अच्छा
1: पेड अप्रेंटिस लगा दिया, उससे हमारी गुजर बुजर होने लगी। उसके बाद जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो टेक्सटाइल की हालत ख़राब हो गई, रुई मिलती नहीं थी, 15-15 दिन टेक्सटाइल बंद रहती थी। तो इसी तरह एक यहाँ रामपुर जब मर्ज हुई, सबसे पहले एक कमिश्नर आए थे रामपुर में जय किरत सिंह
0: जी,
1: उनके नाम से एक फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ पुलिस लाइन में, उसमें मैं खेल रहा था टेक्सटाइल की तरफ से, शुगर फैक्ट्री में 2-3 इंग्रेज खेल रहे थे, उन्होंने मुझे देखा खेलते हुए, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हमारे यहाँ आ जाओ, तो हालत टेक्सटाइल की बुरी थी, मैं वहाँ चला गया। फिर आखिरी वक्त

0: राज क्या है?
1: मेरी फिटनेस का राज ये है साहब कि मैं करीब 20 साल से एक टाइम खाना खाता हूँ।
0: अच्छा,
1: दूसरी बात ये कि साइकिल चलाता हूँ, साइकिल मेरे पास है। और डॉक्टर भी मुझसे यही कहते हैं, जो मेरे दो तीन दोस्त हैं डॉक्टर, वो यही कहते हैं कि तब तक तुम साइकिल पे चल रहे हो तब तक ठीक हो। हालांकि बच्चे कहते हैं, कोई कहता है स्कूटी ले लो, कोई कहता कुछ
0: जी
1: कर
0: जी
1: लो,
0: जी जी
1: मैंने कहा नहीं भैया, अब भी मैं साइकिल पर आया, मेरी साइकिल खड़ी है।
0: जी
1: तो मेरा बस यही याद है, एक तो मैं खाना एक टाइम खाता हूँ, बीस
0: हाँ,
1: साल हो गए,
0: अच्छा।
1: और दूसरी बात ये कि मैं साइकिल पर चलता हूँ।
0: और रामपुर में जो भी खेल आयोजन होते हैं उसमें आपका सक्रिय सहयोग भी रहता है, आपका आशीर्वाद भी रहता है। तो
1: हाँ,
0: इस दौर में रामपुर में खेलों की क्या स्थिति है, आपका क्या नजरिया है?
1: रामपुर में अब जैसे मैंने बताया आपको कि CBSE वाले तो कुछ हॉकी के लिए कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए, अब उनमें जागृति आई है
0: जी
1: तो अब बच्चों को थोड़ी सपोर्ट मिलेगी।
0: जी
1: और क्लबों में तो सब कुछ ख़त्म हो गया, क्लबों में अब कुछ नहीं है। आप देखें किसी ग्राउंड पर प्रैक्टिस नहीं होती, पहले हर क्लब में प्रैक्टिस होती थी और इसीलिए हॉकी का जोर था, अब किसी क्लब में प्रैक्टिस नहीं होती। अब तो सिर्फ हॉस्टल में भवनपुरी में
0: जी जी
1: या वहाँ हॉस्टल पनवड़िया में जो ग्राउंड है उसमें उसमें प्रैक्टिस होती है।
0: तो आपका दिन कितने बजे शुरू होता है, सुबह से
1: जी
0: लेकर शाम तक क्या रूटीन रहता है आपका?
1: मेरा हिसाब सुबह शाम तो ये रहता है कि बस सुबह को बाजार आना, घर का सौदा वौदा लिया और पहुंच गया, दोपहर को थोड़ी देर आराम किया, शाम को फिर कहीं घूमने निकल गया, मगर हो रहता साइकिल ही पर ही।
0: म्यूजिक सुनने का शौक है,
1: हाँ साहब,
0: संगीत?
1: म्यूजिक के तो बहुत शौक है। रामपुर के जितने उस्ताद थे मैंने
0: जी
1: उनकी बहुत खिदमत की है, जैसे उस्ताद अहमद जान खां थिरकुआ,
0: अच्छा,
1: उस्ताद सादक अली खां, उस्ताद मुश्ताक अली खां, इन लोगों के साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा है।
0: तो संगीत के साथ खेल का तालमेल किस तरह से बैठा है?
1: चरा से
0: सुना
1: बड़ा के एक सुल्तान बेग साहब थे, इकबाल बेग को तो आप जानते
0: जी जी जी
1: होंगे,
0: जी
1: उसके फादर,
0: जी
1: वो हॉकी भी खेलते थे बहुत अच्छी, मेरे साथ थे और मेरे क्लब में थे। उनको गाने का बहुत शौक था, उन्हें मालूमात भी थी गाने में,
0: जी
1: ये गाने नहीं जो आजकल हैं क्लासिकल गाने,
0: क्लासिकल गाने।
1: वो उनको बहुत मालूमात थी। मैं उन्हीं के साथ रहता ज़्यादातर, तो वो मुझे उस्ताद सादक अली खां के यहाँ ले जाते थे। तो ये लोग मुहर्रम में आते थे असल में रामपुर में, बाकी तो इनके प्रोग्राम चलते रहते थे। तो और सब पद्म श्री मिले हुए थे तीनों को,
0: जी,
1: तो सब जब ये मुहर्रम में आते थे एक महीना यहाँ, तब फिर मेरी इनसे मुलाकात होती थी और बेग साहब के साथ में जाया करता था।
0: बहुत सारी तमन्नाएं इंसान अपने दिल में संजोता है, बहुत सारी इच्छाएं पूरी भी हो जाती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी करने की जद्दोजहद जारी रहती है। तो लड्डन खान साहब की क्या इच्छा अभी पूरी होनी बाकी है?
1: अरे साहब, अब क्या इच्छा है, अब तो बस चल चलाओ का वक्त है, अब कोई इच्छा नहीं है। 82 साल की उम्र हो गई, पता नहीं किस दिन बुलावा आ जाए।
0: हमारी ये दुआ है कि आपका आशीर्वाद, आपका साथ हमें लंबे समय तक मिलता रहे, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, और आपके मार्गनिर्देशन में रामपुर में कम से कम खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता रहे। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, हम आभारी हैं आपके, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, ये थी जिंदगी के आईने में कार्यक्रम की आज की कड़ी। अगले अंक में फिर हमारे साथ होगी एक और शख्सियत, तब तक के लिए असीम को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धरोहर के अंतर्गत धारावाहिक जिंदगी के आईने से की कड़ी संख्या 7 का प्रसारण। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मन भावन।

नमस्कार, आदाब, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम मन भावन में। श्रोताओं, आज मन भावन में मैं आपके रेडियो साथी नेहा हूँ आपके साथ। हमारा आज का मन भावन है एक ही गीतकार, जिसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महान गीतकार गुलजार के लिखे कुछ गीत। तो पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म कमीने से, जिसे गाया है मोहित चौहान ने और लिखा है गुलजार साहब ने।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म इश्किया से। इस गीत को गाया है राहत फतेह अली खान ने, शब्दों से सजाया है गुलजार साहब ने और संगीत दिया है विशाल भारद्वाज ने।

श्रोताओं, आज मन भावन में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलजार साहब के लिखे कुछ फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रेखा भारद्वाज और जावेद अली की युगल आवाजों में फिल्म रावण से। इस गीत को लिखा है गुलजार साहब ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म वीर से। गीत को गाया है रूप कुमार राठौड़ ने, साथ दिया है श्रेया घोषाल ने और कलमबद्ध किया है गुलजार साहब ने।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे मन भावन। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर। दिन के 12 बजने को हैं। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कॉलिसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 12:05 हुए हैं। आइए अब आपको देते हैं जानकारी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। प्रभारी थाना निरीक्षक बनिया ठेर जिला संभल हमें ये सूचित करते हैं कि अरसी पत्नी जीशान निवासी ग्राम जवेटा बनिया ठेर जिला संभल से दिनांक 29/4/2026 से लापता है। अरसी की उम्र लगभग 22 वर्ष, कद 4 फुट 3 इंच, रंग गोरा और इनके बाल काले हैं। इनका चेहरा गोल है और शरीर की बनावट औसत है। इन्होंने फिरोजी सूट और सलवार पहना हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई जानकारी मिलती है अथवा कोई किसी भी तरह की सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। थाना बनिया ठेर जिला संभल, आप इस नंबर पर भी जानकारी दे सकते हैं। फोन नंबर है 94125107311।

अगली सूचना हमें प्राप्त हुई है प्रभारी थाना निरीक्षक हजरत नगर गढ़ी जिला संभल से। हमें ये सूचित करते हैं कि मोहम्मद तनवीर पुत्र गामा दिनांक 25/12/2024 से ततारपुरा मजरा बटौआ से लापता हैं। इनकी उम्र 19 साल, रंग सांवला, कद 4 फुट और इनके शरीर की बनावट सामान्य है। तनवीर की आंखें काली हैं। इन्होंने फौजी रंग का पजामा और काली शर्ट पहन रखी है। इनके बारे में किसी व्यक्ति को अगर कोई जानकारी मिलती है या किसी भी तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। थाना हजरत नगर गढ़ी जिला संभल। मोबाइल नंबर है 8368025727। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: Akashwadi at 90.
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: बंदूक से निकली गोली का कोई नाम, कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। जब ये गोली लगती है किसी इंसान को तो घायल होती है मानवता। छूट जाता है एक बचपन, वीरान हो जाता है किसी का जीवन, टूट जाती है किसी के बुढ़ापे की लाठी, बुझता है एक दीपक उम्मीद का। अपने इस देश में बारूद का ढेर नहीं, फूलों का चमन महकाएं, जीवन के हर रंग से इंद्रधनुष बनाएं।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 12:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम।

नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त नेहा आप सभी श्रोताओं का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम गीत आपके नाम में। श्रोताओं, अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के गीत और भेजना चाहते हैं हम तक अपनी फरमाइश, तो अभी आप हमें अपनी फरमाइश लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी वही जानी पहचानी गीत आपके नाम airrampur@gmail.com। तो जल्दी जल्दी से हमें लिख भेजें अपनी फरमाइशें ईमेल के जरिए। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म प्यार ही प्यार से। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने और सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। रेशमा अंसारी, शकीला और सईद अंसारी बीरमगाम से, प्रियंका शर्मा, अजीता शर्मा और करुणा शर्मा। अगले हमारे श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया नमन और साथ में है अपार डिंगिया, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान और पूरा अब्बासी परिवार। दुर्गा चौक जूना पानी सनाबद मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं कालू सिंह बडोले, सीताराम हीरालाल, साहिल सुमन बडोले, साथ में है विशाल, हरिओम और भावना बडोले। श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से हमारे श्रोता हैं आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित और साथ में हैं कोको रानी। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और साथ में हैं बलवीर सिंह। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और साथ में है गुरशब्द सिंह राहुल। भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे श्रोता हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और साथ में पूजा परिहार। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, राधा नामदेव, संजय डिंगिया, संदीप, अनिल और साथ में दर्शन भाई। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नहाटा और अगले हमारे श्रोता फरमाइश करने वाले हैं कुम्भार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश, पांडुरंग कुमार। आइए इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म प्यार ही प्यार का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दो कलियां से, गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने और सुनने की फरमाइश की है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप, कालका से शिवचंद्र बजाज, साहिल और साथ में है विट्टा बजाज, जमनिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, घमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और साथ में है आर्य जायसवाल। अगले हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मेरा जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लदावली जिला मुरादाबाद से, गुन्नौर से हमारे श्रोता हैं आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, कुमार संचित, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सरबद और साथ में हैं सानवी, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य, लाडो कोयल, नानक चंद, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल, डुग्गू और भाविक, राजा हसैन, शाहिद, आदिल हुसैन जिला मुरादाबाद से, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और साथ में हैं आशा देवी, गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, साथ में है रक्षता लोखंडे, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमाराज और दिव्या भारती, गोराया जालंधर से संदीप कौर, प्रभा मेरठ बाईपास से राधिका कौर और मेरठ कैंट से आरती कौर, बडिंग खेरा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं पी एस नवानकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मोहरके, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू, निशांत, कौशिकी, दीपाली, साथ में हैं इनके युवान और आर के राजा, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। अगले हमारे श्रोता हमें लिख भेजते हैं अपनी फरमाइश खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म दो कलियां का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ों में।

कार्यक्रम गीत आपके नाम में आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के गीत। तो आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म जीने की राह से। इस गीत को सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदारा दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित खुराना साथ में हैं, केशु और रिधान खुराना मनाली हिमाचल से, हर्ष विनय विनीत रोजस भाई चंडीगढ़ से, शैफाली शैफी डेविस बिमला और साथ में हैं सतीश अनेजा पटियाली रोड गंज ढुंडवारा से, आमिर हुसैन बेगम तयवा शेख फौजिया शेख अहिल हुसैन अरहान और इनके परिवार के।

अंसारी, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, साथ में है स्वीटी छाबड़ा, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और साथ में आयान बाबू, परभड़ी महाराष्ट्र से रूपेश, संगई, महेश, प्रज्ञेश और साथ में है प्रीतेश और इनका पूरा संगई परिवार, दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से ही है हमारे श्रोता तुलसी, वीना और चैतन्य, पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना, चेतन और साथ में इनका समस्त भगत परिवार, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी यादव, इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म जीने की राह का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म धरती कहे पुकार के इस फिल्म के इस गीत को गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने और सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने आरसी जमनिया मध्य प्रदेश से मनीष रावत लीलू और रोहन राकेश फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पंधा इंद्रजीत कौर बेबी मनमीत मनविंदर सिंह और साथ में है जी एस रामगढ़िया

उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी शिवन्या और अन्नू गोस्वामी, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष, ग्राम बपोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से, शाहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम, साथ में है डीजे प्रधान, बाइट फील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण संस्कृति और पौरुष, छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूल वाले दुखनी, सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले परिवार, सईद भाई, आसिफा परवीन और सूफियान, साथ में हैं अल्फिया सराफ, करणबीर हाउस भुचो कैच जिया बठिंडा पंजाब से, हमारे श्रोता हैं परेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणबीर करण, तपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू और साथ में हैं इनके दमन और अभिजोत, श्रॉप रोड राजकोट से, प्रेमा रानी डॉली और सुरेश डोकर गुजरात से, प्रवीण राज सोनी, साथ में हैं इनके श्वेता सोनी, चमनपुरा मोरबी से, प्रमिला जेटली दीपक और साथ में हैं आशु जेटली, सहारनपुर से हमारे श्रोता हैं सोनाली नारंग, आशा और साथ में सुरेश नारंग, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित गर्भी और साथ में हैं हिमाक्ष, वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज से हमारे श्रोता हैं जीशान वारसी, इमरान शेख, रिहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और साथ में सोएफ खान। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है स्टेशन रोड जमशेदपुर से, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी, साथ में इनके सोनू भाटिया। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म धरती कहे पुकार के का ये गीत, मुकेश और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गीत आपके नाम में लगातार हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद के गीत। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला गीत फिल्म दीवार से, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोंसले ने, और सुनना चाहे हमारे इन सभी श्रोताओं। मोहल्ला बरादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, फौजिया, शनाया, असद, फिरोजा और साथ में है नगमा नाज मंसूरी। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है दुर्गा चौक जूना पानी सनावत से कालू सिंह बडोले, सीताराम, साहिल और विशाल ने। अगली ईमेल हमें लिख भेजी है ग्राम पीपरलोड सारगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति, शिवांश। अगली हमारे श्रोता हैं नरन स्टेट जिला समस्तीपुर बिहार से विनय कुमार मिश्रा, विनीता, गुंजन, छोटू, अमन परासा, नूतन मिश्रा और साथ में है इनके लल्लन मिश्रा। ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांत कठेरिया, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, बेद बाबू और समस्त कठेरिया परिवार हमें फरमाइश करते हैं। अगले हमारे श्रोता हमें लिख भेजते हैं अपनी फरमाइश छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मंगोली से मोहम्मद इसाक, खातिजा बेगम, मोहम्मद असफाक, आफरीन, मोहम्मद अल्ताफ और साथ में हैं इनके नीलोफर फातिमा। छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत, मोहम्मद हसनैन रजा और साथ में हैं गौसिया फातिमा। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक डिंगरा, अनुश्री डिंगरा, प्रमिला और साथ में हैं देवश्री डिंगरा। मेरठ कैंट से सुरेश डोम, संदीप डोम और साथ में हैं आशु डोम। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है मोहन सिंह रावत, ममता रावत, बान्या, इंदिरा और इंदिरा ने तलीताल, नैनीताल से। अगले हमारे श्रोता हैं मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, साथ में हैं शेख हबीबुर रहमान। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत, मनविंदर और साथ में हैं इनके एस रामगढ़िया। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म दीवार का ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाज।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।
1: कह

श्रोताओं, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी भेजी हुई ईमेल के जरिए आपकी जो फरमाइशें हैं उनके गीत। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि हमारे जिन श्रोताओं के नाम हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं, कृपया वो दोबारा नाम ना भेजें, क्योंकि हमारे और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिनके नाम अभी बाकी हैं। हम चाहते हैं कि हम सभी श्रोताओं के नाम अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने श्रोताओं की फरमाइशों को पढ़ते हुए। हमारे श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म यादों की बारात के इस गीत की, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने, और सुनना चाहा है इन सभी श्रोताओं ने। बरेली कैंट चनेटी से रागनी और मुस्कान, साथ में है विनेश कुमार। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बबलू निषाद और साथ में है तरुण यादव। गाँव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसबीर जस्सी और सीता गीता। बडिंडा रोड मंडी डबली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी। अगले हमारे श्रोता हैं फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरबेल, कमरा खोरबाल, कमला रानी, गीतिका खोरबाल और साथ में है भानु प्रकाश। रहाटा गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका और समस्त रामेकर परिवार। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना और साथ में है निवान शर्मा। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से हमारे श्रोता हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और इनके परिवार के सभी सदस्य गण। छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार, संदीप जाटव मेरठ कैंट से, लड्डू जाटव और साथ में है टुक टुक, उमरखेड़ से सिराज खान और शवाना खान। अगले हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती ऊषा, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुविया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और साथ में हैं प्रांजल राय। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म यादों की बारात का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म भीगी रात से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत से सजाया है रोशन ने और बोल लिखे हैं इस गीत के मजरूह सुल्तानपुरी ने। और सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और साथ में हैं खुशी गोस्वामी। रामगंज खंडवा से ही हमारे श्रोता हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू मोनू, रानू, सपना, शिबी, सलोनी और पेंटर बाबू। शिवपुरम कॉलोनी से कमला देवी महोबिया, अनय अनाया, ईशु बाबा। शीतला चौक खंडवा से विशाल सिंह और विवेक सिंह। कलानौर से हमारे श्रोता हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। सरोज चौक अमरावती से करमुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान और आफिया। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, सविश्ता मोहम्मद, नसीब और पलक लुबना, साथ में हैं यश मंसूरी। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हमारे श्रोता हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है हमारे श्रोता ने सुरेश नारंग, आशा सोनाली, सहारनपुर से। अगले हमारे श्रोता हमें लिख भेजते हैं अपनी फरमाइश खुर्जा उत्तर प्रदेश से, तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा।

बिहार स्टेट डुमराव से हमारे श्रोता हैं बलीउल्लाह अंसारी, सोनम वली और साथ में है आसमा वली। करणवीर हाउस भुचो कैंचिया से हमारे श्रोता हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर और कुलदीप, साथ में हैं इनके सीमू एकम और दमन अभिजोत। सिद्धार्थनगर दार्यपुर बाबली से गजाना नेले, नवदीप एले, विश्वदीप एले, अशोक एले। अगले हमारे श्रोता हमें लिख भेजते हैं अपनी फरमाइश राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, वंदना कुमार और साथ में हैं विट्टू कुमार। अगली फरमाइश हमें मिली है बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि कारवा और बाला साहेब कारवा। अगले हमारे श्रोता हैं जेल रोड दिल्ली से ही लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, उमाराज डुमराव से वली उल्ला अंसारी। अगली फरमाइश हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे श्रोता हमें भेजी है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, श्रीमती नंदा बोर्ड के, हनुमान और साथ में हैं इनके उत्तम जामदड़े। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है हमारे श्रोता ने कापसहेड़ा दिल्ली से फिरोज खान, अहमद मोगा, इकबाल मोगा, साथ में जलंधर से हैं संदीप जाटव, सुरेश और मेरठ बाईपास से राधिका शाक्य और दिव्या अग्रवाल। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म भीगी रात का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

भीगी रात के इस गीत के साथ कार्यक्रम गीत आपके नाम अब यहीं संपन्न होता है। अपने रेडियो साथी नेहा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता आनंद ले रहे थे फरमाइशी गीतों का। कार्यक्रम था गीत आपके नाम, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन का एक बचा है, अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की

0: की प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन क्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अपराह्न के 1:05 हो रहे हैं। आइए वक्त आपको देते हैं जानकारी हमारी आज की प्रथम सभा के शेष और द्वितीय सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

अब से कुछ ही देर में यानी 1:15 पर रहेगा समय लोकगीतों का कार्यक्रम धरती गाती है, जिसमें आज कलाकार रहेंगे मदन मोहन व्रजवासी। महिलाओं के कार्यक्रम कुमकुम का समय रहेगा 1:30 पर। रहेगा समय सुनहरा दौर का, जिसमें आज आप सुनेंगे 80 के दशक के कुछ हिट फिल्मी गीत। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5 बजे आज शाम के साथ। युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी, इसका समय रहेगा 5:15 पर। चित्रपट संगीत कार्यक्रम सुन पाएंगे आप 6:10 पर। किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत प्रस्तुत होगा 6:20 पर। फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है, कार्यक्रम का समय रहेगा 7:00। सुगम संगीत कार्यक्रम रहेगा समय

0: 7:31 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे गजलें। कलाकार हैं राहत फतेह अली खान। और साथ ही इसमें कलाकार रहेंगे हरिहरन। ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 8 बजे। रात्रि 9:30 पर रहेगा समय चर्चा का विषय है कार्यक्रम का। रात्रि 10 बजे कार्यक्रम सुनेंगे रूपक। रात्रि 10:30 पर समय रहेगा गीतांजलि का। ये था विवरण हमारी आज की प्रथम सभा के शेष और द्वितीय सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया फीडबैक चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया फीडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर।

0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज़ पर दिन के 1:10 होने को हैं। कुछ ही देर में होंगी इलाकाई खबरें आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: लखनऊ है इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। सेंट्रल रीजनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग कल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हुई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में हुई इस मीटिंग के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मीटिंग में अवामी बहबूद, बेहतरीन इंतजामिया, मंतकाई तरक्की, इंसदाद तगजिये की कमी, स्कूल ड्रॉप आउट में कमी लाने, जिनसी जराइम में 100% कन्विक्शन यकीनी करने और रियासती सतही साइबर हेल्पलाइन जैसे अहम मौजू पर मानीखेज बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी तहफ़ के मद्देनज़र रेबीज से मुतासर, लाइलाज बीमारी से मुतासर या बेहद खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की इजाज़त दे दी है। एक रिपोर्ट। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
2: रियासत में शदीद गर्मी से और लू से अवामी जिंदगी मुतासर है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में भी रियासत के ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जे हरारत में बतरीज इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। रियासत के कई अजला में दर्जे हरारत 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का कयास है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो गई हैं और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दिन चढ़ते ही सड़कें सूनी हो जा रही हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: शदीद गर्मी और लू के कहर को देखते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, महकमा सेहत, महकमा तवानाई और सभी मुतल्लिका राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के अहकाम दिए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत के साथ बांदा पूरे मुल्क में सबसे गर्म जिले के तौर पर दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने 21 मई तक रियासत के मशरकी और मगरबी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के इंतबाह के बाद महकमा सेहत अलर्ट मोड में आ गया है। नायब वजीर ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अस्पतालों में मुमकिन मरीजों की तादाद को देखते हुए एडिशनल बेडों का इंतजाम किया जाए। जिंदगी बचाने वाली दवाइयों समेत जरूरी अद्वियात का वाफिर जखीरा रखने के लिए कहा गया है। दरियस्ता जिला कानपुर शहर में जिला मजिस्ट्रेट ने सभी तालीमी बोर्डों के जरिए चलाए जा रहे प्री प्राइमरी से लेकर दर्जा 8वीं तक के सभी स्कूलों में फौरी निफाज से 31 मई तक गर्मी की तातील का ऐलान किया है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग में NEET UG के दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। इम्तिहान के इनेकाद में पूरी ईमानदारी और शफाफियत की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब प्रधान ने अहकाम दिए कि गुज़िश्ता इम्तिहान के अमल में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। जनाब प्रधान ने कहा कि दोबारा इम्तिहान सख्त हिफाजती कवानीन के तहत महफूज, बगैर किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से मुनक़िद किया जाना चाहिए। मरकजी सानवी तालीमी बोर्ड CBSE ने दर्जा 12वीं बोर्ड इम्तिहान 2026 की जांचशुदा कॉपियों की स्कैन की गई कॉपियों के लिए दरख्वास्त करने की आखिरी तारीख एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक अपनी दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। और अमरोहा में गुज़िश्ता रात गजरौला थाना हलके में दिल्ली लखनऊ शाहराह 9 पर तेज रफ्तार कार को नामालूम गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसे में कार में सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। मरने वालों में 3 अफराद मगरबी बंगाल के बाशिंदे बताए जा रहे हैं जबकि 1 शख्स बरेली का रहने वाला था। हादसे में जख्मी दोनों अफराद को हायर सेंटर में दाखिल कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। दरियासना एक दीगर हादसे में आज अलग सुबह आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसे में एक मुसाफिर जहां भाग हो गया जबकि 20 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा तब पेश आया जब रोडवेज बस आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में पीछे से उससे टकरा गई। सभी जख्मियों को सैफई पीजीआई में दाखिल करा दिया गया है। मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम धरती गाती है, जिसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मदन मोहन ब्रजवासी के गाए कुछ लोकगीत।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम धरती गाती है में मदन मोहन ब्रजवासी के गाए कुछ लोकगीत। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 2 बजने को हैं, दिन के क्षमा करें दिन का 1:30 होने को है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, दिन के 1:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम कुमकुम।

मेहमान आया है द्वार पर, चरणों की धूल भी जैसे मांग रही है स्वागत का अधिकार। हमारा अतिथि देवो भव की यही वाणी है, हमारी पुरानी संस्कृति का वही अनमोल उपहार। हमारा ना जाने किस दूर धरती से वह आया, थके कदम थकी आंखों में बस थोड़ी सी थकान समाई। मुस्कान बिखेर दो, चाय का कप थमा दो, सादर बैठाओ उसे जैसे देवता को आसन लगाए। अतिथि देवो भव, यह केवल वाक्य नहीं, यह तो दिल की भाषा, यह तो जीवन का आदर्श है। जिस घर में मेहमान को सम्मान ना मिले, वह घर खाली दीवारों की दुनिया सी लगता है। नमस्कार सखियो, आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कुमकुम में स्वागत है और मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी सखी रजनी। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संस्कृति की, उस खूबसूरत परंपरा की जो सदियों से हमारे दिलों में बसी हुई है, अतिथि देवो भव। सखियो, भारत को संस्कारों और मेहमान नवाजी का देश कहा जाता है। यहाँ घर आए मेहमान को सिर्फ इंसान नहीं बल्कि भगवान का रूप माना जाता है। यह भावना हमारे संस्कारों में रची बसी है। सखियो, आज भी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम शायद थोड़े व्यस्त हो गए हैं, लेकिन हमारे संस्कार आज भी हमें यही सिखाते हैं कि घर आए मेहमान का मुस्कुराकर स्वागत करना चाहिए। सोचिए, जब कोई अपना दूर से चलकर आपके घर आता है और आप उसे एक प्यारी सी मुस्कान और एक गिलास पानी और अपनापन देते हैं तो उन्हें कितना अच्छा और सुकून मिलता है। अतिथि देवो भव सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की वो आत्मा है। सखी, हमारे यहाँ कहा जाता है, मेहमान आए घर हमारे, खुशियों के दीप जलाए सारे। पहले ना हमारे घर या गांव में लोग बिना बताए भी रिश्तेदारों के घर पहुंच जाते थे और घर वाले बड़े प्यार से कहते थे, अरे आप आ गए।

भर तो रोशन हो गया। सखियों, आपको पता है कि आज मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में रिश्तों में थोड़ा फासला ज़रूर आया है, लेकिन अपनापन आज भी सबसे बड़ी दौलत है। मेहमान नवाजी सिर्फ बड़े लोगों तक ही सीमित नहीं होती। अरे, हमारे घर के बच्चे भी अगर घर आए तो किसी मेहमान को नमस्ते करें व पानी पूछें, यही तो हमारी संस्कृति का संस्कार कहलाते हैं। और सच मानिए, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती, उसकी पहचान होती है उसके व्यवहार से। जी हाँ, उसका व्यवहार ही हमें बता देता है कि यह कितना व्यवहारिक है। सखियो, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, बहुत छोटी सी, तो कहानी सुनिए। एक बार एक बुज़ुर्ग व्यक्ति किसी गांव में पहुंचे। वह बहुत थक गए थे और ऊपर से गर्मी भी अपने पूरे रंग दिखा रही थी। फिर वहीं पर एक गरीब किसान ने उन्हें अपने घर बुलाया, पानी व शरबत को पूछा, फिर उन्हें शरबत पिलाया और कहा, बाबा अब आप आराम कीजिए। उन्हें आराम कराया व थोड़ी देर में खाना भी खिलाया। फिर बाबा खाना खाकर आराम करने की जगह सो गए। जब बाबा सुबह को जाते समय उन्होंने बहुत सुंदर बात कही और प्यारी सी बात, बेटा तुम्हारे पास धन कम है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। सखियो, यही है अतिथि देवो भव की असली भावना। आज पर्यटन के क्षेत्र में भी अतिथि देवो भव अभियान भारत की पहचान बन चुका है। जब कोई विदेशी भारत आता है और यहाँ के लोगों का प्यार व सम्मान और संस्कृति देखता है, तो वह सिर्फ जगह नहीं बल्कि दिलों की गर्माहट भी अपने साथ लेकर जाता है। हम सबकी छोटी छोटी बातें भारत की छवि बनाती हैं, जैसे किसी ज़रूरतमंद की मदद करना और उनका स्वागत मुस्कुराकर व बात भी मुस्कुराकर करना, उन्हें फिर अपनापन जैसा सम्मान देना, यही तो हमें उन रिश्तों को दिल से निभाना, यही हमारी भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है। सखी, आज का समय बदल गया है, ज़िंदगी तेज हो गई है, लेकिन हमारे संस्कार आज भी वही हैं। जब बच्चे घर आए, मेहमान को हाथ जोड़कर प्रणाम या चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो ये उन मेहमानों का सम्मान करते हैं और फिर वही आदर सम्मान और संस्कार आगे चलकर उनकी पहचान बन जाते हैं। क्योंकि इंसान बड़ा अपने व्यवहार से बनता है, उम्र से नहीं। हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी हमें हमेशा यही सिखाते थे कि बेटा घर आए मेहमान का आदर सम्मान करना चाहिए। सखियों, कभी कभी एक प्याला चाय और दो मीठे बोल भी किसी का दिल जीत लेते हैं। तो आइए आज हम सब ये संकल्प लें कि अपने संस्कारों को हमेशा जीवित रखेंगे और अतिथि देवभव की भावना को अपने जीवन में अपनाएंगे, क्योंकि रिश्तों की असली पहचान सम्मान और अपनापन है। जो अतिथि को देव समझे वही भारतीय जीवन है। बच्चे जब हमारे घर ये मेहमान आते हैं तो मन में झूमने का और गाना गाने का मन करता है।

0: सखियों, शादी के बाद एक लड़की के जीवन में सब कुछ बदल जाता है। नया घर, नए लोग और एक नया आसमान। अक्सर लोग कहते हैं कि ससुराल में तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं कहती हूँ कोई मुश्किल कुछ भी नहीं, बस शुरुआत में थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार वाला बैलेंस चाहिए होता है। ससुराल कोई पराया घर नहीं, बल्कि एक नई किताब है जिसके पन्नों पर आपको प्यार की नई कहानी लिखनी होती है। तो आइए सुनते हैं इसी संदर्भ में हमारी मेहमान भावना आर्य की वार्ता। वार्ता का विषय है ससुराल में रिश्ते कैसे मधुर रहें।
1: बहनों, हर लड़की को मायके से ससुराल जाना होता है। एक बेटी के दो परिवार होते हैं, एक वह जहाँ उसका जन्म होता है जो कि उसका मायका होता है, दूसरा परिवार उसका ससुराल होता है जहाँ वह विवाह के बाद रहती है। मायके में उसके सगे संबंधी होते हैं, जैसे उसके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और उसकी सहेलियाँ। इन रिश्तों के साथ बेटियाँ अपने बचपन से युवावस्था तक पहुँचती हैं। इसी समय में वे पढ़ती लिखती हैं और खेलते खेलते सबके साथ मिलजुल कर कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। बहनों, यहीं से शुरू होता है उसका दूसरा परिवार। जब एक बेटी शादी करके ससुराल जाती है, जहां उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती हैं, उसे इस घर को भी अपना घर मानना होता है, इस घर को भी स्वर्ग बनाना होता है। बहनों, अब उस बेटी को समझना होगा कि कैसे ससुराल में संबंध मधुर हों, कैसे उन लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाएं, कैसे परिवार वालों को खुश रखें कि वह सब उसकी तारीफ करें। बहनों, इसके लिए हर बेटी को अपने सास ससुर को अपने माता पिता के रूप में देखना चाहिए, अपनी ननद को अपनी बहन की तरह ही समझना चाहिए और अपने जेठ देवर को अपने भाइयों की तरह ही समझना चाहिए। एक बेटी को बहू के रूप में सभी का सम्मान करना चाहिए। एक बहू को अपनी ससुराल में बड़ों को सम्मान तथा छोटों को प्यार देना चाहिए। जब एक बहू ऐसा करती है तो उसको भी सम्मान और प्यार मिलता है। रिश्तों में प्यार और सम्मान का होना बहुत जरूरी है। रिश्ता हो, प्यार हो, सम्मान का भूखा होता है। जब हम किसी को सम्मान और प्यार देंगे तो वह भी बदले में प्यार और सम्मान अवश्य देगा। प्यार के साथ सबका दिल जीता जा सकता है। ऐसे ही एक रिश्ता बेटी को अपने पति के साथ होता है। बेटी को अपने पति का सम्मान भी करना होता है। बेटी का कर्तव्य है कि ससुराल में अपने पति के साथ संबंध बहुत अच्छे से होने चाहिए। आपसी समझौते और प्यार के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। जब एक बेटी के संबंध उसके पति के साथ अच्छे होते हैं तो परिवार में खुशी का माहौल बना रहता है। पति और पत्नी गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। जैसे गाड़ी के पहिए एक साथ चलते हैं, उसी तरह पति और पत्नी को भी मिलजुल कर जीवन रूपी गाड़ी को चलाना पड़ता है। जब पति और पत्नी के संबंध अच्छे होते हैं तो उनके आने वाली संतान भी समझदार और गुणवान होती है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे अपने माता पिता से ही सीखते हैं। बच्चों की पहली पाठशाला परिवार ही होती है। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, इसलिए पति और पत्नी को समझदारी के साथ चलना होता है। जो संस्कार आप उन्हें दोगे वह वही सीखेंगे। बहनों, अब आज के युग में धीरे धीरे हमारी संस्कृति में पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप होने लगा है, जो कि हमारे बिगड़ते रिश्तों की वजह है। हमारे रहने के तौर तरीके, पहनने के कपड़ों, शान शौकत में बड़ा बदलाव देखने में आ रहा है, जो माता चमक धमक की चकाचौंध से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमें ससुराल में मधुर संबंध बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनों से बड़ों की बात मानें, उनके सुझावों को समझें, ना कि उनकी बात का बुरा मानें। आज की पीढ़ी के नाजायज खर्चे भी मनमुटाव की एक मुख्य वजह है। हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितना की ज़रूरत हो। यह चमक धमक की दुनिया में दूर रहना चाहिए। देखने में आता है कि हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करने लगते हैं कि उसके पास इतने कपड़े हैं तो हमारे पास भी होने चाहिए, वो इतना खर्च करते हैं तो हमें उनसे ज़्यादा खर्च करना चाहिए, उनसे आगे रहना है उनसे ज़्यादा खर्चीला बनना है या सब दिखावे के चक्कर में अपनी स्थिति खराब कर लेते हैं। बहनों, यही गलती हो जाती है। हमें हमेशा अपनी स्थिति को देखते हुए खर्चे करने चाहिए। हमें अपने पति और परिवार की आमदनी को ध्यान में रखकर खर्च करना चाहिए। अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो परिवार के बड़ों के साथ बात करनी चाहिए। समस्या कैसी भी हो, मिलजुल कर उसका समाधान अवश्य निकाला जा सकता है। बहनों, देखने में आता है कि ससुराल की छोटी से छोटी बातें आज कल की बहुएं अपने मायके में शेयर करने लगती हैं। इससे परिवार का माहौल खराब होने लगता है। एक अच्छी बहू का कर्तव्य है कोई भी बात को किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह आपका मायका हो या पास पड़ोसी हो। कोई भी सहेली जो भी समस्या हो उसको अपने सास ससुर या पति को बताएं। शादी के बाद किसी भी लड़की की खुशी और उसके ससुराल में एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार और मधुर संबंधों की बुनियाद पर टिकी है। अगर ससुराल में सब अच्छा रहेगा तो जाहिर है यह आपके जीवन साथी के साथ आपके समय और संचार की गुणवत्ता को भी प्रभावित करेगा। सास ससुर भी आपके माता पिता हैं। वह उस समस्या का समाधान अवश्य ही निकालेंगे। यदि कोई भी बात है तो अपने जीवन साथी को बताएं, इससे परिवार का माहौल सही रहता है। अब वह परिवार ही आपका परिवार है, उसकी समस्या ही आपकी समस्या है। एक बहू को इन सब बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। जब एक बहू इन सब बातों को ध्यान में रखती है तो उसके संबंध ससुराल वालों के साथ स्वयं ही मधुर हो जाते हैं। जो भी बहुएं अपने कर्तव्यों को निभाती हैं वह अपने ससुराल वालों की नज़र में सम्मान व इज्जत पाती हैं, तो उनके दिलों में अपना एक अलग स्थान पाती हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता में बहुओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है और घर की लक्ष्मी को अपने पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलना चाहिए। घर के छोटे या बड़े तक सबका ख्याल रखना चाहिए। ससुराल के हर रीति रिवाज को अपनाना चाहिए। ससुराल में यदि कोई अपने मन की बात आपसे करता है तो कोई नई चीज़ आपको सिखाता है, घर के रीति रिवाजों को आपको बताता है, तो उन्हें बहुत ध्यान से सुने और समझें। क्योंकि अब एक बहू को अपने ससुराल के रीति रिवाजों के हिसाब से चलना होगा। जब एक बहू इन सब बातों को समझ लेती है तो उसके लिए उतना ही जीवन आसान हो जाता है। घर में बच्चों की बातों को भी सुने। ऐसा करने से धीरे धीरे आप सभी के दोस्त बनने लगेंगे। जब कोई हमारे बिना बताए हमारे लिए हमारी पसंद के अनुसार कुछ कर देता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह आप भी सभी की पसंद नापसंद का ध्यान रखें। विशेषकर आपके घर के सदस्यों के पसंद का खाना बनाकर उनका दिल जीत सकती हैं। साथ ही जब खरीदारी करने जाएं, तब भी उनकी पसंद की चीज़ें उनके लिए ले आएं। फिर देखिए वे आपको कितना प्यार करने लगेंगे। एक बहू को अपने ससुराल की तुलना मायके से कभी नहीं करनी चाहिए। अब ससुराल ही आपका घर है। जब एक बहू इन सब बातों को ध्यान में रखकर चलती है तो उसके संबंध ससुराल वालों के साथ ही मधुर हो जाते हैं। आपको अपने खास लोगों के साथ बातचीत हालचाल लेते रहना चाहिए। ज़्यादातर लोग आपसे अपने स्नेहपूर्ण और ख्याल रखने को हमेशा के लिए याद करते हैं। इसलिए छोटे छोटे तरीके से भी जाहिर करते रहें कि आप आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। अक्सर लोग समय के साथ बदल जाने का आरोप लगाया करते हैं, इसलिए अपनापन महसूस करना चाहिए। छोटी मोटी खींचतान करते रहना चाहिए, इससे माहौल खुशनुमा और जीवंत बना रहता है। ऐसे में थोड़ा मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ें। कभी कभी किसी सफर में जाएं तो घर के बाहर के माहौल में लोग खुलापन और आज़ादी महसूस करते हैं। पारिवारिक रिश्ते हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पारिवारिक संबंध न केवल हमें मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते

0: करते हैं, बल्कि हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी देते हैं। लेकिन आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार और व्यवस्था के कारण परिवार के सदस्यों के बीच की नज़दीकियां कम हो रही हैं। पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है कि हम जानबूझकर प्रयास करें और रिश्तों को सहेजने के लिए समय निकालें। यह कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जिनसे आप अपने पारिवारिक रिश्तों को गहरा और मजबूत बना सकते हैं।
1: सखियों, अभी आप सभी ने सुनी हमारी मेहमान भावना आर्य की वार्ता। वार्ता का विषय था ससुराल में रिश्ते कैसे मधुर हैं। सखियों, सफर शब्द सुनते ही हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। ना किसी नए शहर की गलियां, पहाड़ों की वो ठंडी हवा या समंदर की वो लहरें, हर सफ़र हमें एक नई याद दे जाता है। लेकिन कई बार एक छोटी सी लापरवाही पूरे ट्रिप का मज़ा किरकिरा कर देती है। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ कुछ ऐसे स्मार्ट ट्रैवलिंग टिप्स जो आपके अगले सफ़र को बेहद आसान और यादगार बना देंगे। आप हमेशा याद रखिए कि जितना कम सामान उतना ज़्यादा आराम। कपड़े को हमेशा रोल करके पैक करें, इससे सूटकेस में जगह बचती है और कपड़ों पर सिलवटें भी नहीं पड़ती। और अपने साथ एक छोटा सा इमरजेंसी मेडिकल किट और पावर बैंक रखना कभी नहीं भूलें। और हाँ, सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की एक सॉफ्ट कॉपी अपने फ़ोन और ईमेल पर ज़रूर सेव रखें। सखियो, अगर आप किसी भी जगह को सच में महसूस करना चाहते हैं तो वहाँ टूरिस्ट नहीं, लोकल बनिए। वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ऑटो या मेट्रो का इस्तेमाल करें। महंगे होटल के बजाय वहाँ का स्ट्रीट फूड और ट्रेडिशनल खाना ट्राई करें। यकीन मानिए, असली संस्कृति का स्वाद गलियों में ही मिलता है, बड़े रेस्टोरेंट में नहीं। सफ़र में पूरा कैश कभी भी एक जगह ना रखें, उसे अलग-अलग बैग या जेबों में बांट कर रखें। आज का दौर डिजिटल है, लेकिन कई बार अंदरूनी इलाकों में नेटवर्क नहीं होता, इसलिए थोड़ा कैश हमेशा अपने पास रखें। एक जिम्मेदार मुसाफिर बने, जहाँ भी जाएं प्लास्टिक कचरा ना फैलाएं। अपने साथ एक रिज्यूबल पानी की बोतल जरूर रखें। प्राकृतिक खूबसूरत है, उसे खूबसूरत ही रहने दें। सखियो, अगली बार जब आप अपना बैग पैक करें तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें। आज से बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं और बच्चे भी पहले से कहने लगते हैं कि हम यहाँ जाएंगे या वहाँ। फिर आप भी अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताने के लिए दादा दादी या फिर नाना नानी या ये कह लीजिए घर के हर हर घर में कोना बुआ चाचा, ये कैसे। अब जल्दी से तैयार होकर निकलिए उनके घर जाने को, और रास्ते में ये गाना गुनगुनाते हुए जाइए।

0: has envisioned that the quality of Indian products must meet the global standards and be environmentally sustainable. This is Akashwari giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The India Meteorological Department or IMD has forecast heat wave to severe heat wave conditions over northwest and central India during the week. According to IMD, heat wave conditions are likely to prevail over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Odisha, Chhattisgarh, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand for the next 4 days. Meanwhile, Assam, Meghalaya, Keralam, Mahe, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands are expected to receive heavy rainfall until tomorrow. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Bihar, Himachal Pradesh, interior Karnataka, Jharkhand, Lakshadweep and coastal Karnataka for the next 2 days. Most districts of Rajasthan are currently in the grip of intense heat and heat wave conditions. The Meteorological Centre has issued an orange alert for heat wave conditions in 2 districts of the state today, while a yellow alert has been issued for 14 districts. Our correspondent reports that the scorching sun has affected normal life.
1: Severe heat and hot winds are troubling people across the state. Along with the days, the nights are also extremely warm. In most districts, day temperatures are being recorded between 42 and 46 degrees Celsius, while night temperatures are running from 26 to 31 degrees Celsius. The Met Center has predicted that the heat wave conditions are likely to continue for next 3 days. Meanwhile, Health Minister Gajendra Singh Khimsar has directed to ensure all necessary arrangements in hospitals for heat wave management. Instructions have been issued to reserve separate beds for heat stroke patients, ensure the availability of essential medicines and arrange shared and drinking water facilities in hospitals. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jaipur.
0: Punjab and Haryana are reeling under severe heat wave conditions with maximum temperatures ranging between 40 and 47 degrees Celsius across both states. The Meteorological Department has already issued an orange alert for the region. A report.
2: Director of the Chandigarh-based Met Department Surinder Pal told Akashwani that the weather will remain dry and temperatures would increase in the coming 3-4 days. Western districts in both the states would experience more heatwave conditions. In Punjab, these districts will be Amritsar, Firozpur, Tarantaran, Mansa, Sangrur, Bhatinda and Muktsar. And in Haryana, Hisar, Rohtak, Jhajjar, Bhiwani, Gurugram and Faridabad would feel the maximum heat. In the last 24 hours, Faridkot in Punjab sizzled at 47.3 degrees Celsius. And Rohtak felt the heat at 46.9 degrees Celsius in Haryana. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
0: In Bangladesh, an assistant security protocol officer at the Assistant High Commission of India in Chattogram has been found dead at the mission premises in the Kulshi area. Police said the incident occurred yesterday morning. The deceased has been identified as a 35-year-old Narinder, a resident of Haryana in India, who was serving at the mission. The Assistant High Commission of India is in touch with the family to arrange the repatriation of the mortal remains. Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin held talks in Beijing today, focusing on bilateral relations and key global issues, including Iran, the Ukraine conflict and the international trade. China's foreign ministry said the talks would deepen the strategic partnership between Beijing and Moscow and enhance coordination through forums such as the United Nations, SCO and BRICS. Both nations also highlighted the growing cooperation in trade, energy and security, with bilateral trade surpassing $200 billion. The meeting came shortly after US President Donald Trump visited China for discussions with Xi on regional and global developments. US President Donald Trump will attend the G7 summit in France next month amid growing tensions between Washington and several European allies over the Iran conflict. According to a White House official, the summit to be held from June 15 to 17 in Avion-les-Bains in southeastern France will focus on issues including artificial intelligence, trade, critical minerals, immigration and global security. In Congo, the death toll due to Ebola outbreak has risen to 136. Health Minister Roger Kamba informed this amid the spread of deadly virus that has gripped the eastern part of the country. According to Congolese health authorities, the country has recorded 543 suspected cases and 32 confirmed infections, while neighboring Uganda has reported 2 confirmed cases. On to sports. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Mumbai Indians at the iconic Eden Gardens in Kolkata. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping their playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare. Benchmark domestic equity indices were trading marginally lower in the afternoon session. The Sensex dropped 101 points to 75,100, while the Nifty dipped 24 points to 23,594 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outlined roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging Centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44 degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
5: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
6: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
7: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
3: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। DRDO ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुनहरा दौर में। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो साथी नेहा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज सुनहरा दौर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं 80 के दशक के कुछ यादगार फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म खुदगर्ज से, जिसे गाया है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। संगीत से इसे सजाया है राजेश रोशन ने और बोल लिखे हैं इस गीत के इंदिवीर ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म भीगी पलकें। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने, शब्दों से पिरोया है एमजी हशमत ने और संगीत दिया है इस गीत को जुगल किशोर तिलक राज ने।

श्रोताओं, आज सुनहरा दौर में हम आपको सुनवा रहे हैं 80 के दशक के कुछ यादगार फिल्मी गीत। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं 1981 में आई फिल्म लावारिस का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, संगीत दिया है आनंद जी कल्याण जी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत 1982 में आई फिल्म सत्ते पे सत्ता से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और गीत को लिखा है गुलशन बाबरा ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली जो कि 1985 में आई थी, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत से सजाया है रविंद्र जैन ने और बोल लिखे हैं इस गीत के हसरत जयपुरी ने।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में आपने आनंद लिया 80 के दशक के फिल्मी गीतों का। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, अपराह्न के 3 बज रहे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रम। अब हमारी आज की प्रथम सभा मीडियम वेव पर संपन्न हो रही है, एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब से लेकर शाम 5 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम विधिवत उपलब्ध रहेंगे। संध्या 5 बजे हमारी द्वितीय सभा मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर एक साथ आरंभ होगी। अब मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

0: की सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: आरती श्रीवास्तव।
1: आप सभी को हमारा
2: और मेरा यानी कि आरती श्रीवास्तव का
1: नमस्कार। कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत बढ़िया हूँ।
1: हाँ, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त लग रही है और काफी खुश भी नजर आ रही हूँ। क्या बात है।
2: बस थोड़ा सा जब ब्रेक मिल जाता है ना, इतनी ऐसी जो रोज की हमारी दिनचर्या होती है ना, तो फिर अपना एकदम पूरे चार्ज हो जाते हैं हम लोग।
1: क्या बात है, ऐसा कौन सा ब्रेक तुमने ले लिया? हालांकि बहुत दिनों बाद मिली हो और मुझे एक बार तो घबराहट भी हो गई थी कि आरती मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आज जैसे ही मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई।
2: बिल्कुल, ये आपका प्यार है जो आपने मुझे इतना नोटिस किया। और मैं गई थी मतलब बहुत ज्यादा यात्राओं पे।
1: अच्छा,
2: यात्रा की बात तो हम लोग करते रहते हैं, मैंने सोचा जाना भी चाहिए। बात करने से कुछ नहीं होता। तो मैं गई थी इस बार, मैं गई मथुरा, वृंदावन और अयोध्या।
1: अरे वाह।
2: और साथ में बरसाने और आगरा, मतलब जो भी चीजें रास्ते में पड़ती गई हम लोग जाते रहे।
1: क्या बात है, क्या बात है। जब भी चेहरे की चमक बता रही है
2: बिल्कुल,
1: और आपकी मुस्कुराहट और हंसी बता रही है कि आप बहुत सुंदर यात्रा करके लौटी है।
2: बिल्कुल।
1: कैसी रही यात्रा और क्या रहा?
2: बहुत अच्छी रही और बहुत चीजें बदल भी गई मंदाकिनी जी।
1: अच्छा।
2: वहां जब हम लोग गए थे तो पहले जैसे बहुत परेशानियां होती थी बरसाना साइड जाने में कि गाड़ी करो, ये करो, उस तब जाओ वहां तक पहुंचो आप। एक मंदिर है जो वहां का प्रसिद्ध, तो लेकिन इस बार था रोपवे शुरू हो गया वहां पे।
1: अच्छा।
2: तो बस आप रोपवे तक पहुंची अपनी गाड़ी से या किसी भी ऑटो से किसी भी चीज से, और उसके बाद बहुत ज्यादा रास्ता भी नहीं है बरसाने का। अगर मथुरा से जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम में भी कभी कभी पहुंच सकते हैं 20-25 मिनट में अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो। और रोप वे पकड़िए, सीधे आपको जहां मंदिर है वहीं पे ही उतारता है वो।
1: अरे वाह।
2: और बस आप मुश्किल से 10 कदम चलेंगे मंदिर आ गया।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या भी गए तो वहां पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ है।
1: आपके कहने का मतलब यह है कि अब यात्रा उतनी तकलीफ देह नहीं है। कई बार हम क्या होता है, निकलते तो हैं यात्रा पर रास्ते हैं या वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है जिससे यात्रीगण परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि यात्रा करने का मजा बहुत ही आता है।
2: बिल्कुल। और लेकिन आप ये भी सोच के जाइए कि जैसे अगर आप मथुरा जा रहे हैं तो अगर आपको वहां मथुरा या वृंदावन में घूमना है तो आपको थोड़ा सा पैदल चलने की आपको आदत होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को जो पहले ही रोक लेते हैं और आपको पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ऑटो रिक्शा और जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो जाता है। इस वजह से जो पैदल चलते हैं यात्री, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं लेट के बैठ के, तो उनको परेशानी ना हो इस वजह से वो रोका जाता है। तो इसलिए आप पैदल चलेंगे तो अच्छी बात है ना, जितना आप पैदल चलेंगे उतना अच्छा है।
1: वो अच्छी बात है, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जितने भी ये मठ हैं, तीर्थ जगह हैं, स्थान हैं, वहां पर हमें बहुत पहले रोक दिया जाता है ताकि जो हम लोग जा रहे हैं, दर्शक जा रहे हैं या जो भक्त जा रहे हैं, कहने का मतलब वो परेशान नहीं हो और यात्रा जो है सुचारू और शांतिपूर्वक हो जाए। और इस घूमने के जो है ना आरती, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखो तुम्हें देखकर लग रहा कितनी फ्रेश नजर आ रही हो, तुमने खुद ही कहा, तो तुम्हारा मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो गया होगा और एक फिजिकल फिटनेस महसूस कर रही होंगी।
2: बिल्कुल,
1: तो
2: बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है
1: और आत्मविश्वास बढ़ा होगा, एक नया दृष्टिकोण आया होगा यात्रा को करने के बाद। इतनी जगह घूम के आई हो,
2: इतने लोगों को देखा, सब कुछ किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब चीजें देखिए, बहुत
1: नई संस्कृतियों का अनुभव होता है हमें, नए अनुभव हमारे जीवन से जुड़ते
2: हैं, तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं। जो मेरा बहुत फेवरेट चीज है, मैं मुझे जगह जगह की जो क्यूजीन होते, जो व्यंजन होते हैं ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीजें हैं, एक ही चीज है जो यहाँ बनेगी और वो जो वहाँ बनेगी,
1: लेकिन फर्क होता है,
2: बिल्कुल फर्क होता है,
1: क्योंकि पानी का, बनाने वाले का तरीके, तौर तरीके बदल जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्वाद लेने का तरीका है वो नहीं बदलता है ना। तो यात्रा करके आपके दिमाग को सुकून मिला है, मैं ऐसा मानती हूँ। और अब जो आपने प्राकृतिक सुंदरता देख ली है, फील गुड महसूस कर रही हैं।
2: बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं अपने अंदर।
1: तो चलिए सखी सहेली में आज हमारे सखी और सखा आपको सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब आपकी यात्रा वृतांत सुनकर हमने मन से इस यात्रा को कर लिया है
2: जी।
1: तो अब एक गीत सुन ले।
2: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती, आपके आने से भी देखो चार चांद लग गए हैं, है ना?
1: बहुत प्यारा गीत लगता है
0: जी, बताइए। तो देखिए, आप यात्रा में इतनी खो गई कि आप ये बताना भूल गई हैं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आज के हमारे विषय क्या क्या हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे एकदम ही इतना ज्यादा उत्साह लग रहा था कि मैं बताने ही भूल गई। तो हम बता देते हैं, अभी आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर।
0: अच्छा,
1: तो जो जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियां।
0: बिल्कुल।
1: और हम बात करेंगे,
0: काटती बहुत बुरा है,
1: और काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है उसका। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संस्कार।
0: अच्छा,
1: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता हैं वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजा, ये बताएं कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलनी।
0: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा, विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
1: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
0: सद्भावना, अच्छा, भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि जी अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं की ज्ञाता है। तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, जो साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तंचोई साड़ी।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तंचोई साड़ी लेकर आई हैं।
1: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयां मैं लेकर आई हूँ।
0: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गए हैं, है ना
1: जी।
0: और शब्द हमारा, विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सद्भावना कहने को एक बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है। बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना। हम लिख तो देते हैं आरती बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, वो भावना ही नहीं।
1: अपने विचार लिखें, जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें,
0: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया, ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं। आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिलते हैं।
1: बिल्कुल। तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
0: व्यंजन, आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट
1: जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की। दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ बहुत।
0: चलिए, तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगे दाल पीठा और हमें खिलाएंगी भी।
1: हाँ जी,
0: ठीक है। तो भाई, हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं। एक आध मधुमक्खी उड़ती भी नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि कब काट खाएगी।
1: भगाओ भगाओ जल्दी।
0: लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, और अनाज होगा कि नहीं इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, इस जो हमारे सिस्टम है पूरा पृथ्वी का, उसको चलाने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस और मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बता रहे हैं वो, कि दुनिया की एक तिहाई खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे पराग जो परागणकों पर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उस पर ही निर्भर करता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि ये ना हो तो हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल, सब्जियां और मेवे गायब हो जाएंगे। मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं। एक पाउंड लगभग आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है, और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख,
0: बताइए तब जाके हमें, हाँ, शुद्ध जो शहद है वो मिलता है।
1: एक बूंद भी नहीं गिराना चाहिए।
0: हाँ, बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियाँ उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियाँ जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है, और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता ने, पर्यावरण को लाभ भी पहुंचाती रही है, और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती हैं, और प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज भी वो पैदा करती हैं।
1: जी, हमारी ये श्रोता जो है कितने जानकार हैं, मतलब कितने अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है। और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती हैं और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं, जैसा अभी तुमने शुरू में बताया भी था
1: जी। और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, जिससे जैव विविधता में कमी आएगी और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
0: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है और इस दिन मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा को 1734 में 32वां दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणों की भूमिका को स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया और ये पहल मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था और उनके संरक्षण को उनके महत्व पर जोर देना भी था।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं, काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती, ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सकें। अपने बगीचों की अगर हम बात करें उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीदकर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं।
1: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं तो इस बार का विषय ये है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छाता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक वो काटी
0: करेगी। बिल्कुल,
1: और कि वो आपको डस ना ले, हम मतलब उसको डंक ना लगा दें आपको, हम भी यही कह रहे हैं अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो वो अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं। इसलिए जिस पेड़ की डाली पर तेरा छता हो उस डाली के पास से गुजरना नहीं। उन्होंने बड़े मजाकिये तरीके से इस चीज को लिखा है।
0: बिल्कुल सही कहा है।
1: और कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के ओटीएस के सालियों पर छाता बनाया था, अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छत्ता बनाना शुरू किया जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु में अपने आप उड़ जाएंगी, ना हम उसे छेड़ते ना वो हमें छेड़ती।
0: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी स्कूल बिल्डिंग में अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है जिसे बुलवाकर हटवाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थानों पर दिखाई देती थी मधुमक्खी, आप कम दिखती हैं। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार देती है। वो हमेशा बात हमें याद रहती है और मधुमक्खी शहद सी मिठास देती है, ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती
1: नाम नहीं बताने वाली हूँ चित्तौड़ का।
0: भाई नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल।
0: तो हम बात कर रहे थे आज की, भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में,
1: जी
0: हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीजें हैं जहां पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीजों से, गुणों से जुड़ पाते हैं और
1: जी
0: उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार,
1: अरे बहुत
0: है ना। और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं ये साड़ियां, और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे
1: जी।
0: में।
1: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं। तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सकें।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छोई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ तीन होता है, और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना जाने लगा
1: अच्छा
0: है।
1: जी, तो उनके
0: नाम
1: शिक्षक का नाम और उनका जो तीन
0: जुड़
1: भाई
0: गए।
1: थे
0: हाँ
1: मिलके। हाँ,
0: देखिए
1: और बंबई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा, और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया, और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
0: बिल्कुल सही कहा। और तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो ताने और बाने में 2 से 5 रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है, और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है। बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये
1: जी,
0: तकनीक,
1: इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में
0: बहुत
1: भी।
0: मुश्किल है।
1: तो इसमें एक या दो ताने और 2 से 5 बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियां बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं, जैसे कि सैटन तंचोई, जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती है, और इसमें एक या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
0: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके
1: जी
0: अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का ही एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का, या 2 रेशम के धागे और एक सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है।
1: जी और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है, और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण, ये डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
0: हाँ बिल्कुल अलग लगती है तंचोई साड़ी, और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिजाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है। तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं, और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तंचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है, जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
1: बिल्कुल। और तंचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं, जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मोहक मनमोहक पुष्प, ज्यामितीय और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
0: हाँ बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई साड़ियों में, और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो हैं, या विवाह समारोह के अवसर हैं, या त्योहार है हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी, अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है और उन्होंने इसे कब और कहाँ पहना, और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का।
1: हाँ,
0: तो हमसे
1: तब तक
0: शुरू करें,
1: बिल्कुल बिल्कुल, तब तक
0: हम
1: गीत सुनते हैं।
0: गीत सुनते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दी
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं,
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं। इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं। मुझे 25 भाषा आती है, लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको, मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है हिंदी बोलना। वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
0: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे। आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं, और उसके थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई,
1: और कोई आसान तरीका भी हो
0: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं, और उनका आपके जीवन में कहां कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात थी आज हम बात करने वाले हैं कि भाई भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं। तो आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों हैं, है ना। देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम है वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान है।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्यप्रणाली से हुई है। और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमरीका में रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हो, लेकिन हम सभी भीतर से एक

0: मानवीय सूत्र से जुड़े
1: हैं। बहुत गहरी बातें आरती है, अगर हम इसे समझ पाएं तो कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है ना।
0: बिल्कुल।
1: और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
0: बिल्कुल, जो वो भाषा जानते थे उसमें समझते समझ में आता है ना जिस तरीके से जिस भाषा को जानते हैं,
1: कितनी बड़ी बात है। और हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, है ना। हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की शिक्षा ली।
0: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना एकदम से वो एक्टिव हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीजों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने देखा होगा कई लोग शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं, उनका जीवन में उपयोग नहीं होता है लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हूँ, किसी भी भाषा को सीखते हूँ, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
0: जी बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक हैं। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
1: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में होने लगा है, जो कि गलत भी है ना, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है। और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट भाषा की आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
0: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे, ये कभी मत मन में लेकर आइए।
1: आप जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए।
0: जी। और साथ ही जो व्यस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है, मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है, यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए जरूरी है।
1: क्या बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं पीएचडी हूँ, है ना, मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है। डिग्रियां लेते हैं आप, पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना वो लिखते रहते हैं अंत तक, उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
0: बिल्कुल। आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, आप खुद ही अपने आप को आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं।
1: जो भीतर बदलाव आता है वो कितना सुंदर होता है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती, प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या लिखती है,
0: सबका नजरिया
1: मायना रखता है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है। और एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
0: बिल्कुल, वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं आराम से, जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां ब्रिज भाषा
1: अच्छा लगा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं ना तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं,
1: तो अपने करीब पाते हैं ना आपको।
0: बिल्कुल,
1: ये हमारे ही लोग हैं और भाषा एक दूसरे को जोड़ती है।
0: बिल्कुल जोड़ती है। और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास, उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
1: क्या बात है। तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए, अपनी मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
0: बिल्कुल
1: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं पालना, लेकिन शौक रखना चाहिए,
0: अपने मन से सीखिए। आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितने अच्छी तरह से नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं, नई नई चीजें,
1: आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधरता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम रखते हैं। किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं।
0: जी, जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती, तो हम सच में एकदम से कहने से कैसे इतनी भाषा,
1: हम चौंक जाते हैं और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है, देखने का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में, और इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ, कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती।
0: बिल्कुल।
1: तो एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, सुनते हैं।

घट की घटा लाई क्या छुपा के, घटा लाई क्या छुपा के, बिन पारे बदरा के कैसी बरस गई बरसात, ये तो बतला।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो उस पे एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख के भेजा है, अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखती हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, तब मेरा छोटा भाई, जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है, मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया। इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया, और उसके बाद उसके पूरे चेहरे, हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया है ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो
0: बिल्कुल,
1: अपना कुछ ना
0: वो तो
1: कुछ,
0: उनको तो लगेगा ना कि हम
1: हाँ,
0: पे हमला हो रहा है, तो
1: वो
0: फिर
1: भी
0: उन्होंने
1: तो
0: बचाव।
1: असुरक्षा महसूस करती
0: जी
1: है ना, इस बात को हम नहीं समझ पाते। हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है, लेकिन वो क्यों काट रही है,
0: जी
1: उसके पीछे का लॉजिक समझ आया ना। आपने पत्थर मारा और
0: बिल्कुल,
1: उसने पलट कर बदला ले लिया, तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं
0: पानी पे
1: मारना
0: भी
1: है,
0: अगर आप पत्थर मारेंगे तो उछल के
1: उसका
0: आप पर
1: उछल कर
0: आएगा।
1: आप पर आएगा। आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे
0: बिल्कुल
1: तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी
0: जी।
1: शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम
0: और ये
1: सामने
0: बहुत
1: आते हैं।
0: खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो
1: हाँ
0: बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना, तो जान भी बनाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं।
0: हाँ
1: अगर आपने इनको छेड़
0: बिल्कुल
1: दिया
0: बिल्कुल बच्चे
1: ऐसे ही ततैया भी बहुत बुरा काटता है, जो
0: बहुत
1: पीले रंग का होता है ना,
0: हाँ हाँ
1: वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता
0: बिल्कुल
1: है ना। तो चलिए, भाषा पर हम
0: भाषाओं पे।
1: बात कर रहे थे, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं, उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
0: जी, और एक श्रोता, जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारी श्रोता जो लिखती हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है,
1: हाँ
0: और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भाई ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो
1: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो
0: जी
1: मोहब्बत है ना
0: बहुत बड़ी भाषा
1: वो
0: है ये।
1: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती
0: बिल्कुल
1: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। ये हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ये वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
0: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है, और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे दो तीन और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए तभी हम कहे ना श्रोताओं के जो विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है, तो
1: बिल्कुल
0: वो जो उनके अंदर चीजें है ना, वो विचार सामने आते हैं, लिखती
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: देखिए, यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी
0: जी
1: भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार हैं जिंदगी में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं, और ये न केवल संवाद का साधन है, बल्कि संस्कृति, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, दो तीन भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
0: जी,
1: बिल्कुल। और
0: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है, हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है, और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है, वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है, और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत सिद्धांत भी सिखाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी।
0: भाषा भाषा है,
1: विदेशी भाषा ऐसी है या देशी भाषा,
0: अगर आपको वो भाषा नहीं आएंगी तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे।
1: चलिए जरूरी है, भाषा नहीं भी आती आप नहीं भी सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है, हमें हर भाषा का,
0: भाषा कभी बुरी नहीं,
1: हमें वैश्विक भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए।
0: जी
1: एक गाना सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह
1: जी
0: से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं,
1: जी
0: और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था
1: सद्भावना,
0: सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है, जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो। जी
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है, तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है, तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना, जिसमें कोई छल कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना, इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार, मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहाँ सद्भावना होती है वहाँ रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहां समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है, वहां सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है, बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ, आरती ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
1: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो
0: क्या
1: अर्थ
0: है,
1: है।
0: हाँ, वो क्या है। हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेमपूर्ण व्यवहार। और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसे कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका।
1: बिल्कुल,
0: ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है, और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
1: जी बिल्कुल। और

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता या क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल,
0: प्रतीक्षा।
1: और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो वो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना, मूंग और उड़द से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है, उन्होंने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है, जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में, विशेषकर पौष के महीने में, बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भूनी मूंगफली, तिल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीजों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी। तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़। घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़, पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें। एक बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको, गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ गुड़ को पानी में घुलने देना है और इसे ठंडा होने दीजिए, और फिर छलनी में इसे छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं, एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें। जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंद लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है, इसका मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं, और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, फिर आराम से निकाल के खाइए।
0: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है मुझे, तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकू और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे।
1: बिल्कुल, और रेसिपी आपको वहाँ फेसबुक पेज पर मिली जाएगी,
0: मिल जाएगी, तो बनाने की मैं भी
1: समय की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी है
0: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू ले के दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
3: क्या बात है सर। बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहां एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहां ले गई?
2: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
3: जी
2: अल्मोड़ा हुआ।
3: अरे गजब, पहाड़ों पर।
2: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं
3: जी,
2: मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
3: अच्छा।
2: तब तक शुरू नहीं हुआ था
3: जी।
2: जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह इतना आदि था और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से था
3: जी, जी।
2: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब, तो अब लगता है कि यार मूर्खता की, तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था वो
3: जी,
2: वो एक अलग अनुभव था
3: जी।
2: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है और तो कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहां चलते चले जाओ, चलते चले जाओ,
3: हाँ।
2: उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। जब घूमने जाओ तो अलग बात है
3: जी,
2: लेकिन आपको रहना हो और जो कभी रहा ना हो,
3: हाँ,
2: कभी रहा ना हो,
3: हाँ, हाँ,
2: तो वो उसके लिए तो वो कठिन दौर था। लेकिन गुजरा और मैं एक साल के बाद ही वापस आ गया वहां से और उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
3: अच्छा,
2: 86 में।
3: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था,
2: हाँ,
3: पंत जी का इलाका था, तो वो तमाम चीजें
2: और वो भी सब भी देखा मैंने। वो पंत जी, अज्ञे जी वहां पे रहे और रविशंकर जी का वहां पे वो था,
3: बिल्कुल
2: यस। तो ये सब भी
3: उदय शंकर जी का
2: तो वो सब भी देखा, घुमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब
3: जी।
2: कि ये सब कुछ, लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
3: रहते कैसे।
2: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं, जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है,
3: पहाड़ों में
2: पहाड़ों में कैसे।
3: हाँ, बिल्कुल।
2: तो ये था
3: मुंबई, 80 के दशक की मुंबई, बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
2: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये तो सपनों की नगरी थी
3: जी,
2: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त ये 86 में जब हम आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: ये भीड़ भाड़ वाला शहर है तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में टॉपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहाँ पे था, तो 11-11 महीने का जो किराया होता है उस पर वो उस पैटर्न पे रहे और अलॉट होने का साल उठता, हम तो फ्रेश थे एकदम।
3: बिल्कुल, और तब तो लंबी लाइनें हुआ करती,
2: लंबी लाइनें हुआ करती थी। तो जीजस कॉलोनी जो टॉपिल की थी वहाँ रहे और फिर वहाँ से बस पकड़ना, फिर इधर आना एंटोपिल से किंग सर्कल आना, वहां तो पैदल
3: जी,
2: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई।
3: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से ढाल लेता
2: तो
3: है,
2: फिर वो लोग अपने आप आपको उतार देते हैं
3: जी, जी।
2: तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ
3: जी,
2: उतार देंगे लोग,
3: लोग उतार देंगे,
2: उतार
3: जी। तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहाँ लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
2: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी
3: चरम पर थी,
2: चरम पर थी। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी
3: जी,
2: मतलब जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे। मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त
3: बजाया
2: करते थे लोग, तो इतनी पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो,
3: बिल्कुल,
2: और वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
3: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूं।

0: कि भूपिंदर सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
1: बहुत प्यार है,
0: बल्कि
1: बहुत
0: हमने
1: प्यार।
0: उनको बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी, आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं, तब मैं था नहीं शहर में।
1: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कोई चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में युवाणी में जो अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की
0: जी,
1: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर
0: जी
1: जो खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
0: क्या बात है,
1: तो
0: क्या
1: वो किसी गजल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर, तो ये हुआ। नहीं, उसके बाद फिर जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ वो
0: पेडर रोड,
1: हाँ पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था,
0: जी
1: तो मैं गया। और उस समय का वक्त था, तो मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को अपने सुनने वालों को कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है।
0: जी
1: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे,
0: जी
1: रोज रियाज करना उनका काम था। जब मुंबई में होते थे
0: जी
1: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे। तो ये
0: जी
1: तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि बड़ा अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे,
0: जी
1: हाँ वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूं।
0: वाह वाह
1: बड़ा अक्सर
0: वाह
1: होता है कि रख के जाओ, देखता हूं, मैं करता हूं, सोचता हूं, बताता
0: जी
1: हूं,
0: जी
1: है ना।
0: जी जी
1: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूं।
0: वो कौन सी गजल थी, घर से निकले थे,
1: नहीं, ये जो जिंदगी की
0: ये
1: किताब
0: जो
1: है,
0: जिंदगी की किताब है, वाह वाह वाह
1: तो ये
0: वाह।
1: वो पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
0: और भूपी जी ने क्या गाया था,
1: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत है, मुझे एक हल्की फुल्की गजल चाहिए।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: हाँ
1: तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
0: हाँ हाँ
1: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ता हूँ न सुनाता हूँ,
0: जी
1: और वो गजल जो मैंने कभी आज तक छू ही नहीं,
0: अच्छा,
1: वो गजल शराब पड़ती। तो
0: गजब।
1: वो गजल लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चलिए।
0: जी, ये जो जिंदगी की किताब है ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
1: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई,
0: जी
1: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है, तो
0: वही
1: उसको
0: आप
1: हाँ वो पढ़ देता हूँ।
0: जरूर जरूर।

0: क्या बात है। और जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी
1: सही,
0: और
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी जी
1: और ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उसमें जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स हैं लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है। और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ से कमेंट्स हैं उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी
1: जी
0: रिंगटोन में भी ये गजल
1: जी जी
0: बजती
1: जी
0: है।
1: जी
0: जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था।
1: पंकज जी उसके बाद
0: जी
1: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले ये गजल थी, वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होना। तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की, सब
0: नबील
1: जगह।
0: था,
1: हाँ,
0: नबील था।
1: नबील, नबील।
0: जी जी
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो
0: जी
1: एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी, जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था, तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था दूरदर्शन पर, आता था गजल का, आरोही। हाँ,
0: आरोही
1: तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
0: जी
1: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
0: अरे
1: नीचे
0: बाप रे।
1: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
1: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
0: अच्छा है, ओके।
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
0: आरोही
1: दोनों
0: में
1: का ऐसा।
0: गाया।
1: हाँ, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ। तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी, और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त ने
1: हाँ,
0: ये बात
1: ये मेरे
0: कही।
1: उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में वो, लेकिन हम
0: जी
1: बहुत अरसे से नहीं मिले थे। तो
0: जी जी
1: ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं, है ना।
0: ओहो
1: तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
0: जी
1: ये यही की गजल है। तो ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था,
0: हाँ,
1: सीरियल है
0: बिल्कुल
1: ना,
0: बिल्कुल,
1: और
0: बड़ा नाम है अजय
1: हाँ।
0: कार्तिक जी।
1: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था।
0: जी
1: अच्छा, दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत, उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े
0: जी
1: शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहाँ पे, उन्होंने कंसर्ट किया वहाँ, गाने गए। मजरू सुल्तानपुरी वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई। तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना फिर सुनाओ फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो, तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया,
0: हाँ बिल्कुल
1: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया, या कुछ मिसरा गलत हो गया, या कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया है, सुना दिया। हाँ, ये सुर का इधर उधर नहीं, फिर सुनाओ, फिर एक बार फिर। उन्होंने 3 बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए मजरू साहब, उनसे मिले, तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये। तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था,
0: जी
1: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
0: वाह वाह वाह
1: तो ये
0: वाह,
1: मजरू
0: मजरू जैसे
1: सुल्तानपुरी साहब का
0: बड़े
1: आशीर्वाद था,
0: शायर की बात
1: है
0: है
1: ना।
0: ये।
1: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
0: क्या बात है, पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं हम।
1: जी।

0: और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है।
1: जी
0: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना,
1: बिल्कुल, बहुत ही मशहूर
0: मशहूर।
1: जी
0: आज तो वो दौर नहीं है,
1: जी
0: लेकिन एक जमाना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी,
1: जी
0: मजरू सुल्तानपुरी, कैफी
1: कैफी आजमी
0: आजमी, मुमताज राशिद, और ये सब बड़े बड़े नाम है ना,
1: जी
0: बशीर
1: जी
0: बद्र, निदा साहब, निदा साहब उसके संचालन कर
1: सदर
0: रहे थे,
1: जी
0: अली सरदार जाफरी उसके वो थे, सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
1: बाप रे
0: अजीत एक्टर,
1: जी
0: और भी कई थे फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू सेंटर
1: अलग ही
0: के
1: होता
0: अलग
1: था
0: ही हुआ करता था,
1: जी।
0: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
1: क्या बात है,
0: मेरा पहला मुशायरा, तो बड़ा मुशायरा। तो निरा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूँ कह लीजिए
1: अरे
0: तो
1: बाप रे।
0: शुरुआत के एक दो मुशायरों में।
1: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
0: तो उन्होंने मुझे माइक पे बुला कि मेरा पहला मुशायरा, और ये ऑडियंस, ये लोग है ना,
1: जी
0: भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूँ तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी,
1: हाँ
0: तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे, मैं होता। तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा, ये प्यार हुआ ना, तो मुशायरा तो हो गया,
1: अरे अब
0: मतलब
1: तो
0: ये
1: शुरुआत कर रहे थे जबकि
0: हाँ
1: जी।
0: मुशायरा तो हो गया,
1: अरे
0: मतलब
1: बाप रे, बहुत बड़ी बात
0: हाँ,
1: है
0: तो ये बड़ी बात थी। तो
1: जी
0: ये मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना,
1: जी
0: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे सुने, फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया अपने
1: गजब
0: घर पर, फिर
1: जी
0: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुनना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल मैं सुन रहा, जो बता रहा हूँ जिसके बारे में,
1: जी
0: ये गजल जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद थी,
1: हाँ
0: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका
1: हाँ
0: आखिरी एल्बम था ये।
1: ओहो
0: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे
1: चले गए
0: दुनिया में,
1: जी
0: वो
1: जी
0: चले गए।
1: जी
0: वो एल्बम रिलीज नहीं हुआ, चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे नहीं करेंगे।
1: जी
0: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा, मैं बता रहा हूँ कि मेरी दूसरी किताब, पहली उड़ान
1: जी
0: और दूसरी आसमान से आगे।
1: बिल्कुल
0: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई, और मैं चाह रहा था, तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका इसका वो करें। हाँ, तो मैं
1: बिल्कुल
0: उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा।
1: जी।
0: तो किताब लेके रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके भी चला गया। तो मैं मिला वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहाँ उसको कर देंगे उसमें सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गजल गाई, दूसरी गजल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गजल गाई, और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गजल जो मैंने अभी गाई, ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है, और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और तक क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ। फिर जगजीत जी ने वो उसका
1: रिबन
0: कर दिया,
1: खोला
0: रिबन खोला, ऑडियंस के सामने ये सब हो गया, और तालियां वालियाँ सब हो गई, और मैं स्टेज से उतरने लगा।
1: जी
0: तो बोले नहीं राजेश रुक गए, तो मैं आया, तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है
1: हाँ
0: पूरा,
1: बाकायदा, और पूरा
0: हाँ
1: हॉल
0: पूरा
1: भरा
0: हॉल
1: हुआ है
0: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, वो गा रहे हैं, वो बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए,
1: अरे
0: स्टैंडिंग
1: बाप रे।
0: माइक दीजिए। हाँ, तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि, तो अब वो गजल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: अरे बाप
0: वो
1: रे
0: उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब
1: जी
0: उनको
1: जी
0: पसंद थी गजल, तो सारे, तो वो गजल पढ़ी, जाने कितनी उड़ान बाकी। तो बात वहीं खत्म हुई, मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी। हो
1: जी
0: ये रहा है कि मैं, मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
1: जी जी
0: आज
1: जी
0: तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ
1: गजब गजब
0: ऐसा विमोचन, और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूं और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं वो उसे गा रहे हैं।
1: अद्भुत अद्भुत
0: ये अद्भुत अद्भुत। और जब घर पे मैंने

0: श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ, तो वो मुझे क्यों नहीं लगे आप, मुझे
1: अरे
0: क्यों नहीं
1: बाप
0: लगे,
1: रे यार, ये तो
0: और
1: बड़ा
0: आपको
1: मिस
0: मालूम
1: हुआ।
0: था कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो मुझे बता दी। तो ये था उनका प्यार,
1: वाह
0: ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया
1: क्या
0: था।
1: बात है, ये आपसे सुनेंगे।
0: हाँ जो

0: है जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: बाबा
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस
1: क्या बात है,
0: आसमान
1: बाकी है।
0: बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। रुज़ुल का एक और शेर खास मैं सुनाना चाह रहा हूं।
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके,
1: वाह,
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके जिनके

0: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में 2 बार गुजारा है। और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए, उसमें सरगम के सितारे, उजाले,
1: उनकी
0: उनकी
1: यादों पे।
0: यादों के मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है। सखी
1: सखी
0: सहेली आपके
1: सहेली।
0: दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
1: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से।
0: जी
1: मतलब ये नहीं कि मेरे मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए, या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं। मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था। और उस टीम का जवाब नहीं जिसने
0: बिल्कुल
1: मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा। तो सबसे पहले यूनुस,
0: अरे राकेश जोशी जी,
1: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे, लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी, जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे एक तरह
0: सब
1: से।
0: चीजों को
1: हाँ,
0: संभालते
1: सबको संभालते थे।
0: थे
1: तो एक अच्छी टीम थी
0: जी,
1: जो हर तरह से, जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और
0: बिल्कुल
1: वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ, मतलब
0: जी
1: हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया।
0: बिल्कुल। और हर
1: ऐसा कम
0: रोज आप
1: होता
0: एक
1: है,
0: नई चुनौती
1: ऐसा
0: सामने
1: कम
0: रखते
1: होता
0: थे
1: है।
0: जी।
1: तो मैं हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है उसके
0: नौशाद
1: साथ
0: साहब आ
1: कहीं।
0: रहे,
1: हाँ,
0: खयाम साहब आ रहे
1: खयाम साहब आ गए, लक्ष्मीकांत कहले, प्यारेलाल जी आए,
0: जी,
1: आनंद जी आए, है
0: बिल्कुल
1: ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आया यहाँ पे, तो
0: बिल्कुल,
1: सारे। और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग, है
0: रवि जी
1: ना।
0: आए,
1: हाँ,
0: बिल्कुल
1: खयाम साहब।
0: खयाम साहब आए, और
1: हाँ
0: बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो
1: हाँ हाँ तो
0: रहा
1: बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज,
0: है। मुझे याद है कि
1: हमारे
0: खयाम
1: मेहमान।
0: साहब, नौशाद साहब आए हैं,
1: हाँ
0: और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं,
1: हाँ
0: और वहीं 1 घंटे बात हो रही
1: हाँ हाँ हाँ उनको
0: है।
1: वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो, उनको बोलने का बहुत वो था, वो
0: जी
1: अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का,
0: बिल्कुल
1: और उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे और देर तक बातें करते थे। कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के भी हमने ये भी किया कि इनको हमको जाया नहीं करना है कि 1 घंटे में बांध लिया, 2 घंटे में बांध लिया उनको, कभी सरगम के सितारे, कभी हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम
0: ज्यादा
1: उनके
0: कर
1: ले
0: सकते
1: सकते हैं
0: थे
1: उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं। ये लोग
0: जी,
1: अब कहाँ आएंगे अब इस दुनिया
0: बिल्कुल
1: में। तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं
0: किसी
1: है,
0: के पास नहीं
1: किसी के पास नहीं है। वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशन पे है,
0: जी,
1: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी। या
0: बिल्कुल
1: गानों पे बातें हो रही हैं, या गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही है
0: जी,
1: ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा,
0: एक से बढ़ के एक
1: एक से
0: चीजें
1: बढ़कर
0: हैं,
1: एक
0: एक से
1: प्रोग्राम जो
0: बढ़ के
1: है
0: एक हैं
1: वो हुए। प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर
0: और
1: और
0: ट्रिब्यूट
1: पूरा
0: हो रहा है
1: प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये
0: जी
1: सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं
0: जी
1: हो सका।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हों, चाहे ट्रिब्यूट्स हों, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था, और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना
1: नहीं, क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा, और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है,
0: जी।
1: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए,
0: जी,
1: तो ये भी हुआ है। और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में, तो
0: बिल्कुल
1: उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया मतलब। और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था,
0: जी
1: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
0: बिल्कुल। विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था। दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूं।

0: एक जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी
1: एमए हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो उस तरह से परिवार में पला बढ़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं
0: जी
1: मतलब, तो वो बिजनेस में थे, जापान पे हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकॉन्ग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था,
0: जी
1: तो कोई संभावना नहीं थी उसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़ी पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था, और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था,
0: जी
1: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उनका ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है,
0: जी
1: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है
0: ओके
1: घर में, तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन लॉ, फादर इन लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहाँ मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हम आर्य समाज में शादी करते हैं।
0: अरे बाप रे।
1: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी, हम मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के ज़माने से अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था, तो
0: जी
1: वो सब
0: जी
1: आगे आगे करते थे, तो मेरे दो तीन जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए,
0: अरे वाह,
1: आर्य समाज की शादी में,
0: क्या बात है।
1: तो वो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई, मैं अपने
0: अरे
1: घर चला आया,
0: जी
1: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ
0: हाँ
1: कि हम मैंने शादी कर ली है,
0: हाँ
1: और तो अब तो
0: कुछ हो नहीं
1: वकील ही
0: सकता
1: होंगी
0: था।
1: नहीं कि सबकी, तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो
0: हाँ
1: नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं, तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए,
0: हाँ
1: फिर उन्होंने सब बता दिया सब।

0: तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे, तो
1: हाँ
0: मुझे यहां से ले जाओ,
1: अरे बाप रे,
0: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूं मैं अब,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: मुझे ले जाओ यहां से। तो मैं अपने दो लेक्चरर्स के साथ घर गया उनके, और
1: गजब।
0: हाँ, और हमारे इन फादर इन लॉ जो मौजूद थे, तो
1: हाँ
0: हाँ, ये बैठी चाय वाय पी सब कुछ हुआ। तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना,
1: हाँ
0: हम इसको ढंग से करते हैं, इसको करेंगे,
1: हाँ
0: उसको पूछे। लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं,
1: ये नहीं हो रहा
0: ये
1: है।
0: नहीं होने देंगे, मैं
1: हाँ
0: भी चलूंगी,
1: गजब,
0: मैं भी चलूंगी। तो
1: बाप रे।
0: फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए। और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया
1: जी जी
0: जब
1: जी
0: उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है,
1: और
0: पता नहीं
1: ये
0: क्या। तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई। और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है,
1: हाँ
0: सारा साहस इनका है,
1: क्या बात है
0: ये उस जमाने में।
1: जी, शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है, और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, दो एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी।
0: जरूर।
1: चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं दो तीन शेर सुनाता हूं,
1: जी जरूर इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ। किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा
1: जिंदगा,
0: क्यों नहीं होता,
1: वाह
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह वाह वाह
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन मेरी एक जिंदगी के कितने
1: कितने हिस्सेदार हैं।
0: हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह
0: मेरी एक
1: वाह
0: जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और दो छोटी छोटी बहर के शेर,
1: इरशाद।
0: एक तो ये शेर के, एक आंसू
1: एक आंसू
0: कोरे कागज पर गिरा,
1: वाह,
0: एक आंसू
1: कोरे कागज पर गिरा,
0: कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या
0: एक
1: बात है,
0: आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: क्या बात है।
0: और ये शेर आखिर में, गम छुपाना
1: गम छुपाना,
0: कोई मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या
0: गम
1: बात, क्या
0: छुपाना
1: बात है,
0: कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: क्या बात है, क्या बात
0: शुक्रिया।
1: है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाएं जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
0: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूं अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी,
1: जी जी बिल्कुल,
0: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी। तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी,
1: जी
0: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था,
1: जी जी
0: मतलब किसी
1: डिफिकल्ट
0: लाइन को।
1: होता है
0: हाँ,
1: ये,
0: लेकिन ये गजल मुझे वहां दो बार पढ़नी पड़ी,
1: क्या बात है,
0: इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई,
1: वाह
0: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही। तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूं।
1: इरशाद इरशाद।

0: से हम
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: थैंक यू
1: तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया।
2: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आज के मेहमान।

किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई की प्रसारण सेवा। 5 बजे हैं, हमारी द्वितीय सभा के कार्यक्रम मीडियम वेव और एफएम पर अब एक साथ आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम

आज शाम के सभी श्रोताओं को शाजिया परवीन का नमस्कार। उम्मीद करते हैं हमारे सभी श्रोता खैरियत से होंगे और इस खूबसूरत सी शाम को खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ।

जब तुमसे हम मिले तब बहारों का मौसम था। चले आओ कि फिर से बहार आने वाली है। ये आँखें और इनके सपने सब तेरे इंतज़ार में हैं। ये पेड़, ये पौधे, ये मौसम सब तेरे इंतज़ार में हैं। चले भी आओ कि फिर से बहार आने वाली है।

श्रोताओं, जिंदगी में दुख, सुख, गम या खुशी, ये सब ऊपर वाले की देन है। हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कितने गलत हैं या कितने सही हैं, ये फैसला करने का अधिकार किसी का नहीं है। इसलिए कभी भी अपना मुंह ना तो हमें छुपाकर जीना चाहिए, ना ही किसी से नज़र बचाना चाहिए। जब हम कुछ गलत करेंगे तब हमें खुद इस बात का पता होता है कि हमने क्या गलत किया है। इसलिए बिना वजह किसी से भी घबराने की ज़रूरत नहीं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो साथी शीरीन खान
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त खुशी। एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए जोश, नई उमंग और ढेर सारी बातों के साथ। तो कबूल कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशियों से भरे और मुस्कान के साथ हमें सुन रहे होंगे।
0: दोस्तों रोज़ की तरह आज भी आप सबका बेसब्री से इंतज़ार था, तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम आज के सवाल के साथ। हमारा सवाल है, हंटा वायरस शरीर के किन दो मुख्य अंगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है?
1: सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, हंटा वायरस शरीर के किन दो मुख्य अंगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी रामपुर पर और उसके अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने होंगे अपने अपने सही जवाब। सही जवाब देने वाले श्रोता साथी का नाम हम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के अंत में।
0: खुशी, इन दिनों धूप इतनी तेज हो गई है कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लगता है ये सामान्य गर्मी नहीं बल्कि हीट वेव है।
1: जी शिरीन, ये हीट वेव बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। वातावरण में संतुलन बिगड़ने से तापमान लगातार बढ़ रहा है।
0: सच में पेड़ों की कमी से गर्मी और बढ़ती जा रही है। मगर खुशी, क्या इसके और भी कारण हैं?
1: हाँ, कम वर्षा, शुष्क हवाएं और मौसम में असंतुलन भी इसे और गंभीर बनाते हैं।
0: तो इसका असर हमारे शरीर पर बहुत जल्दी दिखता है।
1: बिल्कुल, इससे डिहाइड्रेशन, सर दर्द, चक्कर आना, थकान और कभी कभी हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थिति भी हो सकती है।
0: ये तो वाकई ही चिंता की बात है। इसका असर हमारे रोज़मर्रा के जीवन पर भी पड़ता है।
1: हाँ, बाहर की गतिविधियाँ सीमित हो जाती हैं, पानी और बिजली की खपत बढ़ जाती है और लोगों की सेहत पर भी असर पड़ता है।
0: खुशी, तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: हमें अधिक पानी पीना चाहिए, हल्के कपड़े पहनने चाहिए, दोपहर की धूप से बचना चाहिए और ORS या नींबू पानी लेना चाहिए
0: और लंबे समय के समाधान के लिए पर्यावरण का ध्यान भी रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, पेड़ लगाना, प्रदूषण कम करना और प्रकृति की रक्षा करना ही इसका सबसे अच्छा समाधान है।
0: तो दोस्तों हमारी ये बातचीत तो यूं ही चलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ब्रेक के उस पार है बहुत कुछ खास।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप फिर से जुड़ गए हैं अपने फेवरेट शो युवाणी में। चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। हमारे पहले सेगमेंट कुछ खास है आज के साथ।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।

0: चलिए चलते हैं हमारे आज के सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर। आज की हमारी ये खास पेशकश समर्पित है उन नन्ही मेहनती जीवों को जिनके बिना फूलों की खुशबू, फलों की मिठास और हमारी धरती की हरियाली अधूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज है विश्व मधुमक्खी दिवस।
1: हर साल 20 मई को ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों को मधुमक्खियों के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। छोटी सी दिखने वाली ये मधुमक्खियाँ हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान देती हैं।
0: दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया की लगभग 75% फसलों का परागण यानी पॉलिनेशन मधुमक्खियों की मदद से होता है। अगर मधुमक्खियाँ ना हो तो फल, सब्जियाँ, फूल और कई तरह की फसलें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी।
1: यानी सीधे शब्दों में कहें तो मधुमक्खियाँ सिर्फ शहद ही नहीं देती बल्कि पूरी प्रकृति का संतुलन बनाए रखती है।
0: दोस्तों मधुमक्खियों की दुनिया भी बहुत अद्भुत होती है। एक छत्ते में हजारों मधुमक्खियाँ मिलजुल कर काम करती हैं। कोई फूलों से रस लाता है तो कोई छत्ते की रक्षा करता है और रानी मधुमक्खी पूरे समूह का नेतृत्व करती है।
1: इनसे हमें टीम वर्क, अनुशासन और मेहनत की सीख मिलती है। बिना शिकायत, बिना रुके ये लगातार अपना काम करती रहती हैं।
0: लेकिन दुख की बात ये है कि आज मधुमक्खियों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है। कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल, पेड़ों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन इनके लिए बड़ा खतरा बन चुका है।
1: अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में खेती और पर्यावरण दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है।
0: तो दोस्तों अब सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे कदम हैं, जैसे अपने आसपास पेड़ पौधे लगाना, फूलों वाले पौधे उगाना, अनावश्यक कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करना और लोगों को मधुमक्खियों के महत्व के बारे में बताना।
1: याद रखिए, प्रकृति की रक्षा सिर्फ सरकार या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: और सच कहें तो अगर मधुमक्खियाँ मुस्कुराती रहेंगी तभी धरती भी खिलखिलाती रहेगी।
1: तो दोस्तों विश्व मधुमक्खी दिवस पर आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करेंगे, क्योंकि छोटी सी मधुमक्खी हमें सिखाती है कि छोटा होना कमजोरी नहीं बल्कि मेहनत और एकता सबसे बड़ी ताकत है।
0: दोस्तों आज का ये खास दिन समर्पित है हिंदी साहित्य के उस महान कवि को जिनकी कविताओं में प्रकृति मुस्कुराती है, पहाड़ गुनगुनाते हैं और शब्दों में संगीत बहता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं महान छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती।
1: 20 मई 1900 को उत्तराखंड के खूबसूरत गांव कौसानी में जन्मे पंत जी को प्रकृति का कवि कहा जाता है। कहते हैं ना, जिसने पहाड़ों की गोद में बचपन बिताया हो उसकी कल्पना भी बादलों की तरह उड़ती है। बचपन से ही उन्हें प्रकृति से बेहद प्रेम था। हिमालय की वादियाँ, पेड़ों की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट उनके मन में कविता बनकर उतर जाती थी।
0: दोस्तों हिंदी साहित्य में जब भी छायावाद की बात होती है तो चार प्रमुख स्तंभों का नाम लिया जाता है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। लेकिन पंत जी की पहचान सबसे अलग इसलिए बनी क्योंकि उनकी कविताओं में कोमलता, सौंदर्य और प्रकृति का अद्भुत मेल दिखाई देता है।
1: उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में पल्लव, ग्राम्या, युगांत और चिदंबरा जैसी कृतियां शामिल हैं। चिदंबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
0: दोस्तों पंत जी सिर्फ प्रकृति के कवि नहीं थे बल्कि समय के साथ उनकी सोच भी विकसित होती गई। उन्होंने समाज, मानवता और बदलते भारत को भी अपनी कविताओं का विषय बनाया। उनकी लेखनी में संवेदनाएं थी, सपने थे और एक बेहतर दुनिया की कल्पना थी।
1: दोस्तों आज के समय में जब लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं तब पंत जी की कविताएं हमें फिर से प्रकृति के करीब ले आती हैं। वे सिखाते हैं कि जीवन की असली सुंदरता दिखावे में नहीं बल्कि पेड़ों की छांव, ठंडी हवाओं और मन की शांति में छिपी होती है।
0: आज उनकी जयंती पर यही संदेश लेना चाहिए कि हम साहित्य से जुड़े, प्रकृति से प्रेम करें और अपनी भाषा हिंदी का सम्मान करें, क्योंकि शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, वे समाज को बदलने की ताकत भी रखते हैं। दोस्तों कुछ खास है आज में आज बस इतना ही। कुछ ख्वाबों की

0: कुछ अपनों का साथ।
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्नी
0: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
0: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।

0: आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट व्यक्तित्व विकास की ओर।
1: आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे सेगमेंट व्यक्तित्व विकास के सब सेगमेंट गुण की ओर, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जो सुनने में छोटा है लेकिन इंसान की पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है, अनुशासन। दोस्तों, अगर जीवन एक गाड़ी है तो अनुशासन उसका स्टीयरिंग है। बिना स्टीयरिंग के गाड़ी रास्ता भटक सकती है और बिना अनुशासन के इंसान भी। अनुशासन का मतलब सिर्फ नियम मानना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही काम करना भी अनुशासन है।
2: सुबह समय पर उठना, अपने काम को जिम्मेदारी से पूरा करना, बड़ों का सम्मान करना और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना, ये सब अनुशासन की पहचान है। कहते हैं ना, जिसने खुद को संभाल लिया उसने दुनिया को जीत लिया।
1: आज के समय में हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन सफलता सिर्फ सपने देखने से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत के साथ अनुशासन भी जरूरी होता है। एक छात्र अगर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े तो परीक्षा के समय उसे डर नहीं लगता। एक खिलाड़ी अगर नियमित अभ्यास करे तभी वे मैदान में जीत पाता है। यानी हर सफलता के पीछे अनुशासन छुपा होता है।
2: लेकिन दोस्तों, अनुशासन का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जिंदगी में खुशियाँ ना हो, बल्कि अनुशासन हमें सिखाता है कि कब मेहनत करनी है और कब आराम। ये हमें जिम्मेदार बनाता है और हमारी पहचान को मजबूत करता है।
1: आज मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में सबसे बड़ा चैलेंज है खुद को कंट्रोल करना। घंटों फोन चलाना आसान है, लेकिन समय का सही उपयोग करना ही असली अनुशासन है। अगर हम अपने समय की कदर करना सीख जाएं, तो यकीन मानिए जिंदगी खुद हमारी कदर करने लगेगी।
2: तो आइए आज खुद से एक छोटा सा वादा करें कि हम अपने हर काम को पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ करेंगे, क्योंकि अनुशासन सिर्फ आदत नहीं, सफलता की पहली सीढ़ी है।
0: दोस्तों, व्यक्तित्व विकास के सब सेगमेंट गुण में आज बस इतना ही। चलिए सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: आइए दोस्तों चलते हैं हमारे सेगमेंट व्यक्तित्व विकास के दूसरे सब सेगमेंट कौशल विकास की ओर।
1: दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सब सेगमेंट कौशल विकास की ओर और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला की जो शब्दों को सिर्फ अक्षर नहीं रहने देती बल्कि उन्हें एहसास बना देती है, रचनात्मक लेखन।
2: दोस्तों रचनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग, जहां कल्पना उड़ान भरती है, भावनाएं शब्दों में ढलती हैं और दिल की बातें कागज पर कहानी बन जाती है।
1: कभी कहानी, कभी कविता, कभी डायरी के पन्ने, रचनात्मक लेखन।

0: लेखन हर उस भावना की आवाज है जिसे हम बोल नहीं पाते। ये सिर्फ लिखना नहीं होता बल्कि अपने विचारों को खूबसूरती से व्यक्त करना होता है।
1: सोचिए, अगर कवियों ने कविताएं ना लिखी होती, लेखकों ने कहानियां ना लिखी होती, तो शायद हम भावनाओं को इतनी गहराई से महसूस ही नहीं कर पाते। एक अच्छा लेखक वही होता है जो साधारण शब्दों में भी असाधारण एहसास भर दे।
0: आज के दौर में रचनात्मक लेखन की अहमियत और भी बढ़ गई है। सोशल मीडिया हो, रेडियो हो, ब्लॉग हो या किताबें, हर जगह नए और प्रभावशाली विचारों की जरूरत होती है। और सबसे खास बात, रचनात्मक लेखन हमें सोचने का नया तरीका देता है।
1: दोस्तों, कई बार हम अपनी बातें किसी से कह नहीं पाते, लेकिन जब वही बातें कागज पर उतरती हैं, तो मन हल्का हो जाता है। लेखन सिर्फ कला नहीं, कई लोगों के लिए सुकून भी होता है।
0: दोस्तों, अगर आप भी लिखना चाहते हैं, तो शुरुआत बड़ी होने की जरूरत नहीं। आप अपने आसपास की छोटी छोटी बातों को महसूस कीजिए, जैसे बारिश की बूंदे, चाय की खुशबू, दोस्तों की हंसी या किसी अपने की याद। हर एहसास एक नई रचना बन सकता है।
1: याद रखिए, हर लेखक पहले एक अच्छा महसूस करने वाला इंसान होता है, क्योंकि भावनाएं ही लेखन को जीवंत बनाती है। तो दोस्तों, अपनी कल्पना को खुलकर उड़ने दीजिए, शब्दों से दोस्ती कीजिए और अपने अंदर छिपे लेखक को पहचानिए।
0: दोस्तों, कौशल विकास में आज बस इतना ही। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट व्यक्तित्व विकास के तीसरे और आखिरी सब सेगमेंट द वेलनेस जर्नी की ओर।
1: आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे सेगमेंट व्यक्तित्व विकास के लास्ट सब सेगमेंट द वेलनेस जर्नी की ओर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भावना की जो धीरे धीरे इंसान के आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है, हीन भावना यानी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स।
0: दोस्तों, कभी कभी हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। किसी का रूप बेहतर लगता है, किसी की पढ़ाई, किसी का टैलेंट या किसी की सफलता, और फिर मन में एक आवाज आती है, मैं इतना अच्छा नहीं। यही सोच धीरे धीरे हीन भावना बन जाती है।
1: लेकिन सच कहूँ, हर इंसान अपने आप में खास होता है। जैसे हर फूल की खुशबू अलग होती है, वैसे ही हर व्यक्ति की पहचान भी अलग होती है। किसी और जैसा बनने की कोशिश में हम अपनी खूबसूरती भूल जाते हैं।
0: आज सोशल मीडिया के दौर में ये भावना और भी बढ़ गई है। लोगों की खुशियाँ, उनकी उपलब्धियाँ, उनकी तस्वीरें देखकर कई बार लगता है कि हमारी जिंदगी उतनी अच्छी नहीं। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया सिर्फ लोगों की हाइलाइट्स दिखाता है, उनकी पूरी कहानी नहीं।
1: हीन भावना का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान खुद पर भरोसा खोने लगता है। वो अपने टैलेंट को छोटा समझने लगता है, लोगों से दूर रहने लगता है और हर वक्त खुद को कम महसूस करता है। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आपने खुद की कीमत समझ ली, उस दिन दुनिया भी आपको अलग नजरों से देखने लगेगी।
0: अगर कोई आपसे बेहतर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। हर किसी की यात्रा अलग होती है, किसी को मंजिल जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हैं।
1: दोस्तों, खुद से प्यार करना सीखिए, अपनी छोटी छोटी अच्छाइयों को पहचानिए। हो सकता है आप बहुत अच्छा लिखते हो, किसी की मदद करते हो या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, और यकीन मानिए, ये भी बहुत बड़ी खूबी है।
0: और अगर कभी मन में ये भावना आए, मैं किसी लायक नहीं, तो एक बात याद रखिए, भगवान ने किसी को भी बेकार नहीं बनाया। हर इंसान किसी न किसी वजह से खास होता है।
1: तो आज खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी तुलना किसी और से नहीं करेंगे। आप जैसे हैं वैसे ही खूबसूरत हैं और आपकी पहचान सबसे अलग है।
2: दोस्तों, द वेलनेस जर्नी में बस इतना ही। इसी के साथ आज का सेगमेंट व्यक्तित्व विकास यहीं समाप्त होता है। प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट शैक्षणिक संस्थान की ओर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संस्थान जिसने खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में देश को एक नई पहचान, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान।
1: दोस्तों जब भी भारत में खेल, फिटनेस और शारीरिक शिक्षा की बात होती है तब इस संस्थान का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ये संस्थान केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं बल्कि युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने वाला मंच है।
0: दोस्तों इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। इसे भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया, जिन्होंने साहस, आत्मविश्वास और देशभक्ति की मिसाल को कायम किया था। ठीक उसी तरह ये संस्थान भी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और आत्मबल की भावना विकसित करता है।
1: यहाँ केवल पढ़ाई ही नहीं होती बल्कि शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाने की शिक्षा दी जाती है। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, योग, जिम्नास्टिक और कई अन्य खेलों का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों से विद्यार्थी यहाँ आते हैं और अपने सपनों को आकार देते हैं।
0: आज के समय में जहाँ लोग मोबाइल और स्क्रीन की दुनिया में ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, वहीं शारीरिक शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन की पहचान है और यही संदेश ये संस्थान वर्षों से देता आ रहा है।
1: दोस्तों इस संस्थान की सबसे खास बात है अनुशासन और समर्पण। यह छात्रों को केवल खिलाड़ी नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की प्रेरणा भी दी जाती है, क्योंकि खेल हमें सिर्फ जीतना नहीं सिखाते बल्कि हार कर फिर से उठना भी सिखाते हैं।
0: दोस्तों लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ने भारत को कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी, प्रशिक्षण और शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञ दिए हैं। ये संस्थान आज देश में खेल शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। तो दोस्तों अगर जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और अनुशासन चाहिए तो खेलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाइए, क्योंकि फिट शरीर और सकारात्मक सोच ही सफलता की असली ताकत।
2: दोस्तों ये था हमारा सेगमेंट शैक्षणिक संस्थान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोता साथियों, ये थे हमारे आज के सेगमेंट्स और अब वक्त है आज के सवाल का सही जवाब जानने का। हमारा सवाल था, हंटा वायरस शरीर के किन दो मुख्य अंगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? और इसका सही जवाब है फेफड़े और गुर्दे। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी, मोहम्मद आमिर अंसारी, रवि रस्तोगी, भाई रफत साहब, मिसबा शमसी, गंगा सिंह रावत, चौधरी राजवीर सिंह, हाजी गफ्फार खान, सुरेश गगनेजा, जॉन डे कैस्ट्रो, राम शरण, फागुराम यादव, बलवंत कुमार वर्मा, अभिजीत गवहंकर,

0: सिद्धार्थ गोंदा ने मोहम्मद अफजल ताज, राष्ट्रपाल गजबिये, मोहम्मद रफीक पनवार, सुनील पाठक, श्री कृष्णा बाठे, लाल मोहम्मद अंसारी, नानक खन्ना, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, मसरूर हसन, शकील अहमद इदरिसी, नजमुल हुद्दा जावेद, दीपेश वर्मा, शानूर नूर अंसारी, विजय सुरालकर, प्रवीण चौहान, रवि कुमार राहुल, पुंजाजी नवकर, हिरामणि वर्मा, भागवत चौबे लाडला जी, राजू मिगलानी, विनोद मुन्नत, नितेश कुमार, मुकेश कश्यप, जाकिर मंसूरी, राजवीर सिंह यादव, नंद कुमार, नवी हसन अब्बासी, देवशंकर तामूरिया, दीगदर्शन गौड़, मोहम्मद सईद अब्बासी, संजय धिंगिया, सुदर्शन शाह, बीएल धाकर, विजय सिंह महोबिया, मोहम्मद हफीज़, आकाश रस्तोगी, आमिर हुसैन, हनमत शिंदे, मोहम्मद यसीन अंजन, रेहाना खान, निसार सलमानी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, अजीत कसाना, गजानन येले, शाहजी बोटके, धीरज भाई राबरी, विथल सुरोशे, दुर्गरम साहू, कमल बालूजा, धर्मेंद्र छिप्पा, राधेश्याम पांडे।
1: दोस्तों, आप सभी ने दिया है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। चलिए सुनवाते हैं आपको आज के प्रोग्राम का ये आखिरी गीत।

0: तो साथियों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का प्रोग्राम, हमें बताना ना भूलें हमारे इस पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन कोड संख्या है 244901।
1: आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संदेश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876। हमारा ईमेल एड्रेस है patramilaairampur@gmail.com। आप हमें मेल भी कर सकते हैं।
0: इसी के साथ मैं आपकी रेडियो साथी शीरीन खान
1: और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त खुशी
0: को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6 बजे हैं। अब दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं।
3: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336

फिल्मी गीत सुनना हुआ अब और भी आसान, ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप के भी संग। हर रोज शामिल हो जाइए अपने नाम और एड्रेस के साथ दिन में 12:10 पर। हम करेंगे गीत आपके नाम।

देश के हो आप किसी भी शहर, गांव या इलाके से, झट उठाइए अपना मोबाइल और टाइप कीजिए अपना नाम और शहर, भेज दीजिए हमारे मेल एड्रेस पर गीत आपके नाम airrampur@gmail.com और व्हाट्सएप वही आपका जाना पहचाना नंबर 9410087876। याद रखिए दिन में 12:10 पर गीत आपके नाम।

0: आज की सबसे पहली जरूरत ERSS
1: यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,
0: और ये उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर 112 पर।
1: आपातकाल में साथ निभाए,
0: तुरंत सहायता उपलब्ध कराए
1: 112।
0: सवाल चाहे महिला सुरक्षा का हो
1: या सार्वजनिक स्थानों पर आत्मरक्षा का,
0: यदि चाहिए पुलिस सहायता
1: या फिर अग्निशमन सेवा की हो आवश्यकता,
0: बुलाना हो एम्बुलेंस को,
1: मिटाकर हर सस्पेंस को
0: डायल 112।
1: कोई भी राज्य हो कोई भी इलाका,
0: 112 सच्चा हम सफर है आपका।
1: कॉल 112, SMS करें या पैनिक बटन दबाएं,
0: या फिर भेजें ईमेल always use 112 इंडिया मोबाइल ऐप।
1: जब घेरे कोई भी आपदा,
0: तुरंत मिले सहायता
1: डायल 112।
0: चिंता से पाएं छुटकारा,
1: पुष्पा झुकेगी नहीं,
2: 112 की सेवा रुकेगी नहीं।
3: एक बार सोच के देख जरा, क्या जल बिन तुम जी पाओगे, तरस जाओगे बूंद बूंद को, जो व्यर्थ में जल को बहाओगे।
4: बिन पानी जीवन बदहाली, पानी से ही है खुशहाली।
5: जल है असली सोना, इसको कभी मत खोना।
3: अगर चाहते हैं भविष्य सुरक्षित बनाना, तो बेहद जरूरी है जल को बचाना।
4: पानी की रक्षा, देश की सुरक्षा।
3: हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
4: सामने है इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
5: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
4: ये प्लास्टिक कचरा, खासकर पॉलीथीन, पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध,
3: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
4: जागिए और जगाइए,
5: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए,
3: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
4: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
6: से नो टू प्लास्टिक।
7: बंदूक से निकली गोली का कोई नाम, कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। जब ये गोली लगती है किसी इंसान को, तो घायल होती है मानवता। छूट जाता है एक बचपन, वीरान हो जाता है किसी का जीवन, टूट जाती है किसी के बुढ़ापे की लाठी, बुझता है एक दीपक उम्मीद का। अपने इस देश में बारूद का ढेर नहीं, फूलों का चमन महकाएं, जीवन के हर रंग से इंद्रधनुष बनाएं।
8: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म कॉकटेल से

अभी आपने सुना फिल्म अखियों के झरोके से ये गीत। आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसानों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनन बारे सब भैया बहनों को आपकी बहन मीना
1: और आपके भैया जसविंदर की
0: राम राम। जसविंदर भैया कैसे हो आप?
1: हम तो ठीक हैं मीना बहन, आप सुनाओ आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं भैया, और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भैया बहन भी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में लगे होंगे और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे होंगे भैया।
1: बिल्कुल मीना बहन, हमारे किसान भैया बहन मेहनती होते हैं जैसा कि हम सब जानते हैं, और हर हाल में अपने खेत खलियानन को संभालन को काम करते हैं, चाहे मौसम जैसो भी हो, किसान हार ना मानता। आपने देखी हुई?
0: हाँ भैया बिल्कुल।
1: मीना बहन, मई को महीना चल रहा है, खेतन में कहीं जायद की फसलें लगी भी हैं हमारे किसान साथियों के, तो कहीं खरीफ की तैयारी शुरू कर रहे हैं। ऐसे समय में किसान भाई सरकारी योजनाओं की जानकारी भी ले इनको काम करते हैं, ताकि जो खेती को खर्च है ना वो थोड़ो कम हो सके और आमदनी में बढ़ोतरी हो सके।
0: हाँ बिल्कुल सही कही बात भैया आपने। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी सहारा बनी हुई है भैया। साथ ही चर्चा करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस की, क्योंकि खेती और मधुमक्खियों का रिश्ता बहुत गहरा है भैया।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने।
0: हाँ, और जसविंदर भैया आजकल खेती में लागत लगातार बढ़ रही है भैया, और बीज खाद दवाई सिंचाई सब चीजों में खर्च बढ़ गया भैया। ऐसे समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है भैया।
1: मीना बहन, जय योजना के तहत जो पात्र किसान साथी होता ना,
0: हाँ।
1: उनको साल भर में 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है, और जर सहायता जो है वो 3 किस्तन के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंचती है।
0: हाँ।
1: और सबसे बड़ी बात तो जा है ना मीना बहन,
0: हाँ,
1: कि पैसा जो है वो सीधे जो हमारे किसान साथी हैं उनके खाते में आता है।
0: हाँ।
1: बीच में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना होती है।
0: हाँ भैया बिल्कुल। और जसविंदर भैया, गांव में अब काफी किसान भाई इस योजना को लाभ ले रहे हैं। कई लोग इस पैसे से बीज खरीद लेते हैं, क्योंकि खाद ले आते हैं तो कोई सिंचाई का खर्च निकाल लेता है, और छोटे किसानों के लिए ये रकम समय पर मिल जाए तो भैया काफी राहत मिलती है।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने मीना बहन, लेकिन हमारे जो किसान साथी है ना कुछ, वो कई बार कुछ किसानन की जो किस्तें होती है ना,
0: हाँ हाँ।
1: किसान सम्मान निधि की भी रुक जाती है।
0: हाँ,
1: और जाको सबसे बड़ो कारण जय होता ना कि उनकी या तो केवाईसी ना होती है, या फिर बैंक खाते, या फिर आधार में नाम गलत होता है, या फिर जो खतौनी है बामा नाम गलत होता है। तो इन सब चीजन को हमारे किसान साथी चेक जरूर करा लें अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तब।
0: हाँ भैया, इसलिए किसान भाइयों को समय समय पर अपना रिकॉर्ड सही कराते रहना चाहिए। गाँव के कॉमन सर्विस सेंटर या कृषि विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है।
1: एक बात और जरूरी है मीना बहन, कई बार लोग गलत जानकारी देकर भी योजना को लाभ लेने की कोशिश करते हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन बाद में दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए वही किसान आवेदन करें जो जाके पात्र हैं।
0: हाँ भैया सही कही भैया आपने, और इस योजना का फायदा जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे भैया, यही सबसे जरूरी बात है।
1: आजकल खेती में छोटी छोटी जरूरतें भी किसानों को परेशान कर देती हैं, ऐसे में अगर समय पर थोड़ी आर्थिक सहायता मिल जाए ना तो किसानों को हौसला और बढ़ जाता है।
0: और किसान भाई अगर इस राशि का सही उपयोग करें तो भैया ना काफी फायदा हो सकता है, जैसे उन्नत बीज लेना, जैविक खाद तैयार करना, खेत की मेड़बंदी करना, या सब्जी के छोटे खेती शुरू करना भैया।
1: कुछ किसान भैया तो जब पैसा से कई तरीका की जो अपने काम हैं उनको लगाते हैं, अगर बात करें ड्रिप सिंचाई की या फिर छोटे कृषि उपकरण की, किस्त भी जाई से भर देते हैं, और धीरे धीरे जो छोटी मदद होती है ना,
0: हाँ
1: वो कभी कभी बड़ो सहारा बन जाती है।
0: हाँ
1: और जैसे बात करी ना ड्रिप सिंचाई की, जब पर अनुदान भी मिलता है हमारे किसान साथी अगर डायरेक्ट अपने खेत में लगवाना चाह रहे हैं तो बाको लाभ ले सकते हैं।
0: अच्छा भैया, जैसे जसविंदर भैया खेती में अब नई तकनीकी अपनानों की जरूरत है भैया, सरकार भी लगातार किसानों को योजनाओं से जोड़ रही है भैया।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने मीना बहन। और अब बात कर लेते हैं मधुमक्खियों की।
0: हाँ,
1: जो कि हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है ना।
0: हाँ भैया,
1: बाको कारण भी जय है कि हम लोग जो है अपनी जो मधुमक्खियां हैं
0: हाँ,
1: उनको सुरक्षित रख सकें।
0: हाँ भैया, और जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मधुमक्खी का काम सिर्फ शहद बनाना है भैया, लेकिन खेती में इसका योगदान बहुत बड़ा है भैया।
1: बिल्कुल मीना बहन, मधुमक्खियां फूलन पर बैठकर परागण को काम करती हैं, और जैसा फसल

0: दानों भराव भी अच्छे हो जाता है और उत्पादन भी बढ़ जाता है।
1: हाँ भैया, और जैसे सरसों, सूरजमुखी, फलदार पौधे, सब्जियाँ और कई दलहनी फसलें मधुमक्खियों की वजह से ज़्यादा अच्छी पैदावार देती हैं भैया।
0: नीना बहन, आजकल कई किसान मधुमक्खी पालन को भी अतिरिक्त आय को साधन भी बना चुके हैं।
1: हाँ।
0: और खेती के साथ साथ शहद उत्पादन से अच्छी कमाई ले रहे हैं।
1: सबसे अच्छी बात तो ये है भैया कि जैसे मधुमक्खी पालन ज़्यादा जमीन नहीं घेरता है, थोड़ी ट्रेनिंग और सही देखभाल से किसान इसे आसानी से शुरू कर सकता है।
0: और गांव में अब लोग कुछ शहद की भी जो मांग है ना, वो बढ़ रही है, और शुद्ध शहद की मांग तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बाजार में इसकी अच्छी कीमत भी मिल जाती है हमारे किसान साथियों को, तो जैसे आय होना अच्छी मिल जाती है।
1: लेकिन भैया एक चिंता की बात भी है, खेतों में ज़्यादा रसायन दवाइयों के इस्तेमाल से मधुमक्खियों की संख्या कम होती जा रही है।
0: मीना बहन, कई बार हमारे जो किसान साथी हैं ना, दिन में तेज दवा को छिड़काव कर देते हैं, उस समय मधुमक्खियाँ फूलन पर रहती हैं और दवा के असर से भी मर जाती हैं, और जय कारण है कि हमारी जो मधुमक्खी हैं उनको नुकसान होता है।
1: हाँ, इसलिए कोशिश करें कि दवा का छिड़काव सुबह जल्दी या शाम को करें भैया, जरूरत के हिसाब से ही दवा इस्तेमाल करें।
0: और या तो अब हमारे जो किसान साथी हैं ना, उनको हम जो कह रहे हैं कि जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, और बासा अगर हमारे जो किसान साथी हैं ना अपना उत्पादन बढ़ावें, तो बासा मिट्टी भी सुरक्षित रहती है और जो मधुमक्खियां हैं उनको भी कोई नुकसान ना होता, बची रहती है।
1: हाँ भैया, अगर मधुमक्खियां कम हो जाएंगी ना तो भैया फसलों के उत्पादन पर भी असर पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए किसान भाई इन छोटे बीजों का, इन जीवों का महत्व समझे भैया।
0: मीना बहन, जो तो ही कुछ बात मधुमक्खी पालन की, यानी कि मधुमक्खी दिवस की। और देखो हमारे किसान साथी, अब आप देख ही रही हैं कि आपने बताई ना कि खरीफ की फसल की तैयारी कर रहे हैं, तो खरीफ में हमारे किसान साथियों को प्रमुख जो फसल है वो धान की होती है।
1: हाँ,
0: और धान की पौध की तैयारी हमारे किसान साथी कर रहे हैं। कुछ किसान साथी सीधे धान की बुवाई भी करते हैं, लेकिन जरूरत होती है उन्हें जो धान की फसल लगाने हैं, बामें कौन से बीज को चुनाव करें या फिर कौन सी जो प्रजातियां हैं उनको चयन करें। अगर हमारे किसान साथियों को पहले से पता हुआ ना, तो भी आसानी से इनको चयन कर सकते हैं और अच्छे उत्पादन ले सकते हैं। आज हम इसी विषय पर एक अपने किसान साथियों के लिए भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं, धान की उन्नत प्रजातियां। डॉक्टर अमरजीत सिंह राठी इनसे इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं, और क्या जानकारी दे रहे हैं आप वो सुने और हमारे किसान साथी भी सुने। आज हमारे कार्यक्रम कृषि जगत में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अमरजीत सिंह राठी जी को, और आज हम इनसे जानेंगे आने वाले समय में हमारे जो किसान साथी धान के पौध के लिए तैयारी कर रहे हैं, धान की फसल भी लगाएंगे, तो उससे पहले उन्हें कौन सी किस्म किस क्षेत्र के लिए अपनानी चाहिए उस बारे में, और ये भी जानेंगे कि जो नई प्रजातियां हैं, उन्नतशील किस्में हैं, वो कौन कौन सी हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात आती है धान की पौध डालने की तैयारी हमारे किसान साथी लगभग कर रहे हैं, तो बात करें हम खेत की तैयारी की। बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं कि जो पौध डालते समय बहुत सारी कमियां कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने बीज तो अच्छा लिया लेकिन हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिला, पैदावार अच्छी नहीं मिली, तो हमारे किसान साथी क्या करें।
2: देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा प्रजातियों से पहले कि हमारे जो किसान भाई हैं जनपद रामपुर पीलीभीत इस क्षेत्र के, वो धान की पौध बहुत जल्दी डालने की कोशिश करते हैं।
0: अच्छा,
2: जैसे गेहूं की कटाई होगी उनका सीधा सीधा रहता है, जब धान की हम इसमें पौध डालें और 15 जून तक हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर दें,
0: जी।
2: तो सबसे बड़ी गलती तो यही कर रहे हैं वो। इससे पैदावार पे तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, बाद में मंडी में जब शुरू में धान जाता है तो उसके रेट भी नहीं मिल पाते।
0: अच्छा।
2: बारिश बाद में आती है तो उससे भी गिरने की संभावना रहती है, उपज कम पड़ती है। तो किसी भी कीमत पर हमारे किसान भाई 25 मई के बाद ही पौध डालें।
0: अच्छा।
2: और उससे उत्पादन ज्यादा मिलेगा और हमारी पानी की भी बचत होगी, और ये जो इस समय जो चल रहा है, इस समय अगर हम हरी खाद लगा देते ढेंचा की या सनई की, तो हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती और 25 जून के बाद में ही पौध की रोपाई या जुलाई फर्स्ट वीक में
0: करें,
2: करनी चाहिए।
0: ध्यान रखें कि 25 मई से पहले पौध न डालें। अब बात आती है कि जो किस्म है उनका चुनाव कैसे करें।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी मार्केट में इतनी प्रजातियां आ गई हैं, हर विश्वविद्यालय की 15-15-20 हर साल नई वैरायटी निकल रही है, तो किसान असमंजस की स्थिति में है कि हमें कौन सी प्रजाति ली जाए।
0: बिल्कुल,
2: तो मैं यहाँ स्पष्ट कहना चाहूंगा कि एक तो जो 10-15 साल पुरानी प्रजातियां हैं उनको बिल्कुल ना लें। जैसे हमारे यहाँ इस क्षेत्र में PR 113 धान मोटे में बहुत बिजाई करते हैं किसान हमारे भाई, तो उसमें बहुत सारे रोग कीड़े बीमारियां की समस्या आ रही है उन प्रजातियों में। ऐसे ही हमारे यहाँ सरबती का बहुत बड़ा एरिया है, बांसमती जिसे कहते हैं, हालांकि बांसमती है नहीं वो, तो पुरानी प्रजातियों को रिप्लेस करके जो उन्नत प्रजातियां आ रही हैं उनका चुनाव करें। और उनमें चुनाव कैसे करें, एक तो आता है मोटा धान
0: जी,
2: दूसरा बासमती, तीसरा हाइब्रिड।
0: अच्छा।
2: और चौथी जो प्रजातियां आ रही हैं वो

0: प्रजाति लगा दी तो वो भले ही उसका उत्पादन ज्यादा हो लेकिन वो वहां उस सिस्टम में फेल हो जाएगा। तो
1: बिल्कुल
0: प्रजाति का चुनाव करते समय कम से कम उसे 50 बातें ध्यान रखनी है।
1: जी,
0: अगर उसने यही गलती कर दी तो चाहे कितनी खाद डाल दे, कितने बीज डाल दे, वो वहीं
1: फेल हो जाएगा,
0: फेल हो जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर हम मोटे धान की बात करें तो मोटे धान में जैसे मैंने बताया यहाँ PR 113 का काफ़ी बड़ा एरिया है, लेकिन उसको किसान काफ़ी रिप्लेस कर चुके हैं PR 126 से।
1: जी
0: अब PR 126 बहुत अच्छी पॉपुलर वैरायटी है, लेकिन उसमें हमने 2-3 साल से देखा है कि डिजीज की समस्या,
1: आ रही
0: हल्दी
1: है,
0: गांठ और बहुत सारी समस्याएं उसमें
1: आ रही है
0: आ रही हैं। तो उसके स्थान पर PR 131 और 132
1: जी।
0: दो बहुत अच्छी प्रजातियां, वो भी कम अवधि की, 132 2025 में रिलीज हुई है, उसका चयन करें किसान भाई। ऐसी पंतनगर विश्वविद्यालय ने पंत धान 24 पंत धान 4 की जगह निकाला है,
1: जी
0: अच्छा है। उसमें जो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है या जो आपके तना छेदक की जो समस्या मेन हमारे यहाँ देखी गई है तराई में, ये दोनों समस्या उसमें इन मोटे धान में इनमें नहीं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी जिन प्रजातियों का जिक्र किया, उन प्रजातियों को हमारे किसान साथी कौन से क्षेत्र में लगा सकते हैं? बात करें मैदानी क्षेत्र में या फिर जो थोड़े मटियार जगह
0: हाँ,
1: है
0: देख
1: वहां पर?
0: बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। एक तो जो हम मोटे धान की बात करते हैं जिनकी अवधि 120 125 दिन की है, तो ये खाद एवं उर्वरक को पानी ज्यादा चाहते हैं। तो जहाँ हमारी निचली जमीन है, मटियार है, जहाँ पानी ज्यादा रुकता रहता है, तो वहां तो हम मोटे धान की व्यवस्था कर लें। अगर खेत हमारा ऊंचे का है और हमें कम अवधि में या हम कम खाद पानी की व्यवस्था करना चाह रहे हैं, तो
1: जी
0: बासमती एक बहुत अच्छा विकल्प है। और अब बासमती की भी ऐसी प्रजातियां आ रही हैं जो गिरती नहीं है। पहले हमारे किसान भाई बहुत चिंतित रहते थे कि हमने साहब 11-21 लगा दी या और बहुत सारे, तो पाकिस्तानी बासमती थी तो उनकी समस्या थी, गिर जाती थी। अब
1: जी
0: ऐसी प्रजातियां आ गई जिनके रेट बहुत अच्छे, कम दिन की हैं और उनमें बीमारियां नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, आपने बात की 11-21 की, और इसके अलावा आपने एक और
0: जी
1: प्रजाति का जिक्र किया
0: जी
1: बासमती का।
0: जी
1: हमारे किसान साथी, जो पाकिस्तानी बासमती
0: जी
1: थी उसका भी बहुत प्रचलन था, लोग खूब उसका उत्पादन करते थे, लेकिन डॉक्टर साहब उससे बहुत अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाया किसान साथियों को, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो क्या इसकी भी कुछ बदलाव हुआ है इसकी प्रजातियों में?
0: हाँ बिल्कुल बदला हुआ है। जैसे हमारे किसान भाई सभी जानते हैं पूसा बासमती 1509 हमारे क्षेत्र में काफी अडॉप्शन हुआ है उसका,
1: बिल्कुल
0: काफी बड़ा एरिया है, उसको भी रिप्लेस किया है वैज्ञानिकों ने। अभी
1: अच्छा
0: उसकी जगह पूसा बासमती 1847
1: जी
0: बहुत अच्छा उसका विकल्प है। और जैसे सरबती बासमती हमारे यहाँ कहते हैं किसान की, सरबती में साहब जी कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं, ऐसी ही एक वैरायटी ऑप्शन है आपका PV 1847
1: जी
0: जो गिरती नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात करी सरबती की, उसमें तो लागत भी बहुत कम आती है। अगर कहते हैं कि लागत थोड़ी ज्यादा लगा दें हमारे किसान साथी,
0: जी
1: तो वो गिर जाती है और उस
0: हाँ
1: पर उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसी वजह से वो प्रजाति का अडॉप्शन अब बहुत कम हो रहा है। अब किसान भाई अब नहीं, उसके प्राइस भी कम है।
1: अच्छा
0: जैसे अगर आपका 1509 या 1847 की हम बात करें या PV 1692 प्रजाति है, वो काफी अडॉप्शन में है, इनके सरबती से रेट ज्यादा है। 2000 की बिक्री है तो 27-28 3,000 3,200 रुपये कुंटल तक
1: जी
0: पैदावार ज्यादा है। और जो हम अभी बात करते हैं ये क्लाइमेट चेंज की,
1: जी
0: क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटी की बात कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: उनमें ये फिट बैठ रही है वैरायटियां आपके,
1: अच्छा
0: ये PV 1847 PV 1692 और आपके 1509 तीनों बहुत ही अच्छी है, कम दिन की वैरायटी हैं जो
1: जी
0: किसान भाई हमारे बाद में जिन्हें सरसों, पीली सरसों या मटर की खेती करनी हो या गन्ने के साथ सह फसली खेती करनी हो अक्टूबर वाला,
1: जी
0: तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन इसमें। अब एक बात हम करें हाइब्रिड वैरायटी की,
1: जी
0: हाइब्रिड भी क्योंकि बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं, तो इसमें हमारी जो 3,7301 है कम दिन की, 115-120 दिन में मैच्योर हो जाती है,
1: जी
0: ऐसी इन्होंने 7,7601 बनेस
1: जी
0: वो कुछ थोड़े 10-5 दिन
1: लेट हो जाती
0: लेट हो
1: है
0: जाती है, तो थोड़ी पैदावार उसकी ज्यादा है। तो किसान
1: जी,
0: अपने एडजस्टमेंट कर लेंगे हमें अगली फसल कौन सी लेनी है,
1: लेनी है।
0: तो अच्छी हाइब्रिड है दोनों। अब बात करते हैं कि जो हम DSR की बात करें तो DSR में भी सवाना कंपनी ने आपने ये 125-127 और 134 इन्होंने
1: जी
0: दो ऑप्शन दे दिए हैं इसमें,
1: जी
0: 127 जो कम अवधि की है और 134 थोड़ी 5-10
1: ज्यादा
0: दिन
1: देखिए
0: का। किसान भाई अपने क्रॉपिंग सिस्टम में तालमेल करके उनका एडॉप्शन कर सकते हैं। और ये सब हर्बिसाइड टॉलरेंस वैरायटी हैं।
1: जी
0: ऐसी बासमती में ये तो चलो हाइब्रिड में मोटे में ऑप्शन हो गया, हाइब्रिड में भी ये आपके PV 1979 और 1985
1: जी
0: ये हमारे IRI ने डेवलप की है न्यू
1: जी
0: दिल्ली ने, ये भी हर्बिसाइड टॉलरेंट है, जो इमीजाथापर है उसमें डालने से इसकी पे कोई फर्क
1: नहीं
0: ना
1: पड़ता।
0: उत्पादन पड़ता है ना ही क्वालिटी पे, और धान की सीधी बुवाई में इन प्रजातियों का किसान भाई चुनाव कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की सीधी बुवाई की, अब कल्चर चेंज हो रहा है खेती बाड़ी का, और हमारे जो किसान साथी हैं वो वैज्ञानिक विधियों को भी अपना रहे हैं, और बहुत सारे किसान साथियों ने सीधी बुवाई का जो विकल्प है उसको अपनाया भी है।
0: बिल्कुल
1: लेकिन हमारे बहुत सारे किसान साथी इस असमंजस में रहते हैं कि हम जो पौध डालकर उस उसको ट्रांसप्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब लगातार करते ही हैं, लेकिन जो लोग सीधी बुवाई कर रहे हैं, तो क्या इसमें

0: उत्पादन की भी कुछ अंतर है इसमें?
1: देखो, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। धान की सीधी बुवाई में उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता
0: जी,
1: बल्कि लागत बहुत कम होती है। अभी जो हम बात करते हैं, कभी आपने देखा होगा कि हम कम लागत में अधिक उत्पादन की बात करते हैं। आपने 1 रुपया खर्च किया है तो हमें 2 रुपए
0: मिलने,
1: अगर आपने 1.5 रुपया खर्च करके अगर 3 रुपए कमाए तो कोई ज्यादा आबकारी। जो सीधी बुवाई में पहले कुछ मशीनें ठीक ठाक नहीं थी
0: जी,
1: हर्बिसाइड की बहुत सारी जो हम डाल देते तो खेत में बहुत ज्यादा खरपतवार हो जाते थे, उन सारी समस्याओं का निराकरण हो गया है। धान की सीधी बुवाई में कम लागत में अधिक उत्पादन और अधिक बचत है
0: जी।
1: ये मतलब टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, कोई एट पारी यील्ड है, पानी की बचत, बहुत सारी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान साथियों के जो मन में एक सवाल था उसको क्लियर कर दिया है कि हमारे किसान साथी सीधी बुवाई करने से थोड़ा कतरा रहे थे, तो उनको ये भी ये मालूम पड़ गया होगा कि हमारे जो किसान साथी हैं उनको पानी भी कम जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा जो खरपतवार हैं वो भी हमारी फसलों में कम आएंगे। डॉक्टर साहब, बात आती है जैसे आपने कही कि खरपतवार, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें खरपतवारों का बड़ा रोल रहता है, तो हमारे किसान साथी इससे कैसे पार पाएं?
1: देखो, खास तौर से अगर हम बात करें खरीफ सीजन में खरपतवारों की समस्या सिर्फ धान में ही नहीं है
0: जी,
1: धान से अलावा भी आपको चाहे जो सी क्रॉप्स आप लगा दे, चाहे उड़द लगा दो आप, चाहे मूंग लगाओ, चाहे अरहर लगाओ, जो भी खरीफ फसल है, उन सारी समस्या खरपतवारों की उसमें
0: आनी है।
1: अब वो किसान भाई हमारे सिर्फ एक ऑप्शन रहते हैं कि हमें एक हर्बिसाइड ही एक विकल्प है कि साहब हम सिर्फ शाकनाशी डालेंगे और इससे हम अपनी फसल को बचा लेंगे। लेकिन इससे अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं
0: जी,
1: जैसे मल्चिंग है। मल्चिंग एक बहुत बड़ा ऑप्शन है और हमारे किसान भाई जैसे अभी पराली में आग लगा देते हैं, अभी गेहूं काटा है उसमें भी आग लगा दिया, धान काटते हैं उसमें, अगर उस पराली को भी बचाकर हम खेत में किसी तरीके से डाल दें तो इन खरपतवारों की समस्या से समाधान
0: हो सकता है।
1: रही धान की बात, तो धान में जो सीधे जो हम पहले ट्रांसप्लांटिंग करते थे, रोपाई करते थे, उसमें यही मेन था कि हमारे हम खरपतवारों से बच जाएंगे, पानी कधेड़ कर दिया और हम पाउंडिंग कर देते थे जिससे हमारे खरपतवार जमते नहीं थे। सिर्फ एक ही उसमें फायदा था और सारे नुकसान थे हमारे भूमि, क्योंकि पानी की जब नीचे लेयर बन जाती थी हार्ड लेयर तो नीचे पानी नहीं जाता था, तो हमारी जमीन का वाटर टेबल भी घटता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: तो एक खरपतवार को रोकने की समस्या की वजह से हम DSR को अडॉप्ट नहीं कर रहे। उसकी समस्या का अब ऐसी वैरायटी रिलीज हो गई जो शाकनाशी को टोलरेट कर लेती हैं, उनके सारे जो आपके सहजेज हैं या आपके जो मोथा और आपके कहते हैं ये झड़ुआ घास कहते हैं हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा ये 2-3 तरीके की घास हैं जो बहुत ज्यादा दुख पहुंचाती है हमारे धान की फसल को। इमीजिएट था पर एक बहुत बड़ी हर्बिसाइड आ गया धान में, लेकिन ये हर्बिसाइड सिर्फ जो टोलरेट वैरायटी है उनमें ही ऑप्शन में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप धान की सीधी बुवाई में कोई भी प्रजाति का चुनाव
0: कर सकते हैं।
1: लेकिन इस शाकनाशी को आप यूज नहीं करेंगे। इसमें मैंने जो 3-4 वैरायटी बताई सब आगे जो 127-134 और ऐसी बासमती मैंने 1985 और 1979 बताई, इनमें आप किसान भाई इनका एक ऑप्शन मिल गया उन्हें। ऐसे ही बायोफोर्टिफाइड वैरायटियां जैसे आपके CR धान 310 और 311 है जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है, ऐसी DRR धान 45 करके है जिसमें जिंक ज्यादा है 22 ppm से भी ज्यादा है, और जो मैंने पहले वैरायटी बताई CR 310 उसमें 10% प्रोटीन है
0: जी।
1: तो किसान ऐसी प्रजातियों का भी चुनाव करके और मार्केट में अपना अधिक उत्पादन ले सकते हैं, और ऐसी वैरायटी लें किसान भाई जिसकी सस्टेनेबिलिटी भी हो।
0: बिल्कुल,
1: जैसे उदाहरण के लिए अगर आप पीलीभीत में यहाँ बात करें, आपने कोई अच्छी वैरायटी लगाई और उसमें मिलिंग परसेंट कम है, मार्केट में रेट नहीं मिलेंगे।
0: बिल्कुल सही,
1: तो कई बार आप उन चीजों को देख
0: कर चुनाव। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी किस्मों का चयन बताया, हमारे किसान साथी अगर आपके द्वारा बताई गई किस्मों का चयन करेंगे और अपने क्षेत्र के अनुसार करेंगे तो हम समझते हैं जो एक खरपतवार की समस्या है या फिर जो अधिक लागत की समस्या आ रही है उससे भी हमारे किसान साथी बच सकते हैं। डॉक्टर अमरजीत सिंह राठी जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीना बहन, देखो अभी हमारे किसान साथी ने जो भेंटवार्ता सुनी जिसको विषय हो धान की उन्नत प्रजातियां, और जानकारी दे रहे डॉक्टर अमरजीत सिंह राठी। हाँ, आपने देखी हुई ना कि जो हमारे गांव क्षेत्र में महिलाएं होती हैं वे कई बार जन समझ पाती हैं कि हमें कर्णों का चाहिए।
2: हाँ भैया, बिल्कुल।
0: छोटे छोटे उद्योग धंधे अगर वे अपनावें और उनमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ावें तो हम समझते हैं कि वे भी अपने आप को मजबूत कर सकती हैं और अपनी जो खेती बाड़ी है उसको भी मजबूत कर सकती हैं। तो मीना बहन, जाई से संबंधित एक और भेंटवार्ता हम अपने किसान साथी के लिए सुनवा रहे हैं जिसको विषय है कुटीर उद्योग अपनाकर महिलाएं बने आत्मनिर्भर। इस विषय पर विस्तार से

0: जानकारी दे रही हैं डॉक्टर सुनीता पंत, और आप से जानकारी कर रहे हैं हमारे भैया प्रवीण।
1: किसान भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम के बीच हैं डॉक्टर सुनीता पंत, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र धमोरा रामपुर से हैं। तो मैडम, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो गांव में ही रहकर अगर कोई व्यवसाय अपना करना चाहें तो आत्मनिर्भर बन सकती हैं, तो कौन कौन से वो कुटीर उद्योग करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं?
2: देखिए, वैसे तो महिलाएं बहुत सारे कुटीर उद्योग कर सकती हैं। महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग बहुत अच्छा भी रहता है, क्योंकि जो भी है वो घर से, कुटीर उद्योग का मतलब यह है कि एक छोटा उद्योग जिसको कि वो घर से ही कर सकें, या पास की कोई बिल्डिंग लेकर के उसमें कर सकें। तो महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग बहुत अच्छा रहता है। उसमें वो कृषि से संबंधित भी कुटीर उद्योग होते हैं और बिना कृषि से संबंधित भी कुटीर उद्योग होते हैं, जो कि कृषि से संबंधित नहीं है।
1: मैडम, सबसे पहले तो हम कृषि से संबंधित जो हमारे कुटीर उद्योग है उनके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि महिलाएं जो है वो कृषि से जुड़ी भी होती है, तो उस बारे में आप बताइए।
2: महिलाएं, आपने देखा होगा गाँव में आमतौर पर पशुपालन बहुत ज्यादा करते हैं, हर घर में एक पशु होता है, तो महिलाएं इसे भी कुटीर उद्योग के रूप में ले सकती हैं। पशुपालन है, मुर्गी पालन है, पौध उगा करके बेच सकती हैं। उसके अलावा जैसे कि रस्सी बनाना है, उसको भी वो अपना सकती हैं। और भी बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे जहाँ जिन क्षेत्रों में ये सिल्क रेशम उत्पादन होता है वहां पर वो रेशम उत्पादन कर सकती है, क्योंकि हर क्षेत्र में ये नहीं होता है। मधुमक्खी पालन कर सकती हैं, फूलों की खेती करके फूलों को बेच सकती हैं। इस तरीके से बहुत सारे उद्योग हैं जो वो कर सकती हैं, और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी चीज है कि वो कुटीर उद्योग में अपना सहयोग जरूर दें।
1: मैडम, ये तो रहे कृषि से संबंधित, और कृषि से अगर अलग हटकर कुछ करना चाहें कुटीर उद्योगों में तो वो कौन कौन से हैं?
2: वो भी बहुत सारे हैं, और ग्रामीण महिलाएं क्या जो जिनका आर्थिक स्तर थोड़ा कमजोर है, शहरों में भी हैं, वो भी ये कर सकती हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर कर सकती हैं, वो टेलरिंग का कर सकती हैं, और इसके अलावा कहीं कहीं पर पॉटरी भी बनाई जाती है। पॉटरी मीन्स मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, टेराकोटा भी हो सकता है, सिरेमिक पॉटरी भी हो सकती है। उसके अलावा कारपेंटरी भी कर सकती हैं, जैसे कारपेंटर होते हैं, महिलाएं भी ये काम कर सकती हैं, कंबल बनाने का काम कर सकती हैं। इसके अलावा हैंडमेड ज्वेलरी, गहने बना सकती हैं हाथ से अपने, और इसके अलावा बैम्बू के जो बांस होता है उसका भी अच्छी डेकोरेशन की मतलब सजावट की चीजें बना करके, इसके अलावा घरेलू उपयोग वाली चीजें बना करके भी वो अपना कुटीर उद्योग शुरू कर सकती हैं।
1: कई चीजें आपने बताई इसमें, लेकिन एक इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा बैम्बू से भी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो कुछ ना कुछ बना सकती हैं, तो उनसे बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जिनकी डिमांड इस समय मार्केट में बहुत है, क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति जो है वो पॉलीथीन से बचना चाह रहा है, और बॉम्बो से हमारे जो है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पॉलीथीन के स्थान पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज बनाई जा सकती है?
2: इसमें वो हम आम भाषा में बांस कहते हैं, उससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि ट्रे बनाई जा सकती है बैम्बू की, और ये चॉपर बनाया जा सकता है। चॉपर मतलब सब्जियों के काटने के लिए एक बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड होता है, वो बना सकते हैं। गिलास बॉटल है वो बना सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारे सजावट का सामान बना सकते हैं, ये सब चीजें बनाई जाती है इससे।
1: जी जी, तो मैडम इतनी सारी चीजें आपने बताई, तो ये हमारी महिलाएं जो है वो किस तरीके से बना सकती है, क्या इसके बारे में कहीं प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है?
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ देश में खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये जो है हर राज्य में है, और ये जो है गांव में जो कुटीर उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए ही करा गया है। यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, और प्रशिक्षण के बाद उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे कि वो बैंक से अपना लोन लेकर के अपना उद्योग शुरू कर सकती है।
1: जी, तो ये प्रशिक्षण कब कब होता है, इस बारे में हमारी जो महिलाएं हैं उनको कैसे जानकारी प्राप्त?
2: ये आपको वहाँ जाके संपर्क करना पड़ेगा कि किस किस चीज में प्रशिक्षण मिल रहा है और कब कब मिल रहा है।
1: तो इस तरीके हमारी महिलाएं पर प्रशिक्षण कर लें, क्योंकि प्रशिक्षण लेने के बाद में ही अगर कोई काम करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें सुंदरता नहीं होगी, और आज के जमाने में सुंदर चीजों की ही डिमांड है।
2: अगर एक चीज और मैं इसमें कहना चाहूंगी, जो प्रशिक्षण होता है उसमें वो हर चीज कवर करते हैं, सिर्फ इतनी जानकारी नहीं देते हैं कि आपको कैसे काम करना है, वो ये भी जानकारी देते हैं कि आपको कहाँ से लोन मिलेगा, आप इसको कैसे बेच सकते हैं और कहाँ पर बेच सकते हैं, क्योंकि सब चीज प्रशिक्षण ले लिया, लेकिन अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं, तो कैसे काम शुरू करेंगे? और अगर आपने उत्पाद बना लिया और उसको बेच नहीं पा रहे हैं, तो फिर तो आपका प्रशिक्षण और सब चीज बेकार हो जाता है। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा समस्या सामान बेचने की मार्केटिंग की है।
1: अगर अपना कोई हम सामान बना रहे हैं तो उसकी मार्केट होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसके हिसाब से ही अपने जो सामान बना सकते हैं, और जब बिक्री होगी तभी हमारे बनाने का उद्देश्य पूरा होगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, इससे महिलाएं हैं तो महिलाएं ग्रुप में काम शुरू करें, ये नहीं कि अकेले अकेले कुछ नहीं हो पाएगा, ग्रुप बना करें, जैसे स्वयं सहायता समूह बनते हैं वैसे ग्रुप 10 से 15 महिलाओं का, जिनके की विचार आपस में मिलते हों, जो इच्छा से उसमें शामिल हों, जबरदस्ती से शामिल करने में वो फिर ग्रुप टूट जाता है। तो स्वयं सहायता समूह बना करके उसके बाद ही आप अपना काम शुरू करें, प्रशिक्षण लें और अपना काम को आगे बढ़ाएं, तभी वो कुटीर उद्योग वाली जो
1: भावना है
2: वो पूरी तभी हो पाएगी।
1: जी मैडम, कुटीर उद्योग करके हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर तो बन सकती हैं, लेकिन हम आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ पैसा भी लगाना होगा, तो पैसे के लिए उनको कहाँ से व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि सभी महिलाओं के पास पैसे नहीं हो पाते हैं।
2: देखिए, जब हमने ग्रामीण महिलाओं की बात, एक तो महिलाओं के पास वैसे ही पैसा नहीं होता है, ऊपर से ग्रामीण महिलाओं में तो और मुश्किल होती है, उनके पास पैसा नहीं होता, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि स्वयं सहायता समूह बना करके किसी भी कुटीर उद्योग की शुरुआत करें, क्योंकि हमारे सरकार ने ये एक नियम बनाया हुआ है कि 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को लोन दिया जाता है, उसी ग्रुप को लोन दिया जाएगा जिसमें की 51% भागीदारी महिलाओं की होगी। ये अगर आप कंडीशन पूरी होती है तो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये जो है 10 लाख तक का लोन जो है महिलाओं को देती है, जो कि छोटा अपना कुटीर उद्योग शुरू करे, छोटा बिजनेस शुरू कर सके। स्टैंड अप इंडिया मिशन है, इसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है, ये थोड़े से ज्यादा बड़ा उद्योग कर सके इसलिए होता है। इसके अलावा द्रोण दीदी योजना है, ये द्रोण दीदी योजना उन महिलाओं के लिए है जो कि कृषि में अपना योगदान देना चाहती हैं, वहां पर अपना उद्योग लगाना चाहती है। द्रोण से आपको पता है बहुत सारे काम होते हैं, तो ये द्रोण दीदी योजना है, और ये स्वयं सहायता समूह को ही दिया जाता है, किसी भी एक महिला को नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा महिला कॉयर योजना है, ये उन महिलाओं को दिया जाता है जो घास होती है उससे उसको स्पिन करके बुन करके रस्सी बना सके, तो ये जो है मेनली मुख्य रूप से जो है गांव की महिलाओं को दिया जाता है, और इसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है, 75% सब्सिडी भी दी जाती है
1: जी।
2: इसके अलावा है मुद्रा योजना जो है, उसमें महिलाओं के लिए मैंने बताया आपको, उसमें इन्होंने क्या कर रखा है, अलग अलग स्तर के जो उद्योग होते हैं उनके लिए है, जैसे पहले शिशु स्तर का है, इसमें 50,000 तक लोन दिया जाता है जो नया काम कर रहे हैं उनके लिए
1: जी।
2: उसके बाद है किशोर, ये जो हमारा उद्योग स्थापित हो गया है उन लोग को ये दिया जाता है, ये 5 लाख तक का लोन होता है
1: जी।
2: इसके बाद तरुण है, वो दिया जाता है जब आपका उद्योग स्थापित हो गया और आपको आगे बढ़ाना है, तब उसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है
1: जी।
2: तो ये हमारे सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही महिलाओं के लिए, महिलाओं को थोड़ा जागरूक होकर के इन योजनाओं का फायदा जरूर उठाना चाहिए।
1: हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कई सारी योजनाएं बताई जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है महिलाओं के उत्थान के लिए, लेकिन जब कभी हमारी महिलाएं बैंक संपर्क करती हैं लोन लेने के लिए, तो कौन कौन से उनको दस्तावेज देने होंगे और क्या उनको आसानी से लोन प्राप्त हो जाएगा?
2: देखिए, मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप स्वयं सहायता समूह बना करके आगे बढ़ते हैं तो उनका अपना एक प्रोसीजर है, एक तरीका है जिसके हिसाब से वो लोन देते हैं कि कुछ 1 साल 1.5 साल तक वो जो उनकी बचत है। देखिए, स्वयं सहायता समूह के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, शुरुआत में मैंने बताया भी कि जो एक से विचार वाली महिलाएं हैं वो स्वेच्छा से ग्रुप बना सकती हैं, 10 से 15 महिलाएं, और उसमें हर महीने आपने पैसे जमा करने हैं, वो निर्भर करता है आपकी क्षमता पे कि 50 रुपए या 100 रुपए कितना इकट्ठा कर सकते हैं। फिर उस ग्रुप को आपको पूरा 1.5 साल चलाना पड़ता है, उस ग्रुप में एक अध्यक्ष होगा, एक कोषाध्यक्ष होगा और एक सचिव होगा, और उसकी हर महीने मीटिंग होती है और उस मीटिंग का रजिस्टर पूरा बना पड़ता है कि मीटिंग में मतलब पूरा उसमें हिसाब भी होगा और मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या डिस्कशन हुए वो भी होगा। साथ ही ये ग्रुप की महिलाएं आपस में भी उससे ग्रुप से ही लोन ले सकती हैं। यहाँ पर जो लोन होगा वो बहुत कम ब्याज के साथ होगा, आपस में लोन भी ले सकती हैं। जब इनके 1.5 से 2 साल पूरा हो जाता है तो इनको जो बैंक है इनका, जो जिस गाँव में भी है उस गाँव का बैंक इनको RC देता है। उसके बाद ये अपना एक प्रोजेक्ट बना करके कोई परियोजना बनाए कि हम ये उद्योग शुरू करना चाहते हैं
1: जी।
2: वो पूरा ये अपना जमा करेंगे तो उसके बाद इनको लोन मिलता है।
1: तो इस तरीके से हमारी जो महिलाएं हैं वो बैंक से लोन भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जब समूह का खाता बैंक में चलता है तो वो देखते हैं खाता बढ़िया चल रहा है, तो वो उनको लोन देने में भी आसानी रहती है, क्योंकि उनको भी भरोसा होता है कि हाँ ये पैसा वापस दे देंगे। तो उस तरीके से उनको लोन मिल जाता है और हमारी महिलाएं गांव में रह के ही अपना काम कर सकती हैं और छोटे स्तर से अगर काम शुरू करेंगी तो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और अच्छी आमदनी उनको प्राप्त हो सकती है। अंत में मैडम आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि हमारी महिलाएं जो काम शुरू करें तो क्या क्या सावधानी रखें जिससे कि उनको दिक्कत ना हो?
2: बिल्कुल, मैंने पहले भी ये बात कही कि आपके पास प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है
1: जी।
2: पहली चीज तो जरूरी कि आपके पास प्रशिक्षण हो, जो भी काम जो भी परियोजना आप बना के ले जाएं आपको प्रशिक्षित होना जरूरी है। दूसरी चीज, आप जो भी परियोजना बनाएं उसमें इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी जो आपके लोकल में चीजें उपलब्ध हैं, कच्चा माल जो उपलब्ध है उसी का इस्तेमाल करें
1: जी।
2: और ऐसा उत्पाद बनाएं जो कि आपके लोकल में ही आप उसे बेच सकें
1: जी।
2: क्योंकि इससे आपका जो उत्पाद की कीमत है वो जो है उत्पाद जो भी बनाया आपने उसका आपको मूल्य मिल सकेगा
1: जी।
2: तीसरी चीज ये है कि आप जब भी कोई भी उद्योग शुरू करें तो बहुत बड़े स्केल पर ना शुरू करें, छोटे स्केल पर शुरू करें और उस आपको पता चलेगा कि आपने सही उद्योग करा है कि नहीं करा है
1: जी।
2: लास्ट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसे कहाँ बेचना है। ये ना हो कि बेचने की दूरी आपकी बढ़ जाए तो उससे आपकी जो उत्पाद है उसका मूल्य बढ़ जाएगा
1: जी
2: और उसको फिर उसका खरीदार नहीं मिलेगा। और एक लास्ट में बताना चाहूंगी मैं कि जो भी आप उत्पाद बनाएं उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी करें, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि आजकल सुंदरता और सजावट देखते हैं
1: जी।
2: तो अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी होगी तो आपका उत्पाद बिकना आसान होगा।
1: मैडम आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारी ग्रामीण महिलाओं के लिए दी जिससे कि वो कुटीर उद्योग अपनाकर अच्छी आमदनी कर सकती हैं। आप कार्यक्रम में आई और महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मीना बहन देखो अभी हमारे किसान साथी ने जो भेंटवार्ता सुनी, कुटीर उद्योग अपना कर महिलाएं बने आत्मनिर्भर, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी जा रही डॉक्टर सुनीता पंत के द्वारा और आपसे बातचीत कर जानकारी करा रहे हमारे भैया प्रवीण। और हम अब बता दें अपने किसान साथियों के लिए कि हमारे कार्यक्रम में कुछ बदलाव करे गए हैं। बदलाव जो करे गए हैं वो प्रत्येक महीना के प्रथम बुधवार को सफल कृषक से करी गई भेंटवार्ता सुनवाएंगे, दूसरे बुधवार को सफल महिला कृषक से करी गई भेंटवार्ता सुनवाएंगे और तीसरे बुधवार को मासिक कृषि गोष्ठी को आयोजन करो जाएगा और चौथे बुधवार को सफल कृषि स्टार्टअप सुनवाओ जाएगा।
3: और भैया इसी प्रकार से गुरुवार के लिए आकाशवाणी गाँव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष और दूसरे गुरुवार को कृषि पत्रिका खेत खलियान और तीसरे गुरुवार के लिए आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष और इसी प्रकार से चौथे गुरुवार को कृषि पत्रिका खेत खलियान।
0: और शुक्रवार की बात करें तो प्रथम शुक्रवार को लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा और दूसरे शुक्रवार को कृषि शंका समाधान समस्या व उनसे जुड़े समाधान होंगे और इसी प्रकार से तीसरे शुक्रवार को लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों पर कार्यक्रम होगा और चौथे शुक्रवार को कृषि शंका समाधान। तो जो तो ही कुछ बदलाव की जानकारी और जामा अगर हमारे किसान साथी भाग लेना चाह रहे हैं तो मोबाइल नंबर लिख लें 0595-23-24-326। जाके अलावा व्हाट्सएप या फिर SMS करना चाह रहे हैं तो नंबर नोट कर लें 9410087876। जाके अलावा हमारे जो किसान साथी ईमेल हमें भेजना चाह रहे हैं वो पत्र मिला AIR@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स या फिर यूट्यूब पर आकाशवाणी रामपुर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
3: और भैया हमारे पत्राचार हेतु हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर उत्तर प्रदेश पिन 244901।
0: और मीना बहन अब कृषि संकेत में का?
3: हाँ भैया कृषि संकेत में हम भैया सब्जी वाली फसलों की देखभाल पर बातचीत करेंगे। भैया जैसे जसविंदर भैया इस समय खेतों में कई तरह की सब्जी वाली फसलें लगी हुई हैं।
0: बिल्कुल,
3: कहीं लौकी तोरई भिंडी और खीरा बढ़ रहे हैं तो कहीं टमाटर मिर्च और बैंगन की फसल खेतों में हरियाली फैला रही है। ऐसे समय में फसलों की सही देखभाल बहुत जरूरी है भैया।
0: बिल्कुल मीना बहन, अगर समय पर सिंचाई निराई गुड़ाई और कीट जो रोग हैं उन पर अगर ध्यान दे दो जाए ना तो किसान भाई अच्छी पैदावार के साथ बढ़िया आमदनी भी ले सकते हैं।
3: हाँ भैया, और आजकल मौसम कभी गर्म तो कभी भैया उमस वाला हो रहा है। ऐसे मौसम में सब्जियों की फसल में घास फूस भी तेजी से बढ़ती है, इसीलिए किसान भाइयों को खेत की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए भैया।
0: मीना बहन, खेत में ज्यादा खरपतवार रहने से भी पौधन को पूरा पोषण न मिल पाता है।
3: हाँ,
0: आपने देखी हुई जो हम खाद या फिर जो भी न्यूट्रिशन देते हैं अपने फसलों के लिए वे सब खरपतवार ले लेते हैं, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए जिससे मिट्टी भी भुरभुरी बनी रहती है और पौधे भी तेजी से बढ़ते हैं।
3: भैया एक जरूरी बात और है, जो सब्जी वाली फसलें हैं ना भैया, उनमें पानी जरूरत के हिसाब से देना चाहिए। ज्यादा पानी देने से जड़ सड़ने का डर रहता है और कम पानी से पौधे कमजोर हो जाते हैं भैया।
0: बिल्कुल, खासकर जो बेल वाली फसलें हैं ना, जैसे लौकी, करेला और तोरई, इनमें अगर नमी बनी रहती है ना तो ये अच्छे से बढ़वार भी करते हैं और जल्दी इन पर फलत आती है। लेकिन खेत में पानी खड़ो न रहना चाहिए, अगर खेत में पानी जो है वो ज्यादा लग जाए ना तो उनकी जड़ें खराब ही जाएं। और एक चीज को और किसान साथी ध्यान रखें कि जो सिंचाई है वो सुबह के या फिर समय के शाम के समय करें तो वो बहुत अच्छा रहता है।
3: हाँ जसविंदर भैया, इस समय कई फसलों में कीट और रोग का हमला भी तेजी से देखने को मिल रहा हो भैया, जैसे पत्तियों का मुड़ना, पीला पड़ना या फल में छेद होना भैया।
0: ऐसी स्थिति में खेत को रोज हमारे जो किसान साथी हैं वो निरीक्षण करते हैं और अगर शुरुआत में ही रोग या कीट दिख जाए तो नुकसान कम होता है। लेकिन जो पीले चिपचिपे ट्रैप भी खेत में लगाए जा सकते हैं जिनसे जो उड़न वाले कीट है ना उनको नियंत्रण करो जा सकता है।
3: और दवा का प्रयोग हमेशा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए। कई किसान भाई जल्दी जल्दी दवा बदल देते हैं या मात्रा ज़्यादा कर देते हैं जिससे फसल को नुकसान हो सकता है भैया।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने मीना बहन। आपने साथ ही साथ जो गोबर की सड़ी खाद है ना या फिर जैविक खाद बाको इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए हमारे किसान साथियों को, क्योंकि इसमें जो है मिट्टी की ताकत बनी रहती है और जो हमारी फसलें हैं उनसे भी हमें अच्छा उत्पादन मिलता है।
3: हाँ
0: और मीना बहन देखो, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन और हमारे पास कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा समय ना है, लेकिन चलत चलत हम बता दें कि कल के कार्यक्रम में काका।
3: हाँ भैया, भैया कल के कार्यक्रम में जैसे चर्चा रहेगी खेती के साथ पशुपालन और विश्व चाय दिवस और आकाशवाणी गाँव ग्राम पंचायत संकलन विशेष कार्यक्रम ब्लॉक शेरगढ़ से और लोकगीत होएगा भैया एक और कृषि संकेत में फसलों में कीट प्रबंधन मौसम की जानकारी होगी।
0: बिल्कुल, जो तो है कल के मौसम में कल के कार्यक्रम में काका और हम अब बता दें कि मौसम की जानकारी में का तो कल अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। साथ ही मौसम साफ और जो हवा की दिशा है वो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा की गति रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और बात करें हम वायुमंडलीय आर्द्रता की तो 26% रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मीना बहन, जो तो हो हमारो आज को कार्यक्रम कैसो लगो हमारे किसान साथी हमें लिखना ना भूलें।
3: हाँ
0: और वैसे तो आपने पत्र लिखने के लिए हमारे किसान साथियों को पतो बता दो, लेकिन हाँ एक बार हम फिर बता दें अपने किसान साथियों के लिए कि हमारे कार्यक्रम में अगर वे पत्र डालना चाह रहे हैं तो हमारे कार्यक्रम को पतो लिख लें। हमारे कार्यक्रम को पतो है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 244901। और देखो दीपा बहन, मीना बहन,
3: हाँ भैया
0: बातें तो हम बहुत सारी करना चाहते हैं लेकिन अब कार्यक्रम में बिल्कुल समय ना है कि अपने किसान साथियों से और ज्यादा बातचीत करी जाए। तो कार्यक्रम के अंत में अपने भैया जसमिंदर
3: और अपनी बहन मीना को दो अनुमति।
0: राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7 बजे हैं। प्रस्तुत है फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
1: फोकस नेत्रालय जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय राजेंद्र नगर निकट डेलापीर तालाब बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 90 68 80 50 50।
2: जान है तो जहान है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र कुमार मिश्र का सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, आंखें क्या हैं? सिर्फ दो कंचे नहीं, ये दो रब का लिखा हुआ वो खत है जिसे हर कोई पढ़ तो लेता है पर समझ कुछ ही पाते हैं। आंखों ने देखे हैं मेले, आंखों ने देखे हैं झमेले, आंखों ने देखा बचपन का आंगन।

0: दोस्तों, मित्रों, बहनों, भाइयों, आज फिर है मेहमान डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल, फोकस नेत्रालय डेलापीर बरेली से।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कनुप्रिया। चलिए एक क्विक आई टेस्ट करते हैं, कुछ सवाल ताकि आपको अपनी आंखों की सेहत के बारे में पता चले। क्या आपकी आंखें जलती हैं? क्या मोबाइल देखते वक्त सर में दर्द होता है? रात को आंखें बहुत सूखी और खड़कन जैसी महसूस करती हैं? या बच्चे दिन भर आँख स्क्रीन्स पर लगे रहते हैं? अगर ऐसा कुछ आपके साथ में है तो आज का शो स्पेशली आपके लिए है।
0: जी डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता ये बातें आपकी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं।
1: फ़ोन की बैटरी अगर 20% रह गई है तो हम लोग चार्जर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन आंखें 2% भी बची होती है तो भी कंटिन्यूसली काम करती रहती है। आंखें हमारी हमेशा काम करती हैं जैसे ही हम सोकर उठते हैं, लेकिन क्या हम अपनी आंखों का उतना ध्यान रख पाते हैं जितना आंखें हमें हमारी दुनिया दिखा रही हैं? एक सही सच्चा सवाल आप सबके लिए।
0: जी डॉक्टर साहब, वो सवाल कौन सा है हमारे श्रोताओं के लिए जो बहुत ही फायदेमंद होगा?
1: फ़ोन ओवरहीट हो जाएगा तो वार्निंग देगा, लेकिन जब आंखें ओवरलोड हो जाएंगी तो क्या जवाब देती हैं? तब वो जवाब देती हैं हाँ दोस्तों, आंखों में जलन होती है, आंखों में लाली आती है, आंखों से पानी आता है, सर में दर्द होता है और आंखों की रोशनी भी धुंधली होती है। और इस समर वेकेशन में हमारी आंखें सब कुछ ये काम कर रही हैं, धूप में भी जल रही हैं और स्क्रीन्स भी है।
0: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं अपने श्रोताओं की तरफ से। गर्मियों में अपनी आंखों की कैसे देखभाल करें ताकि हमारी आंखें सुरक्षित रहें, चमकती रहें, अच्छी दिखाई देती रहें और रोशनी भी सही रहे, अपनों को पहचान भी सकें?
1: आज हम बात करेंगे कि इन गर्मियों में अपनी आंखों को कैसे बचा कर रखें। समर वेकेशंस ऑफिशियली स्टार्ट हो गई हैं और बच्चों का डेली रूटीन कुछ ऐसा है कि रात में टीवी, दिन में कार्टून, दोपहर में गेम खेलना कंप्यूटर पे और बीच बीच में स्विमिंग पूल। इस पूरी वेकेशन में सबसे ज़्यादा वर्कलोड कहाँ पर है? और हमारी आंखें भी अब पूछ रही हैं कि क्या ये छुट्टियाँ हमारे लिए भी हैं या ये छुट्टियाँ हमारे शरीर के लिए ही हैं सिर्फ? तो दोस्तों, इन गर्मियों की छुट्टियों में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमें आँखों की सुरक्षा कैसे रखनी है। छुट्टियों में जब भी बाहर निकलें तो ध्यान रहे कि टोपी तो हो, साथ में उसके एक डार्क गॉगल्स भी हो। ये डार्क गॉगल्स सिर्फ काला चश्मा ही नहीं, रंग कोई सा भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो काला ही हो, लेकिन उसमें यूवी फिल्टर लगा हुआ होना चाहिए। ये यूवी फिल्टर ग्लासेस हमारी आंखों को सही मायने में प्रोटेक्ट करती हैं। यूवी फिल्टर से हमारी आंखों में अनचाहे सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं और हमारी आंखें सुरक्षित रहती हैं। यूवी फिल्टर पहुंचने से हमारी आंखों में नाखूने होने की परेशानी, जल्दी मोतियाबिंद बनने की परेशानी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन होने की परेशानी और सबसे ज़्यादा आँख में सूखापन होने की परेशानी पनपने लगती है। ऐसा ना हो इसलिए ज़रूरी है कि हम यूवी फिल्टर ग्लासेस का हमेशा इस्तेमाल करें जब भी हम बाहर निकलें।
0: डॉक्टर साहब, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे स्विमिंग पूल भी जाएंगे, नहाएंगे भी, गर्मियों का आनंद भी लेंगे, तो आँखों को कैसे सुरक्षित रखें?
1: स्विमिंग पूल में भी बच्चे बिना गॉगल्स के स्विमिंग ना करें इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि क्लोरीन का पानी हमारी आँखों को नुकसान देता है, आँखों में जलन और लाली करने के साथ साथ आँखों में सूखापन करता है। तो इसलिए स्विमिंग पूल के वक्त भी गॉगल्स पहनना बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें जो हमें अपनी आँख की सुरक्षा के लिए ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम स्क्रीन पे हों।
0: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, आप जो कुछ बातें बताती हैं ना, हमारे श्रोता बड़े ध्यान से सुनते हैं।
1: सबसे पहले 20-20-20 रूल का हमेशा इस्तेमाल करें, यानी कि हर 20 मिनट के स्क्रीन टाइम के बाद 20 फुट दूर देखना है, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड के लिए। बीच बीच में पलकों को झपकाते रहें, इससे हमारी आंखों में सूखापन भी कम होगा और हमारी आंखों में अच्छा भी रहेगा। हमें कभी भी स्क्रीन को अंधेरे में नहीं देखना चाहिए, इसलिए रात को लाइट बंद करने के बाद स्क्रीन्स को ना देखें, हमेशा लाइट में ही स्क्रीन्स का इस्तेमाल करें। ब्राइटनेस को एडजस्ट करके रखें ताकि आंख पे जोर ना पड़े।
0: डॉक्टर साहब, और कुछ सावधानियां बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जो मोबाइल का डिस्टेंस है उसको आंखों से कम 25-26 इंच की दूरी पर रखें और इससे हमारी आंखों में थकान नहीं होगी।
0: जल ही जीवन है, जीवन ही जल है, तो पानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे श्रोता पानी पिए, आंखों में नमी बनी रहे?
1: ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि हमारी आंखों के ऊपर जो परत होती है आंसू की वो हेल्दी रहे। 7 से 8 घंटे की स्लीप लें ताकि हमारी आँख पूरे दिन भर की थकान के बाद रेस्ट कर सके। आँखों को कभी भी मसलना नहीं है, इससे एलर्जी इरिटेशन बढ़ सकती है, आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है, एस्टिगमेटिज्म बच्चों में बनता है, और सन गॉगल्स का प्रयोग हमेशा करना है।
0: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, आंखों के चेकअप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, जो हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं, आंखों का चेकअप कब कराएं? जी,
1: अपनी आंखों का साल में एक बार रेगुलर चेकअप कराने से कोई भी बीमारी जो होने वाली है उसको पता पहले से ही लगकर इलाज पहले से ही संभव है। लू चलने लगी है और बहुत तेज हवा भी चल रही है, और लू और हवा के चलते ही मेरे पास आज एक छोटी सी बच्ची आई जिसकी आंख में एक भुनके का पंख चला गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी आंख में एक हड़कन होने लगती है, हम कह नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं, लेकिन छोटी सी भी आंख की परेशानी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। गर्मियों में ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर आंख में समस्या होती है तो हम फौरन ही फौरन आके अस्पताल में दिखाएं और अपने तरफ से उस तिनके को निकालने की कभी कोशिश ना करें, क्योंकि यार मसले नहीं आँख को मसलने से या फिर उस तिनके को खुद से निकालने से आँखों में अब्रेशंस हो सकते हैं और आँख में जख्म बन सकता है। दूसरा, इस गर्मियों में आँख में बहुत पसीना आता है और पसीना कई बारी आँख में भी चला जाता है। ऐसी स्थिति में आँख में खड़कन होती है, कभी भी ऐसा हो तो फौरन आँखों को स्वच्छ पानी से धो लें और अपने चेहरे को पोंछ लें।
0: डॉक्टर साहब, आपने 20-20 रूल के बारे में बताया, पानी में बच्चे नहाएं तो सावधानी क्या बरतें, गर्मियों में पानी ज़्यादा पिए, मोबाइल कितनी दूरी से देखें। डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, अब आप ये बताइए, आंखें लाल हो जाती हैं इन दिनों गर्मियों में और आंखें आ भी जाती हैं जो बहुत दुखती हैं, करकती भी रहती हैं, तो ऐसे में
1: गर्मियों में आँख भी आ जाती है और ऐसी स्थिति में कभी भी ओवर द काउंटर यानी कि किसी भी दुकान पे जाके कोई सी भी ड्रॉप नहीं लेनी है, क्योंकि इन दवाइयों से हमारी आँख जो आई है कई बारी ठीक होने की बजाय बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। छोटी सी ही लापरवाहियाँ ही बहुत बड़े नुकसान को अंजाम देती हैं, तो अपनी आँखों की सुरक्षा रखें।
0: डॉक्टर साहिबा, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि इन दिनों गर्मियों में पहले टंकी में गर्म पानी आता है, फिर थोड़ा ठंडा आता है, फिर गर्म आता है, मतलब इस दौरान आँखों को किस तरह से धोएं, ठंडे पानी से धोएं या गर्म पानी से धोएं, कितनी बार धोएं?
1: अच्छा, अब एक सवाल रविंद्र जी आपने बहुत बढ़िया किया कि आँखों को किस तरीके के पानी से और कैसे धोना चाहिए। तो आँखों को कभी भी ना तो गर्म ना ही बहुत ठंडे पानी से, जैसे कि हम इतनी गर्मियाँ हो गई हैं, हम टंकी खोलते हैं फौरन ही टंकी में बहुत गर्म आता है, थोड़ी देर के बाद नॉर्मल पानी आने लगता है और फिर आता है ठंडा पानी। तो ना तो हमें गर्म पानी आँखों में डालना है और ना ही बहुत ठंडे पानी को आँखों में डालना है। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे स्वच्छ पानी, जो कि बिल्कुल साफ पानी हो, फिल्टर्ड वाटर हो, वैसे उस पानी का इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी आँखों को साफ करना चाहिए। आँखों को दिन भर में मात्र एक बार ही साफ करना चाहिए। बार बार आँखों को साफ करने से भी हमारे आंसू की परत खराब होती है, तो दिन में एक बार स्वच्छ नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से हमको अपनी आँखों को धोना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, आपने मोबाइल की बात की न देखें, लेकिन आकाशवाणी से गाने तो सुन सकते हैं जी, बताइए।
3: बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है आपका ये, और बिल्कुल ही हम जो है यही चाहेंगे कि हम अपने कानों का ज्यादा प्रयोग करें। आंखें तो जैसे ही खुलती हैं वैसे ही देखना शुरू कर देती हैं और अपना काम शुरू कर देती हैं। आंखों का भी हमें खूब अच्छे से ध्यान रखना है, और उसी के साथ साथ अपने कानों को भी आपको इस्तेमाल करते हुए

0: खूब आकाशवाणी सुननी है।
1: ये आंखें जब हंसती हैं तो सावन बरस जाता है, ये आंखें जब रोती हैं तो पत्थर भी पिघल जाता है। कभी आंखें बन जाती हैं दर्पण, दिल का हर एक कोना दिखा देती हैं, बूढ़ी आंखों में यादें बसती हैं।

0: और अब आज का ये कार्यक्रम जान है तो जहान है यहीं पर समाप्त होता है। रविंद्र मिश्रा को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार।
1: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।

अभी आप सुन रहे थे फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी देर यानी 7:31 पर सुनिए सुगम संगीत। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे राहत फतेह अली खां की कुछ गज़लें, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल आप सुनेंगे आज रात 8 बजे, कार्यक्रम रूपक आप सुनेंगे आज रात 10 बजे, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे कल सुबह 6:05 पर।

कल सुबह 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज का चिंतन। विषय है अंतःकरण। स्वास्थ्य संदेश आप सुनेंगे कल सुबह 6:35 पर। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विशेष कुमार। विषय है बदलती जीवन शैली और नींद की समस्या। कल सुबह 6:45 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान की भाग संख्या 304। कलाकार हैं रविंद्र साठे, कविता कृष्ण मूर्ति और संगीत सतीश भाटिया का है। समय याद रखिए कल सुबह 6:45 पर। लोकरंग में आप सुनेंगे मुस्कान अलवी के गाए कुछ लोकगीत। समय रहेगा कल सुबह 7:00। फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे आप सुनेंगे कल सुबह 7:31 पर। इसमें आप सुनेंगे राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के बारे में, 102.9 मॉर्निंग हिट्स। फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 8:45 पर। कल सुबह 9:25 पर सुनिए कार्यक्रम गौरव भारत देश के। उर्दू प्रोग्राम आप सुनेंगे कल सुबह 9:30 पर। इसमें मुबाहिसा करेंगे नासिर हुसैन, हिलाल अकबर, रईस अहमद। विषय है गवाह हर दौर का रेडियो। प्रस्तुति मारिया खुशनूत की है। अनुरोध गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप सुनेंगे कल सुबह 10:00। और कल सुबह 10:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये थी आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:18 हुए हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश, अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक, गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल, परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन, 22 मई से शुरू होगी मकानों की गिनती। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जनपद रहा, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए लू चलने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसी क्रम में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के सभी मंडलीय, जिला, संयुक्त शहरी और ग्रामीण चिकित्सा स्थानों में गर्मी से पीड़ितों को समुचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, जीवन रक्षक दवाओं और आवश्यक औषधियों का पर्याप्त भंडार रखने के निर्देश दिए हैं। तेज गर्मी से वन्य जीवों को बचाने के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इटावा सफारी पार्क के उपनिदेशक विनय सिंह ने बताया कि सफारी में शेरों के लिए एसी और खस की चटाई का प्रबंध किया गया है।
4: सफारी पार्क में जो भी वन्य जीव हैं उनको गर्मी और लू से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं ताकि कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। जो भी ब्रीडिंग वाली शेरनी है उसके नवजात बच्चे रहते हैं, शावक रहते हैं साथ में, उनको एसी के माध्यम से उनके कमरे का तापमान मेंटेन किया जाता है।
3: गर्मी और लू से बचाव के लिए विभिन्न जनपदों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। फतेहपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं मिर्जापुर में भी 15 जून तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कानपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को 31 मई तक बंद रखने का आदेश दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में आगामी नीट यूजी 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री प्रधान ने परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। श्री प्रधान ने ऐसे नेटवर्कों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जिसमें फर्जी जानकारी फैलाने वाले चैनलों की सक्रिय पहचान, उन्हें ब्लॉक करना और हटाना शामिल है। शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि गलत सूचना पर तुरंत रोक लगाई जा सके और परीक्षा प्रणाली की अखंडता की रक्षा की जा सके। प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा कल 44 जिलों के 861 केंद्रों पर होगी। करीब 8,000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 3,66,700 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिन जिलों में सर्वाधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएं और होल्डिंग एरिया बनाए जाएं। उन्होंने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के साथ ही लोकल इंटेलिजेंस को भी सक्रिय रखने के निर्देश दिए। गर्मी के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर विद्युत आपूर्ति, पीने का पानी की व्यवस्था के अलावा नजदीकी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। परीक्षा की जिला और राज्य स्तर के कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जाएगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
3: परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच दो स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है, जो 21 मई की रात 12:30 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और सुबह 6:40 पर लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में लखनऊ गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन शाम 6:15 बजे लखनऊ से चलकर रात 11:55 पर गोरखपुर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर, प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क में छूट जैसे विषयों की समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एक रिपोर्ट।
6: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए, उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन है। राज्य के जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि नागरिकों को स्वगणना के लिए census.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य को चुनना होगा और फिर परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए लॉगिन कर जानकारी भरनी होगी। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि गणना पर 11 अंकों का एक कोड प्राप्त होगा, जिसे प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। उन्होंने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र चौधरी ने आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के तौर पर कामकाज संभाल लिया है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त हो।
7: और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से एमएसएमई विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाएं, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे।
3: प्रयागराज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने को नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद प्रयागराज जेवर फ्लाइट की समय सारणी जारी की जाएगी। नई उड़ान सेवा शुरू होने से प्रयागराज से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी।
8: प्रयागराज एयरपोर्ट के ऊपर एक हफ्ते में 60 फ्लाइटों का आना जाना है और अभी ये जो जेवर एयरपोर्ट जून से शुरू हो रहा है, इसमें अभी जैसे ही ये थोड़ा अभी तो कुछ कम फ्लाइटों से वहां से आना जाना शुरू होगा। इंडिगो की एक फ्लाइट शेड्यूल्ड है जो कि जेवर से प्रयागराज और प्रयागराज से जेवर जाएगी, क्योंकि अभी उसका पूर्णता है वो नहीं हुआ, शुरुआत नहीं हुई। जैसे ही वो जैसे जैसे फ्लाइट की संख्या वहां बढ़ती जाएगी तो हमारे यहाँ भी एक फ्लाइट आने का समर शेड्यूल में प्रोग्राम है।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक। गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा। 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन। 22 मई से शुरू होंगी मकानों की गिनती। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
9: मिडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे राहत फतेह अली खां और हरिहरन की कुछ गजलें।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के अंतर्गत फराहत फतेह अली खां और हरिहरन की गाई कुछ गजलें। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं, 8 बजे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

गीत गाता चल के सभी श्रोताओं को शाजिया परवीन का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म अलग अलग से, फरमाइश आप सबकी। गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती ऊषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबीहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। जिला मुरादाबाद बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मुन्नी, पवित्रा, अजय, आंचल, विक्की, आकांक्षा, आकाश सैनी, दक्ष, छवि, आराध्या सैनी, खमानी सैनी मझोली से और हीरावती देवी और सभी सैनी परिवार। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुनील पोहरकार, साहिल पोहरकार, अंश पोहरकार, कुमारी सुजाता पोहरकार। बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर किशोर कुमार की आवाज़ में गाया ये गीत।

उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर पोस्ट लपरी ग्राम मुंडेला से कुमारी चंदा, कुमारी चांदनी, आकाश कुमार, कन्हैया लाल और रीता देवी। रायद्वारा रोड मीठे कुएं रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, फिरासत, अर्पित रस्तोगी, अभय, रिया, आरुष। पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे। सरगुजा मेन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन, सरफुद्दीन, वली। जेल रोड मथुरा से वसीम, अकरम। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साइदा रानी और हिना कौसर। लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिबा कौर। बुलंदशहर से बद्रुवली, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से परवीन आसमा और बलीउल्ला। मालेगांव से दत्ता घायल, सुनीता बाई घायल, सानिका घायल और गजानन घायल। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। पोफाली जिला यवतमाल से जय राम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर मुकेश की आवाज़ में ये गीत।

गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। राजनांदगांव से याकूब यूसुफ, इमरान और इरफान। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा, सोनम और आदिबा। जरूर वरूड़ महाराष्ट्र से बाबा साहेब बाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी, कानीरे, कार्तिक और युवराज। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, अरमानाज अंसारी और इनकी प्यारी बिटिया सोनम। सारिमपुर बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, फातमा खातून अंसारी और मोहम्मद समी अंसारी। इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी। छटिया पोखरा डुमराव से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी। जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौसर, डॉक्टर इशिता साहनी, डॉक्टर प्रियंका मोदी, डॉक्टर सोनम वली और मोहम्मद अफजाल मलिक। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। चंदन नगर सातारा से सतीश वाघमारे, अतीश वाघमारे, स्वाति वाघमारे, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे और श्रमेण वाघमारे। कोल्हापुर से विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता चौहान, अनिकेत चौहान और माया चौहान। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रयांश ठाकुर। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म हमजोली से ये गीत।

ग्राम हरनगला मंदिर के पास स्वार से नब्बन खां, इब्बन खां, नाजिम खान, सलमान, शाहरुख खान और आरिश खान। कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, फरहान इदरीसी। पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन निशा, असलम हुसैन। डॉक्टर महमूद हसन बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी, साइमा नदीम। बोरखेड़ा विप्रामल ज़िला उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा कुश मूड़त। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली, शैलेश गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर उर्फ परी। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर और टुक टुक। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर, मोहम्मद वकील, राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, दिव्यांश और वंशीलाल श्रीवास्तव। श्री रोगडेश्वर नगर पागरा शिंदे तहसील वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से टेलर रामचंद्र धोंडीबा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिकू इंगोले, रमाबाई सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभी, मंजुषा गौतम इंगोले।

0: नामदेवराव शिंदे पाटील, मास्टर विलास शिंदे पाटील, सुनील जबड़े, अशोकनगर वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके, जीजा माता नगर से लक्ष्मी उत्तम कांबले, तामसा रोड तहसील हदगांव से श्यामराव पटघणे बेबी बिट्टू पटघणे, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका गजभिये बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म आए दिन बहार के से ये गीत।
1: मेरे दिल से

पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी, असद अंसारी, करनाल से सुधीर नूतन संदीप ककलानी, डाबर तालाब लोनी से रज़ा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा, बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सव्वा शेरे, ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, नलेश्वर नगर नरवेल से पी एस नहावकर और विशाल नहावकर, सरोचौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुश्तबा खान, आफिया खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधी पार्क अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, जामरूनता अर्धापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय जोशी, आशीष जोशी, पृथ्वीराज जोशी, साध्वी जोशी, परभणीहून गणेश हरगांवकर, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या भाई, सुच्चा पाठक, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक, सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर प्यार ही प्यार फिल्म से ये गीत।

और अब कार्यक्रम का अगला व अंतिम गीत फरमाइश आप सबकी। दिल्ली से चांदनी चौक, दिल्ली से अनीता, माला, सुनीता, विजय, विनोद, मालेगांव, रामनगर रोड, शांतिनगर, इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, कविता, संजय वाणी, मनीष वाणी, ब्रोनो खर्चे, सेक्टर 67 मोहाली, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, भवाली से संगीता, आशा, प्रिया, अंजलि, विकी, विजय, रानी, परिमहल, कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान, जमीर खान, गांधी समाधि रोड, रामपुर से गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की खान, बुशरा खान, आसिम खान, ज़िला अस्पताल के पास से गज़न खान, शमा परवीन, शमशाद अली, अज़म गुलफ़शा, शहनाज बाबू अंसारी, रज़िया गफ़ार और हबीब अहमद इदरीसी, अफजलपुर पट्टी तहसील सदर ज़िला रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल मिस्त्री, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, कविता और आशु गौतम। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म खिलौना से ये गीत।

इसके साथ ही आज का गीत गाता चल अब संपन्न हुआ। हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतजार। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है, गीत गाता चल, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या 244901। अब शाजिया परवीन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 8:45 हुए हैं। अब दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को

0: और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
0: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक

0: कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिक

0: तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashwani and I am VC Pramod with the News at 9. The headlines. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honour, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
3: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में

0: हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector.
0: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom on navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
1: Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership in areas such as trade, technology, clean energy and culture. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization FAO at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Chu Dongyu. Receiving the award, Mr. Modi dedicated the honor to India's millions of farmers, livestock rearers, fish farmers, agricultural scientists and workers. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्यपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: The Agricola Medal is the highest honor conferred by the Director General of the FAO. It is awarded to distinguished world leaders and individuals for exceptional and long-term contributions to global food security, sustainable agriculture, poverty reduction and improved nutrition. Mr. Modi reached Italy yesterday on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Defense Minister Rajnath Singh has termed Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Interacting with the Indian diaspora of South Korea in Seoul, the Defense Minister said the operation was proof that India will not tolerate terrorism in any form.
3: India's policy today is not reactive but proactive. Personally, I also believe that national security will not be compromised at any cost. With this vision, India is rapidly promoting indigenous defense manufacturing. Before 2014, our total defense production used to be approximately worth 44,000

0: Arjun Chowdhury for Akashvani News.
1: Meanwhile, the growth of the combined index of 8 core industries in the country rose to 1.7% in April this year on an annual basis, up from the revised 1.2% in March. The India Met Department, IMD's, issued a red alert for severe heatwave conditions over parts of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand till tomorrow. Meanwhile, severe heatwave gripped several parts of northern and central India, with the mercury breaching the 45-degree mark. In national capital, an orange alert has been issued for heatwave conditions for the next 3 to 4 days. More from our correspondent.
2: According to the Met Department, the maximum temperature in Delhi is expected to be around 45 to 47 degrees Celsius tomorrow. In the past 24 hours, the maximum temperature in the national capital was recorded at 44.5 degrees Celsius. With increase in the temperature, the Delhi government has mandated a compulsory rest period for all outdoor workers from 1 p.m. to 4 p.m. amid intensifying peak summer temperatures. With Shivang Mishra, Soumya Sharan for Akashvani News, Delhi.
1: In IPL cricket, match between Mumbai Indians and host Kolkata Knight Riders is underway at the iconic Eden Gardens. Mumbai Indians were 57 for 4 in 8 overs when match was halted due to rain. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and elected to field. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas, including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's fastest growing major economy with 6.4% growth this year, despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between host Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at the Eden Gardens. And that's all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खुसूसी जामे शराकतदारी में बदलने से इत्तेफाक किया है। परिकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तावन को फरोग देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। वजीर आजम ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। अक्वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया की जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आइंदा 2 से 3 दिनों में शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल का रेड अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच ईडन गार्डन्स में जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत और इटली ने आज मुख्तलिफ शोबों में 15 माहिदों को हतमी शक्ल दी। इन माहिदों पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद आज रोम में दस्तखत किए गए। ये माहिदे दोतरफा ताल्लुकात की खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने की निशानदेही करते हैं। दोनों फरीकों ने अहम मादनियात, दिफा, ज़िरात, आयुर्वेद, साइंस और टेक्नोलॉजी, बहरी ट्रांसपोर्ट और बंदरगाहों जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने की खातिर कई मफाहमत नामों पर भी दस्तखत किए। भारत और इटली टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तालमेल मजबूत करने पर भी मुत्तफिक हो गए हैं। बातचीत के बाद सहाफती बयान में वजीर आजम मोदी ने कहा कि फरीकैन ने दोतरफा ताल्लुकात को तकवीत देने के लिए

0: बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है, मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनीतिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे, तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन

इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस, श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिदाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या

0: आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो। दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
1: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थवर्ड हम टर्म देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं 2018 में जिसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
3: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश हैं, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था, इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं। पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाए जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
4: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa

0: In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities, where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
1: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर यह बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
2: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
1: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
0: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
1: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
2: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने। और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहां पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
3: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव। वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस। वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। वी विल डिस्कस रेगुलेटरी इश्यूज एंड प्रमोट कॉमन स्टैंडर्ड्स। वी विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सोलर सेक्टर, एनकरेज ज्वाइंट वेंचर्स एंड डेवलप इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स। वी विल पार्टनर विद अदर इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। देयर इज ऑलरेडी अ रिवॉल्यूशन इन सोलर एनर्जी। टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, costs are coming down and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
1: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। COVID-19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
4: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं, तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो, चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होना, दूसरे देशों को ज्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
1: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
2: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है। और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें 100 बिलियन डॉलर भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब यहां पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं, जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
0: आज भारत ने अपने इतिहास का, अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसकी यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
1: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
2: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
0: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
1: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
2: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे, तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सकें, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
3: एक तो हमारा लक्ष्य है 24

0: 47 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे मनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
1: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार यह साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, यह नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
2: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
3: थैंक यू सर।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रूपक। इसमें आज आप सुनेंगे आकाशवाणी आवाज़ों में बसी यादें, वाचन एवं संकलन सुनील सक्सेना का और प्रस्तुति एवं आलेख अवधेश कुमार गौतम की है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। महज तीन शब्दों का ये वाक्य कोई सामान्य उद्घोष नहीं है। ये एक ऐसा नाद है, एक ऐसा एहसास है जिसने भारत की कई पीढ़ियों को उनकी सुबह की पहली चाय की चुस्की से लेकर रात की सुकून भरी नींद तक एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत धागे में प्रूव कर रखा है। जब भी रेडियो के सेट पर यह आवाज़ गूंजी तो देश के किसी सुदूर गांव में बैठा किसान भी इसे दिल की धड़कन को महसूस कर सका। आज जब हम इस माइक्रोफोन के सामने बैठे हैं तो हवाओं में एक खास तरह की महक है। ये महक है यादों की, इतिहास की और 90 वर्ष के ऐतिहासिक सफर की। रेडियो केवल एक यंत्र नहीं बल्कि भावनाओं का वो माध्यम है जिसने वर्षों से लोगों के दिलों को जोड़ने का काम किया है। इसकी मधुर आवाज में अपनापन, संवेदना और आत्मीयता का एक ऐसा जादू होता है जो सीधे मन को छू लेता है। जब भी रेडियो पर कोई गीत बजता है, समाचार सुनाई देते हैं या किसी उद्घोषक की सजीव आवाज कानों में पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो कोई अपना हमसे बात कर रहा है। रेडियो का इतिहास 90 वर्ष पुराना होने जा रहा है और इन ऐतिहासिक वर्षों में हमें बहुत सी ऐसी आवाज़ें सुनने को मिली जो सीधे दिल में उतर गई। इनमें से बहुत सी आवाज़ें अब काल में समा गईं, जिनमें मरहूम मोहम्मद अली मौज, विनोद आनंद दयाल और चंद्रमोहन सक्सेना, अंजलि वाजपेयी। लेकिन अब भी बहुत सी आवाज़ें हमारे साथ हैं, उन्हीं के साथ हम आपके लिए

0: लेकर आए हैं कार्यक्रम आकाशवाणी आवाजों में बसी यादें। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सादगी और अपनापन है। इसमें दिखावे की चमक नहीं होती, फिर भी इनकी आवाज दिलों में गहरी जगह बना देती है। ये रिश्तों को जोड़ता है और भावनाओं को शब्द देता है और यादों को सजोता है। कुछ बीते दौर की यादों के साथ हैं हमारे केंद्र पर रही असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर श्रीमती मनदीप कौर।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के लगभग एक सदी की ऐतिहासिक और गौरवशाली यात्रा से जुड़े अनुभवों और यादों का सिलसिला शुरू करने का सिरा बार बार हाथ से छूट रहा है। 90 साल के दौर में तकरीबन 55-57 साल तो मैं भी जुड़ी रही आकाशवाणी से। 40 साल का आकाशवाणी में मेरा सेवा काल रहा और उससे पहले करीब 12-15 साल में बाल और युवा कलाकार के रूप में आकाशवाणी रामपुर से जुड़ी रही। आप सोचिए कितना मुश्किल है संजोई हुई यादों को, बातों को जहन की गहरी परतों से बाहर लेकर आना। कई केंद्रों पर मैंने काम किया, आकाशवाणी दिल्ली, जालंधर, बरेली, नजीबाबाद, रामपुर। एक बात मैंने कॉमन देखी सभी केंद्रों पर, दिल्ली और जालंधर स्टेशन बहुत बड़े केंद्र हैं, रामपुर मीडियम वीप का सामान्य स्टेशन है, आकाशवाणी बरेली एक लोकल रेडियो स्टेशन है FM बैंड पर। तो हर एक की अलग अलग मूड्स, अलग अलग लेवल के केंद्र रहे हैं, लेकिन एक कॉमन चीज मैंने सब में देखी कि आकाशवाणी के एम्प्लॉयज, आकाशवाणी के ब्रॉडकास्टर्स, कलाकार, बाहर के साहित्यकार और श्रोता, इन सब के बीच का जो रिश्ता है वो एक अजीब गरीब रिश्ता देखा, एक परिवार की तरह देखा। ये देखा ही नहीं कि प्रोफेशनल रिश्ते नहीं, बिल्कुल फैमिली के रिश्ते जैसे होते हैं, उस तरह से सभी एक दूसरे को निभाते थे, एक दूसरे से व्यवहार और करते थे, मिलते थे। शुरुआत मैं बताती हूँ आपको, आकाशवाणी दिल्ली से ही मेरी नौकरी की शुरुआत हुई और उसी शुरुआती दौर में कुछ ही दिनों के बाद मैं ड्यूटी पर थी, ऑफिसर ऑन ड्यूटी थी, एक महिला स्वर आता है कि पास बना दो। तो मैंने ऊपर देखा और कहा नाम, तो वो थोड़ा चौंकी, शायद उनको लगा कि मुझे उनका नाम क्यों नहीं पता, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया इतना ज्यादा चेहरे पर भी। तो उन्होंने कहा अमृता प्रीतम। जैसे ही अमृता प्रीतम कहा, मैं नाम सुनते ही एक तमार पढ़ा के चौंक के खड़ी हो गई और इस शर्मिंदगी के साथ मैंने हाथ जोड़े, माफी मांगी उनसे। तो उन्होंने तुरंत मेरे हाथ पकड़ लिए और कंधे पर हाथ रखा, थपथपाया, बोली कोई बात नहीं, अभी नहीं आई हो, पता नहीं है तुम्हें, कोई बात नहीं। और मुझे बहुत ही जल्दी से उन्होंने शांत कर दिया, सामान्य स्थिति में वो मुझे ले आई। उसके बाद तो फिर वो अक्सर मिलती थी, जब वीडियो आती थी वो प्रोग्राम का पेश करने, एक्चुअली वो एक पंजाबी सेक्शन में रेगुलर प्रोग्राम पेश करने आया करती थी, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। उसके बाद बहुत बार मुलाकात थी, वो हर बात बार उसी आत्मीयता से मिलती थी और मैंने देखा कि वो स्टाफ के सभी लोगों के साथ में इस तरह से पारिवारिक रूप से चाय पी रही है, बातचीत कर रही है, लगता ही नहीं था कहीं से कहीं तक कि इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ पर हमारे बीच में है। ऐसे ही जसवंत सिंह जो कमेंटेटर्स, जिनका एक नाम था, जिनका एक काम था, जिनको रेडियो पर सुनकर लोग ट्रांजिस्टर छोड़ ही नहीं सकते थे उनके कमेंट्री के सामने, वो भी अक्सर हमारे पेक्स कोऑर्डिनेशन थे, RBL माथुर साहब उनके कमरे में बैठा करते थे क्योंकि वो स्पोर्ट्स सेक्शन देखते थे। तो मैं भी अक्सर उनके पास जाती थी, तो कई बार उनसे मुलाकात हुई है, जसवंत सिंह जी से बातचीत भी होती थी, उनको भी मैं देखती थी, लगता ही नहीं था कि कितनी बड़ी शख्सियत है यहाँ पर, किस तरह से आराम से कभी स्टूल पर बैठे मिल जाएंगे, कभी चेयर पर बैठे मिल जाएंगे। ऐसे ही दूसरे केंद्र की अगर बात करूं जालंधर स्टेशन पर, वहां पर भी यही सिलसिला मैंने महसूस किया। वडाली बंधु थे, दिलेर मेहंदी जी, हंसराज हंस जी, सब रेगुलर आया करते थे रिकॉर्डिंग्स के लिए या वैसे फंक्शंस वगैरह अटेंड करने के लिए, तो अक्सर उनसे भी मुलाकात होती थी, मैं देखती थी, चाहे हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हों या हमारे अनाउंसर हों, ऑफिसर्स हों, कोई भी जो भी एम्प्लॉयज थे, सबके साथ में एक साथ मिलना जुलना, एक साथ उठना बैठना। आकाशवाणी रामपुर में भी मैंने ये बात देखी, बड़े बड़े कलाकार उस समय आया करते थे, बड़ी बड़ी कॉन्सर्ट्स म्यूजिक की हुआ करती थी, सिंह बंधु जो कि ध्रुपद गायन के मास्टर थे, वो भी एक बार कॉन्सर्ट में आए थे आकाशवाणी रामपुर के स्टूडियो में, उनकी रिकॉर्डिंग भी हुई। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन जी, फिदा हुसैन नरसी जी, सिद्धेश्वरी देवी जी, ये सब बड़े बड़े फनकार, बड़े बड़े कलाकार आकाशवाणी रामपुर में आया करते थे और बिल्कुल लगता नहीं था कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी

बड़े व्यक्तित्व यहाँ पर हम लोगों के साथ में हैं। ऐसे ही एक बार पंडित जसराज जी केंद्र पर आए, मैं ऑफिसर ऑन ड्यूटी थी। मैंने उनको जैसे आमतौर पर आते हैं कोई हम बिठा देते हैं, उन्होंने कहा श्याम मोहन जी प्रोड्यूसर से मिलना है। मैंने श्याम मोहन जी को बुलवाया, श्याम मोहन जी ने उनके पांव छुए और इतने वो प्रसन्न होकर एकदम गले मिल के उनको हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले गए। बाद में पता लगा कि तो पंडित जसराज थे। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि हमारा व्यवहार एक अधिकारी का व्यवहार नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसे ब्रॉडकास्टर का होना चाहिए जो जानता हो कि हाँ आने वाला शख्स क्या शख्सियत है, कौन शख्सियत है और हमें उसके साथ में किस सम्मान के साथ में बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने अपने जीवन में सीखी यहाँ पर। वो दौर एक कठिन दौर था, शुरुआती दौर, आकाशवाणी का पुराना दौर। उस समय सभी काम मैनुअल मशीनों पे हुआ करते थे, लेकिन जो लगन थी, जो समर्पण था, जो जुनून था, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो ब्रॉडकास्टर हो या वो लिसनर हो, सब में गजब का था। तो जुनून का तो एक मैं किस्सा आपको बताऊं। हमारे साथी थे राजेश जी, तो उस समय रिकॉर्डिंग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी जब आया करते थे तो उनकी रिकॉर्डिंग करने के लिए रेडियो की टीम जाया करती थी। और उस समय ये सिस्टम था कि स्पीच की उनकी रिकॉर्डिंग करके तुरंत ही जो उनकी फर्स्ट लाइन के जो उनके सिक्योरिटी पर्सन थे उनको सौंपी जाती थी। तो जो हमारी आकाशवाणी रामपुर की टीम गई थी, उन्होंने रिकॉर्डिंग की, ठीक ठाक रिकॉर्डिंग हो गई, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद जब वो टेप और स्पूल उसमें से निकाल रहे थे मशीन में, तो वो कहीं टेप उलझ गया और उसमें इतनी देर लग गई कि उनकी स्पीच खत्म हो गई। वो मंच छोड़ के हेलीपैड की तरफ, पूरे उनका जो टीम थी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थी उनके साथ में पूरी टीम हेलीपैड की तरफ चल दी। तो राजेश जी ने जल्दी से उस टेप को उठाया और दोनों, एक स्पूल में आधा टेप था, दूसरे स्पूल में आधा टेप था, ऐसे ही टेप को लेके ऊपर हाथ करते हुए हेलीपैड की तरफ उन्होंने दौड़ लगाई। तो पुलिस कर्मी उनके पीछे भाग रहे राजेश जी को रोकने के लिए कि कहाँ जा रहे हैं ये सिक्योरिटी को तोड़ते हुए, लेकिन राजीव गांधी जी ने उनको हेलीपैड पे दूर से देखा, उन्होंने कि कोई शख्स आ रहा है जो टेप ऊपर से दिखा रहा है। उन्होंने इशारे से पुलिस कर्मियों को रोका और खुद राजेश जी जब तक पास नहीं आ गए और तब तक वो खड़े रहे और अपने आप उन्होंने उनके हाथ से टेप लिया। यानी कि वो उस अहमियत को जानते थे, वो समझ रहे थे कि जरूरी रिकॉर्डिंग है जो मेरे साथ जानी है। तो इस तरह की चुनौतीपूर्ण जो हमने ब्रॉडकास्टर्स को काम करते देखा है जिम्मेदारी के साथ में, वो बहुत ही गजब का टाइम हुआ करता था। बच्चों के प्रोग्राम का भी एक दिलचस्प किस्सा मुझे याद आता है कि जब बच्चों के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हर स्टेशन पे लाइव हुआ करती थी, लाइव प्रोग्राम जाता था, तो तभी आकाशवाणी पटना केंद्र से बच्चों के प्रोग्राम में एक बच्चे ने किसी टॉप लीडर को गलत कुछ शब्द इस्तेमाल कर दिया। और जबकि बच्चों को पहले से सिखाया जाता है, जो बच्चे लाइव में जाने होते हैं, कि आपने क्या सुनना है, कौन सी कविता सुनाएंगे, कौन सी कहानी सुनाएंगे बच्चे, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, वो भोलेपन से लाइव माइक पर वो पहले कुछ और बोल के गए, लेकिन वहां उसने कुछ कविता के भाव में और नारे के भाव में कुछ और बोल दिया। समझ लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया था सभी केंद्रों पर और तत्काल प्रभाव से सभी केंद्रों पर लाइव प्रोग्राम बच्चों का बंद कर दिया गया था, जो आज तक सिलसिला जारी है, आज तक रिकॉर्डेड प्रोग्राम जाता है। इसी तरह से अगर बहुत सारी बातों को मैं याद करती हूँ कभी कभी, तो आकाशवाणी रामपुर में जब हमने काम किया तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट और मेगा प्रोजेक्ट, ये दो ऐसे काम थे जो वास्तव में एक चुनौती थी केंद्र के लिए, लेकिन केंद्र ने बहुत ही तत्परता के साथ और सफलतापूर्वक एक टीम भाव के साथ में काम किया और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में उन मशीनों पर काम किया जो मशीनें आउटडेटेड होने की स्थिति में थी बिल्कुल, जिन पर काम करने का मतलब था कि आधे घंटे का प्रोग्राम दो दो तीन तीन घंटे में बना करता था और तब तक डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था मशीनों का। तो हम लोगों ने उसी दौर में मालूशाही, सुमंगला, लक्ष्मी, प्रश्नचिन्ह, सिमटती बस्तियां, इस तरह के न जाने कितने सीरियल हमने रेडियो धारावाहिक 13-13, 26-26 एपिसोड के बनाए। तो ये जो टीम भाव के साथ में जो काम हुआ करता था वही गजब था। तो उसमें बल्कि एक नया एक्सपेरिमेंट में हमने किया, जब गंगा सीरियल बना रहे थे तो ये था कि हम कैसे करके काम को ऐसे कुछ अंजाम दे कि समय कम लगे, क्योंकि सब हम एग्जॉस्ट हो चुके थे इतना काम करके। तो गंगा सीरियल में हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि हम सारा जितना भी काम है लाइव करेंगे, यानी कि लाइव रिकॉर्डिंग करेंगे, कोई भी चीज़ें पोस्ट प्रोडक्शन नहीं होगा।
तो सारे साउंड इफेक्ट्स

0: वैसे भी उन्होंने जो अपना हमें सहयोग दिया है लेखन क्षेत्र में, बहुत लिखा नफीस साहब ने, और मैंने लिखवाया भी उनसे। इसके साथ साथ वहां पर जो कार्यक्रम अधिकारी थी मनदीप कौर, राम कुमार सक्सेना प्रोडक्शन असिस्टेंट, जबरदस्त सहयोग दिया उन्होंने मुझे। दयाल साहब सक्सेना जी अनाउंसर थे, और बका मियां ट्रांसपोर्ट में थे। मेरे को बहुत सारे लोगों के नाम याद आ रहे हैं, लेकिन चूंकि कम समय में संदेश ज्यादा देना है तो मैं उन सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने मुझे सहयोग दिया, और आगे मतलब बैक सपोर्ट रहा और सामने भी रहा। मेरे लिए एकदम नया केंद्र था रामपुर, इतना प्यार, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी एक ऐसे नए शहर में गई जिसको मैं जानती नहीं। शुक्रिया उन सभी का। और रामपुर में मैंने सच बता रही हूँ बहुत सीखा, क्योंकि मैं एकदम नई नई गई थी। रेडियो में मैंने काम जरूर बहुत किया था, लेकिन एक अधिकारी के रूप में क्या क्या होता है, क्या करना चाहिए, फाइल वर्क, ये सारा मैंने रामपुर से सीखा। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं वहां पर, बच्चों के कार्यक्रम, यूथ कार्यक्रम, म्यूजिक, सभी कुछ कार्यक्रमों में मैंने अपना सहयोग दिया। तो बस इतना कहना चाहूंगी कि वहां से आने के बाद फिर मैं आकाशवाणी लखनऊ में मैंने FM शुरुआत की। वहां पे काफी लोग कहते हैं रमा तुमने झंडे गाड़ दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की कि जो मुझे आता था उसमें मैं लोगों के दिए हुए सहयोग से कुछ अच्छा कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी रामपुर, पूरे आकाशवाणी के सभी स्टाफ को। और इतना कहना चाहूंगी कि ये तो मेरे साथ ही जाएगा, मेरे रग रग में, मेरे खून की एक एक बूंद में आकाशवाणी। आप पूछेंगे कैसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे पिताजी भी आकाशवाणी से संबद्ध थे, तो मैं तो पैदा ही उस परिवार में हूँ जहाँ पर आकाशवाणी होती थी, होती है, होती रहेगी। और तलफ्फुज़ और मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये सब मैंने रेडियो से सीखा। रेडियो ब्लाइंड मीडिया है, देखिए हम जो कुछ भी बोल रहे होते हैं वो सब हमारे सामने एक पिक्चर की तरह आ जाता है। तो मेरा निवेदन उन सारे लोगों से है जो रेडियो में आना चाहते हैं, ड्रामेटिकली अपनी वॉइस को आप उसमें अच्छे स्वर, और आप सोचेंगे स्वर मतलब मॉड्यूलेशन से भी मेरा मतलब है अच्छी जुबान, अच्छी भाषा का प्रयोग, क्योंकि देखिए ये एक प्रोफेशन है। तो हमसे बहुत से लोग सीख रहे होते हैं। एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगी। आकाशवाणी रामपुर में एक प्रोग्राम चल रहा था आपकी फरमाइश, तो एक किस आए वो कहने लगे कि आप क्या है कि अनाउंसर है, उन्होंने आपकी फरमाइश मेरे नाम को जलील कर दिया और मेरा नाम जलील है। अब देखिए ये चूंकि मैं तो जानती थी, मैंने कहा मैं माफी चाहती हूँ, ये छोटे नुक्ते मैंने सब रेडियो से सीखे हैं। जलील है, जलील है, गम है, गम है, जिंदगी है, ख्वाब है, ये सब चीजें रेडियो के लिए, किसी भी ब्रॉडकास्टिंग के लिए, किसी भी मीडिया में जाने के लिए, अगर आप अनाउंसर बनना चाहते हैं, अनाउंसर के साथ साथ अगर आप मीडिया कर्मी हैं तो आपको जरूर जरूर जरूर आना चाहिए सारी चीजें, तभी तो आप न्यू कमर्स को सिखा पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे कोई बोलने के लिए कह दे तो मैं कई घंटों बोल सकती हूँ, लेकिन समय का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। मैं तो कहूंगी तुम जियो हजारों साल, इस गाने से मैं अंत करना चाहूंगी। 90 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः अनेकानेक बधाइयां। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50 हजार, सो हैप्पी 90th एनिवर्सरी।
1: रेडियो केवल एक माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं का वो पुल है जो अनगिनत दिलों को जोड़ता है, और इस पुल की सबसे खूबसूरत कड़ी होती है अनाउंसर। उसकी आवाज़ में अपनापन होता है, शब्दों में मिठास होती है, और अंदाज में ऐसा जादू कि श्रोता अनदेखे चेहरे से भी गहरा रिश्ता बना लेते हैं। अनाउंसर शब्दों का जादूगर होता है, उसकी भाषा सरल एवं सौम्य होती है, लेकिन उसका असर दिल तक उतर जाता है और वो बिना दिखे लाखों चेहरों पर मुस्कान ला देता है। इन्हीं गुणों के धनी जो हमारे केंद्र पर लंबे समय तक अनाउंसर के रूप में कार्य किया, जिनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है, और वर्तमान में आकाशवाणी लखनऊ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सुरेंद्र राजेश्वरी।
2: जो घर में उजालों की तरह बिखरती रही, जो घर में उजालों की तरह बिखरती रही, वही आवाज सदियों तक आकाशवाणी कहलाती रही। ये आकाशवाणी है। जब रेडियो पर किसी मधुर आवाज में ये सुनाई देता था, तब केवल शब्द नहीं गूंजते थे बल्कि पूरी भारत की आत्मा बोल उठती थी। आज 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा पर आकाशवाणी एक संस्था नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय की यादों, भावनाओं और संस्कारों का जीवंत इतिहास बन चुकी है। एक समय था दोस्तों कि जब गांव के चौपालों से लेकर शहर की बालकनियों तक, घर हो, चाय की दुकान हो या पान की दुकान हो, हर शाम रेडियो के इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते थे। हर वर्ग का श्रोता अपनी पसंद के कार्यक्रमों को सुनने के लिए बेताब रहता था। आकाशवाणी की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है उसकी आत्मीयता, शब्दों में अपनापन, उच्चारण में शुद्धता, प्रस्तुति में आकर्षण। उद्घोषक आकाशवाणी की रीढ़ है, उसकी पहचान है। मेरा सौभाग्य है कि मैं सन 1985 से आकाशवाणी अल्मोड़ा से बतौर आकस्मिक उद्घोषक के रूप में जुड़ा। फिर 1995 में आकाशवाणी रामपुर में नियमित उद्घोषक के रूप में मेरा चयन हुआ और 2020 से आकाशवाणी लखनऊ में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मैं बचपन से ही आकाशवाणी के कार्यक्रमों को, खासतौर पर जो फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम होते थे, उनको अक्सर सुना करता था। उस जमाने में मैं केवल दो ही केंद्र के कार्यक्रम ज्यादा सुनता था, एक तो उर्दू सर्विस और दूसरा आकाशवाणी रामपुर। ये आकाशवाणी का कौन सा केंद्र है, बिना मीटर बैंड देखे मैं पहचान जाता था कि आकाशवाणी रामपुर है, क्योंकि रामपुर की जो मखमली आवाज़ें, दिल को छू लेने वाली आवाज़ें, जिनमें जनाब मरहूम मोहम्मद अली मौ साहब, मरहूम विनोदानंद दयाल साहब, मरहूम चंद्रमोहन सक्सेना जी, मरहूम अंजलि वाजपेयी जी, ये वो आवाज़ें थी जिनसे आकाशवाणी जाना गया, पहचाना गया। आकाशवाणी रामपुर ने बीते इन वर्षों में कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण धारावाहिकों का निर्माण किया, जिनमें राजूला मालूशाही, जो कि उत्तराखंड के कत्तूर वंश पर आधारित धारावाहिक था, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, ये धारावाहिक जिगर मुरादाबादी के जीवन पर आधारित था, सिमटती बस्तियां, ये बड़ा ऐतिहासिक धारावाहिक था जिसमें थारू और बोक्सा जनजाति पर, उनकी संस्कृति और सभ्यता पर विशेष रूप से तैयार किया गया था। महिला सशक्तिकरण पर एक धारावाहिक तैयार किया था आकाशवाणी रामपुर में हम सब ने, लक्ष्मी, बहुत हिट हुआ, बहुत सराहा गया। एक नाटक गर्ल चाइल्ड पर भी हमने बनाया था जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला, ये रामपुर के लिए बहुत बड़ी बात थी। रामपुर आकाशवाणी की सेवा के दौरान मुझे सौभाग्य मिला कि मैं कई महान विभूतियों से मेरी मुलाकात हुई, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिनमें मशहूर गीतकार मरहूम गोपाल दास नीरज जी, मरहूम प्रोफेसर शहरयार साहब, भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, उनसे साक्षात्कार का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे आकाशवाणी के 90 वर्ष के जश्न का भागीदार बनाया और रामपुर के उन तमाम हिंदी के, उर्दू के साहित्यकारों को, गीतकारों को, गायक कलाकारों को और रामपुर के श्रोताओं को आकाशवाणी के 90 वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद।
1: अनाउंसर वो कलाकार है जो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि भावनाओं को जीता है। कभी उसकी आवाज सुबह की ताजगी बन जाती है तो कभी रात की तन्हाई में सुकून का साथी। वो कोई भी कार्यक्रम सुनवाए या गीतों का परिचय दे, हर शब्द में एक आत्मीयता होती है। उसकी आवाज़ सुनते ही लगता है जैसे कोई अपना हालचाल पूछ रहा हो। आकाशवाणी रामपुर में कार्यरत रहे उद्घोषक के पद पर श्री एस के नोटियाल जी।
3: आकाशवाणी वो नाम जिसकी आवाज़ कानों में पहुंचते ही अपनी ओर खींच लेती है, जिसको आम आदमी रेडियो स्टेशन के नाम से जानता और पहचाना। शिक्षा, सूचना और मनोरंजन का सबसे सशक्त माध्यम बना आकाशवाणी। सुरीली आवाज़ों का खजाना है आकाशवाणी। आकाशवाणी अपने सुहाने सफर के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे करने जा रही है। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग के नाम से आरंभ होकर ऑल इंडिया रेडियो एवं आकाशवाणी बना। वे हसीन पल, वो स्वर्णिम दौर, जब देश की 99% आबादी तक पहुंचती थी आकाशवाणी। श्रोता अपनी पसंद के कार्यक्रम सुनने के लिए अपना ट्रांजिस्टर यानी रेडियो ट्यून करके बैठ जाते थे। एक दौर था जब प्रोग्राम सुनने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। समय परिवर्तन के साथ परिस्थितियां बदलती गई, साथ ही आकाशवाणी ने समय के साथ अपने आप में भी परिवर्तन किया है। डिजिटल दुनिया के दौर में आकाशवाणी भी पीछे नहीं रहा। वह भी आम जन मानस

0: कसौनी नजीबाबाद उत्तर प्रदेश में 2024 में संपन्न हुआ है। दो राज्यों और चार केंद्रों का यह सफर बहुत ही यादगार रहा है। प्रयास और निवेदन करते रहे हैं। कुछ श्रोता तो अभी भी मुझे कभी कभी फोन करके पुरानी बातें याद दिलाते रहते हैं। मैं आकाशवाणी और श्रोताओं का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे अपनी पहचान बनाने का अवसर प्रदान किया है। राजस्थान में रहकर राजस्थानी भाषा सीखने का सुअवसर प्राप्त हुआ तथा आकाशवाणी से राजस्थानी भाषा में प्रोग्राम प्रस्तुत करने का श्रोताओं के दिल में अपनी और आकाशवाणी की जगह बनाई, क्योंकि आकाशवाणी चूरू उस समय नया केंद्र था। यहाँ से ये सफर 2006 तक जारी रहा। आकाशवाणी रामपुर के सफर में 2006 से 2018 तक 12 वर्षों का मेरा योगदान रहा। हेलो रामपुर स्वास्थ्य कानून कल्याण कार्यक्रम का प्रोडक्शन प्रस्तुतिकरण उद्घोषक ड्यूटी के अलावा डीओ ड्यूटी डिजिटाइजेशन के कार्य में भी मेरा योगदान रहा है। इसके साथ ही अनेकों कार्यक्रमों के निर्माण प्रस्तुतिकरण और प्रसारण में भी मैंने अपना योगदान दिया है। 1965 से आज तक आकाशवाणी रामपुर अपने दामन में बहुत सी ऐतिहासिक आवाज़ों की यादें समेटे हुए हैं। इन यादगार लम्हों से रेडियो तरंगों के माध्यम से श्रोताओं के जहन में आकाशवाणी रामपुर ने अपनी जगह बनाई है। आज भी आकाशवाणी रामपुर श्रोताओं के दिल में धड़कता है। आकाशवाणी के 90 वर्ष के सफर में मेरा यानी कि एसके नोटियाल का भी योगदान रहा है। इस सफर में मुझे जो मान सम्मान प्राप्त हुआ है उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार।
1: रेडियो अनाउंसर वास्तव में वो दीपक है जो शब्दों की रोशनी से मन को प्रकाशित करता है। उसकी आवाज में संगीत है, उसकी शैली में संस्कृति है और उसकी प्रस्तुति में जीवन की मिठास। ऐसे कलाकारों की तारीफ में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। इसी क्रम में हमारे साथ हैं आकाशवाणी रामपुर पर उद्घोषिका के पद पर कार्यरत रहीं श्रीमती रजनी श्यामल दत्ता।
2: सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ रजनी श्यामल दत्ता। पहचाना तो ज़रूर होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8 जून 2026 को हम सबकी आकाशवाणी अपनी उम्र के लंबे पड़ाव में 90 वर्ष की हो जाएगी। सन 1936 में आकाशवाणी ने अपना सफ़र शुरू किया था। गौर करने की बात है, जब मैंने जन्म लिया तो देश में आकाशवाणी गूंज रही थी। आकाशवाणी के साथ मेरा सफ़र शुरू हुआ था 1977 में आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, और इसके बाद मेरा सफ़र जल्दी ही आगे बढ़ा। 1979 में मैं आ गई आकाशवाणी रामपुर में। जानते हैं, लगा मुझे कि आकाशवाणी रामपुर के श्रोताओं ने अपनी पूरी बाहें फैलाकर दिल से मेरा स्वागत किया हो। लेकिन वो दिन भी आ गया जब आकाशवाणी ने मुझे कहा, चलिए बढ़िए आगे, अभी आपका सफ़र बाकी है। 1979 से लेकर 1988 तक मैं रही राष्ट्रीय प्रसारण सेवा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रसारण सेवा में मेरा सौभाग्य था कि प्रथम प्रसारण में मेरी ही आवाज़ आकाशवाणी पर तैरी और जन जन तक पहुंची। बात करूं आकाशवाणी रामपुर की, तो 1979 से 1988 तक आकाशवाणी रामपुर से मैंने अनेकों कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जो भी उस समय कार्यक्रम होते थे, फरमाइशी हो, उर्दू मैगजीन हो, हिंदी के प्रोग्राम्स हो, बहनों के कार्यक्रम हों,

0: समय समय पर होने वाले विशेष कार्यक्रम हो, फीचर हो, बहुत सारे नाटकों में मैंने अपनी भूमिकाएं अदा की। लेकिन यहाँ मैं उन साथियों को भी याद करना चाहूंगी जिन्होंने मेरा साथ दिया। यहाँ मैं अपने उन साथियों को याद करना चाहूंगी जिनके साथ मैंने अनेकों अनेक प्रोग्राम किए। श्री विनोद आनंद दयाल साहब, श्रीमती अंजलि बाजपेयी जी, मोहम्मद अली मौज साहब और चंद्रमोहन सक्सेना जी, इन सबकी आवाज़ों में एक अलग अलग खूबसूरती थी। और मुझे खुशी है इस बात की कि इनमें से जब भी मैं किसी के साथ कोई प्रोग्राम पेश करती थी तो पिघली हुई मोम की तरह मेरी आवाज़ इनकी आवाज़ में समाहित हो जाती थी और वही आकर्षण का एक केंद्र बनता था श्रोताओं के लिए। चलिए लौटते हैं अतीत की यादों से और सामने जो खड़ा है खुशी से उसका स्वागत करते हैं। 8 जून 2026 में हमारी प्यारी आकाशवाणी अपने अद्भुत प्रसारण के 90 वर्ष पूरे करेगी। इस उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी रामपुर के सभी श्रोताओं को बड़े आदर के साथ सिर झुकाकर हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। चलते चलते बस एक कसक जो दिल में रह गई है वो आपसे बांटना चाहती हूँ। जब तक मैं आकाशवाणी रामपुर में रही वहाँ पर आज की टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम नहीं होते थे। फोन इन कार्यक्रम था ही नहीं। अगर फोन इन कार्यक्रम होता तो श्रोताओं सच कहती हूँ आपकी यादों के साथ आपकी आवाजें भी मेरे दिल की आकाशवाणी में महफूज होती।
1: प्रस्तुतकर्ता की भूमिका एक पुल की तरह है जो जटिल शास्त्रीय संगीत कलाओं को आम जनता की समझ के अनुकूल बनाकर पेश करता है। इसी क्रम में हमारे साथ हैं आकाशवाणी पर केंद्र निदेशक के पद पर कार्यरत रहे श्री कृष्ण गोपाल सिन्हा।
2: सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं, आकाशवाणी से जुड़े सभी कलाकारों, वार्ताकारों और कर्मियों को अपनी शुभकामना देता हूँ। आकाशवाणी से जुड़े होने के नाते इतनी स्मृतियाँ हैं, इतने संस्मरण हैं, इतनी यादें हैं जिन्हें सहेजना और व्यक्त करना थोड़ा कठिन लग रहा है। पल पल की बातें पूरी तरह याद हैं, विचलित नहीं होता, फिर भी उन्हें सहेजना और समेटना थोड़ा मुश्किल लगता है। 1971 से लेकर 2005 तक 35 सालों की सेवा में जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने पाया, जो मैंने अर्जित किया, अपने वरिष्ठतम अधिकारियों से, सहकर्मियों से, लोगों से, कलाकारों से, कवियों से, शायरों से, जो भी केंद्र से जुड़े हुए लोग रहे, उनके प्रति मेरा संस्मरण बिल्कुल जीवंत है और मैं सबके साथ आज भी महसूस करता हूँ। पूरे 10 केंद्रों पर मैं रहा। शुरुआत मैंने आकाशवाणी चंडीगढ़ से किया, उसके बाद मैं रोहतक आया, रोहतक से जयपुर गया, जयपुर से 1983 में मैं रामपुर आया, रामपुर से 89 में मैं रांची गया, रांची से फिर मैं सासाराम आया, सासाराम से बरेली आया, बरेली में 2 या 3 बार रहा, फिर मैं इस बीच नजीबाबाद गया, मेरा स्थानांतरण दिल्ली भी हुआ और फिर मुझे दिल्ली से बरेली आने का मौका मिला और बरेली से ही मैं नया अवकाश प्राप्त किया। एक बड़ी सुखद अनुभूति रही, अनुभव रहा। इतने सारे विभाग, इतने सारे लोग, इतने सारे क्षेत्र, इतनी सारी विधाएं, इतनी सारी कलाएं, इन सारों का एक साथ जो है वो उन्हें महसूस करना और बताना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। खैर, ये हमारे जो साथी थे और हैं, उनका सहयोग, उनका सौहार्द और अपने वरिष्ठतम निदेशकों, उप महानिदेशक, निदेशक, महानिदेशक, इन सबकी कृपा का मैं पात्र भी रहा। कोई कठिनाई नहीं आई, अनुभव बहुत हुए। 1971 में जब मैंने चंडीगढ़ में सेवा पर मैं

0: 71 में ही दिसंबर के महीने में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जो बांग्लादेश की मुक्ति का कारण बना, और 16 या 17 दिसंबर को वो युद्ध समाप्त हुआ। सेवा में आए अभी 6 महीने ही हुए थे, मुझे अवसर मिला इन सारी परिस्थितियों में काम करने का, और जो भी मेरे वरिष्ठतम अधिकारियों ने मुझे कार्य सौंपा, मैंने पूरी कोशिश की कि उसे अच्छी तरह संपन्न करूं। मुझे चंडीगढ़ के बाद रोहतक आया, मैं रोहतक नया केंद्र था, पूरे हरियाणा के कवरेज का अनुभव हुआ, नया स्टाफ, नए निदेशक, और उसके बाद मैं यहाँ से पदोन्नत होकर मैं जयपुर गया। जयपुर का भी मेरा स्टे वहाँ पर 81 में गया था और 83 के मई महीने में मैं रामपुर स्थानांतरित होकर आया। रामपुर में 2-3 बार रहा, रामपुर से रांची गया, रांची से एक बार फिर 2008 में नजीबाबाद से मैं रामपुर के निदेशक के पद पर आया, और वहीं से मैं दिल्ली के लिए स्थानांतरित हुआ। 4 साल बाद दिल्ली ने फिर मेरे ऊपर अनुकंपा की और मुझे बरेली, जहां मेरा परिवार था, वहां मुझे स्थानांतरित किया, और मैं सपरिवार सकुशल पूरे अनुभव के साथ हर तरह से खुश अभिभूत वहां से कार्यमुक्त हुआ, और अंततः मैं लखनऊ जाकर मैं वहां स्थायी रूप से बस गया। जो इस 35 साल में मैंने अनुभव किया, उसमें इतनी संस्थाएं, इतनी विधाएं, इतनी कलाएं, इतने लोग, इतनी विभूतियां, इतने अधिकारी, ये सारों से जो जुड़ाव रहा वो अद्भुत रहा। एक बार फिर से मैं खास तौर से आकाशवाणी रामपुर के सभी श्रोताओं के साथ, सभी कलाकारों, कवियों, शायरों, लेखकों और सम्मानित सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, और उन्हें अच्छे भविष्य की उनके लिए मैं कामना करता हूं।
1: 1957 में जन्म हुआ विविध भारती का। यहां प्रस्तुतकर्ताओं ने एक नया ही रूप लिया। वो अब थोड़े अनौपचारिक, थोड़े चुलबुले और श्रोताओं के दोस्त बन गए। अमीन सयानी की वो जादुई आवाज, बहनों और भाइयों, जिसने बिनाका गीतमाला के जरिए रेडियो को हर युवा की धड़कन बना दिया। हवा महल के नाटकों में आवाज के जादूगरों ने बिना किसी सेट और कॉस्ट्यूम के केवल अपने सर अभिनय से श्रोताओं को हंसाया तो कभी रुलाया। कृषि दर्शन और देहाती प्रोग्राम में प्रस्तुतकर्ताओं ने खुद को चौपाल के मुखिया की तरह ढाला, ताकि वे किसानों से उनकी अपनी बोली और भाषा में बात कर सकें। इसी क्रम में हमारे साथ हैं आकाशवाणी रामपुर पे कार्यक्रम अधिशासी के रूप में कार्यरत रहे श्री राम स्वरूप गंगवार जी।
2: मैं राम स्वरूप गंगवार, सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिकारी। मैंने 1977 के 15 दिसंबर से सेवाएं शुरू की थी। उस समय हमारे आकाशवाणी की बड़ी मान्यता थी, बहुत लोग सुनते थे, और उस समय का जो कृषिगत कार्यक्रम होता था उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उसकी एक वजह थी कि आज किसान के पास कोई और ऐसा माध्यम नहीं था जो उनको खेती की नई नई जानकारी दे सके, सूचना उपलब्ध करा सके। ऐसे में आकाशवाणी ही एक माध्यम था। उस समय हम किसानों के बीच जाते थे, किसान हमारे पास आके बैठते थे, काफ़ी बातें करते थे, उनको कोई चीज़ बताते थे तो वो तुरंत उसको अपनाते थे। अगर हम ये कहें कि आकाशवाणी की देन ये थी कि हरित क्रांति को फैलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1964 में जब हरित क्रांति आई, देश में खाद्यान्न का संकट था, नई नई प्रजातियाँ आईं, उनकी खेती के बारे में हमने किसानों को बताया और किसानों ने उस तकनीक को अपनाया। मुझे याद है कि बहुत पहले गेहूं की एक वैरायटी आई थी जो कि विदेश से आयातित की गई थी, उसका नाम था लर्मा राजू, और एक अन्य वैरायटी उसी के साथ आई थी, सोनोरा 64। उस समय गेहूं की जो दाना होता था वो लाल रंग का होता था, रोटी कुछ कड़ी होती थी, उपभोक्ता उसको कम पसंद करते थे। जब जर्म प्लाज इन दोनों वैरायटियों को हमारे वैज्ञानिकों को मिला, तब उन्होंने संशोधन किया और गेहूं का रंग पहले लाल से उन्होंने भूरा सा कर लिया, और उससे उत्पादन अच्छी तरह मिलता रहा।

0: हाँ, पहले जो वैरायटी आई थी नई नई विदेश से, उनकी एक खासियत थी कि उनकी जड़ें काफ़ी फैलती थी, नीचे तक जाती थी, और वो जड़ें जो हैं वो पोषक तत्व ज़मीन से ज़्यादा लेती थी, और पौधे जो हैं वो जड़ों की वजह से स्थिर रहते थे, गिरने की समस्या नहीं थी, ऊंचाई भी थोड़ी कम थी। हम इन वैरायटियों के प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव जाते थे। किसान उस समय बीज कम था तो डिबलर विधि से एक एक दाना करके खेत में बोते थे, उससे बहुत ब्यांत होते थे, बड़ी बम्पर पैदावार मिलती थी, पानी एक दो लगा लेते थे। तो हुआ ये कि धीरे धीरे धीरे धीरे किसानों ने देसी प्रजातियां गेहूं की बोना बंद कर दी, और फिर गेहूं की पैदावार इतनी कर दी कि हमारे गोदामों में आज रखने की जगह नहीं है। इसी तरह चावल की नई नई प्रजातियाँ आई, जिनका प्रचार प्रसार हमने गाँव गाँव जाकर किया। एक पुरानी बहुत प्रजाति थी जो विदेश से आयातित थी, उसका नाम था टाइचुंग नेटिव वन, ये जापानी प्रजाति थी। तो इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी होती थी, और विपरीत परिस्थितियों में भी ये हमारे यहाँ अच्छी पैदावार देने लगा। धान की जापानी विधि से रोपाई, जिसको आज हम रोपाई विधि से धान कहते हैं, इस पद्धति को भी रेडियो ने जन जन तक पहुँचाया। तो इसका सबका श्रेय आकाशवाणी को ही जाता है। आकाशवाणी में निरंतर पिछले विगत बहुत वर्षों से लगातार उन्नति की है। किसानों को मनोरंजन के लिए हमने लोक संगीत को घर घर तक पहुंचाया। रेडियो ने इतनी ख्याति दे दी थी हम लोगों को कि हम कुछ लोग तो हमको जो है वो तमाम तरह के नामों से जानते थे, देखने को लालायित रहते थे। वो जमाना था आकाशवाणी का। आज भी कृषि के क्षेत्र में आकाशवाणी का अतुलनीय योगदान है। लोग आकाशवाणी के प्रसारण के 90 साल पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं।
1: आज जब हम 2026 में बैठे हैं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, हमें गर्व होता है। आज के प्रसारक केवल स्टूडियो तक सीमित नहीं हैं, वे पॉडकास्ट बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर लाइव जा रहे हैं, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया भर के लोगों से जुड़ रहे हैं। आज इसी क्रम में हमारे साथ हैं आकाशवाणी रामपुर पर केंद्र निदेशक के पद पर कार्यरत रहे श्री सरवत उस्मानी जी।
2: मैं सरवत उस्मानी आकाशवाणी रामपुर में स्टेशन डायरेक्टर रहा, और भी कई मकामात पर मेरी पोस्टिंग रही। थोड़ा बहुत तजर्बा मैंने भी हासिल किया है। इस मौके पे आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है, ये जानकर बहुत खुशी हुई। सभी श्रोताओं को, सभी कर्मचारियों को, सभी ऑफिशल्स को मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग इसी तरह तरक्की करते रहें। ये सच है कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में थोड़ा रेडियो की लिसनिंग पे फ़र्क तो ज़रूर पड़ा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो लोग रेडियो की इफादियत अहमियत को आज भी समझते हैं, आज भी जानने की कोशिश करते हैं, तो वो इस बात पर यकीन ज़रूर करेंगे कि इसकी एक अपनी अहमियत है रेडियो की। रेडियो बहुत हद तक अपनी गरिमा के अंदर काम करता है। मेरा सभी से ये निवेदन है कि वो रेडियो सुने, कम वक्त में अच्छी मालूमात, वैरायटी बहुत है। आप किसान का प्रोग्राम सुनना चाहें, किसान का, बच्चे अपना सुनना चाहें, बच्चों का, जवान अपना सुनना चाहें जवानों का, हर तरह के, हर तबके का मटेरियल उस पर मौजूद है, वो सुन सकते हैं। यहाँ तक कि गृहिणी जो किचन में काम करती हैं वो भी रेडियो सुनकर बहुत सी चीज़ें सीख सकती हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी बात लगती है रेडियो की, आकाशवाणी के, कि ये लोगों में संस्कार पैदा करता है, जो संस्कार की आजकल बेहद कमी है। बहुत कम, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी बहुत कम आजकल इस तरफ तवज्जो दी जा रही है। संस्कार की एक अपनी अहमियत है जो ना हमें किताबों से मिल सकती, ना हमें तकारीर से मिल सकती। अब रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो हमें जानकारी भी देता है, हमारी सेहत के बारे में भी चिंतित है, जो हमारे संस्कारों के बारे में भी चिंतित है, जो हमारे रोज़मर्रा के किचन के में पकने वाले खानों के बारे में भी चिंतित है, जो हमें कानूनी सलाह भी देता है, जो हमें बताता है कि हम जिंदगी को कैसे जिए, अपने बड़ों का आदर कैसे करें, इंटरटेनमेंट भी इस कदर कराता है हमारा। और बहुत मतलब ये कि एक जब जी चाहे आप इसको बंद भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप देखे जा रहे हैं, आप काम करते वक्त भी इसे सुन सकते हैं। तो ऐसा माध्यम है रेडियो जो हमारा वक्त बहुत बचाता है और हमें बहुत कुछ कम समय में बहुत कुछ देकर जाता है। मेरी पोस्टिंग थी, मैं अपना तजर्बा बयान करता हूँ, दिल्ली में थी। तो दिल्ली में गुजरात से दो साहब आए, काफ़ी पैसे वाले थे, आके मेरे कमरे में बैठे। तो मैंने उन्हें समय भी दिया, बताने लगे कि भाई रेडियो सुनता हूँ मैं, बहुत बड़ा दीवाना हूँ रेडियो का, और मेरे घर में हर चीज़ है, सीडी भी है, सीडी प्लेयर है, गानों का ये भी है वो भी है, सारी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध हैं, लेकिन मैं रेडियो सुना करता हूँ। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, आप सुनते हैं, ये हमारे फख्र की बात है। बस उन्होंने ये कहा कि मुझसे कि गुजरात में हमें रेडियो साफ नहीं सुनाई दे रहा, तो इसका टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, ज़रा आप इसको देखें। मैंने कहा वैसे तो मैं प्रोग्राम का आदमी हूँ, लेकिन आपकी शिकायत ज़रूर टेक्निकल स्टाफ तक पहुंचा दूंगा। मैंने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करा, कम से कम आप यहाँ चल के आए, और अच्छा लगा आपसे मुलाकात हो गई, अपने लिसनर से एक मुलाकात हो गई इस बहाने। लेकिन आप मुझे ख़त भी लिख सकते थे, और आप रेडियो सुनते हैं बहुत अच्छी बात है, ये इस दौर में भी बहुत दीवाने हैं, और बहुत से लोग लिखते नहीं लेकिन रेडियो सुनते हैं। 90 साल हो गए ऊपर वाला रेडियो को ऐसे जीवित रखे।
1: जब हम आकाशवाणी के 90 वर्षों के मील के पत्थरों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि आकाशवाणी केवल एक ट्रांसमिशन टावर नहीं है, ये उन हजार प्रस्तुतकर्ताओं, उद्घोषकों, समाचार वाचकों और प्रसारकों का पसीना, उनकी मेहनत और उनकी आवाज़ की तपस्या है। इसी क्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर करुणा शंकर दुबे।
3: मैं चूंकि बहुत दर्शन का विद्यार्थी था, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी था, क्योंकि मैं वैदिक संस्कृत का और लौकिक संस्कृत का विद्यार्थी था, मैं हिंदी का भी विद्यार्थी था, तो मेरे साथ दो तीन भाषाएं अपने आप से पारंपरिक रूप से प्राप्त थी। और मैं बनारस का था, तो बनारस में एक गंगा जमुनी तहजीब है, तो मैं उस तहजीब का था। और रामपुर अपने आप में एक अलग तरह का शहर है। रामपुर समझिए कि सारे नवाबों की के नवाब की का शहर है। वहां पर सारे नवाब जो है, देश के सारे नवाब, उनका जो है जो सबसे बड़ा नवाब है वो वहां रहता है। तो मुझे उस मान मर्यादा को भी बना करके रखना था, तो उस मान मर्यादा के ध्यान में रखते हुए मैंने जो है सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि कोई चीज छूट न जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने उसी गंगा जमुनी तहजीब, क्योंकि कोसी एक ऐसी नदी है जो पहाड़ से उतरती है, मैदान में आती है, और राम की गंगा बहती है उस क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ गंगा राम गंगा है जो निकलती है तो बरेली तक चली जाती है। तो और रामपुर एक आकाशवाणी ऐसी है जो किसी जमाने में पहाड़ के क्षेत्र में भी बहती थी, मैंने सुनाई पड़ती थी, समझ लीजिए कि कुमाऊं मंडल में भी उसका प्रसारण क्षेत्र था, और उसका प्रसारण क्षेत्र पूरे मैदान तक था, सबसे बड़ा क्षेत्र था। देश की आज़ादी से पहले अगर हम बात करें तो उसका प्रसारण क्षेत्र बहुत बड़ा था, क्योंकि मैं लखनऊ से आया था तो मुझे मालूम था कि रामपुर कितना बड़ा क्षेत्र था। एक जमाना था कि आकाशवाणी लखनऊ में जो प्रसारण होता था उसमें रामपुर का योगदान जो है हर हफ्ते नियमित रूप से उर्दू के कार्यक्रम नियमित रूप से आते रहे, क्योंकि रामपुर की जो भाषाई संस्कृति है वो अलग तरह की थी। रामपुर तो अपने आप में वो अपने माम के बागों के लिए जितना मशहूर है, उतना ही हमारे जो आकाशवाणी के बागवान हैं उन लोगों ने भी उमदा किस्म के मीठे प्रोग्राम दिए हैं, ये रामपुर की उपलब्धि है।
1: 90 साल, एक लंबा सफर, कई आवाजें इस सफर में हमारे साथ जुड़ी तो कई आवाजें समय के साथ शांत हो गई, लेकिन उनका असर, उनकी वह आत्मीय स्पर्श आज भी हमारे दिलों में बसा है। उन तमाम अनाउंसर्स, प्रोड्यूसर्स और प्रसारकों को आज हम सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल उन बंद साउंड प्रूफ स्टूडियोज में गुजार दिए, ताकि बाहर की दुनिया तक एक खूबसूरत और भरोसेमंद आवाज पहुंच सके। और सबसे बड़ा शुक्रिया आपको, हमारे श्रोताओं को, आपके प्यार ने, आपकी फरमाइशों ने और आपके इस अटूट विश्वास ने ही प्रस्तुतकर्ताओं को जीवंत रखा है और आकाशवाणी को भारत की आवाज़ बनाए रखा है। ये 90 वर्ष का पड़ाव एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जब तक हवाओं का वजूद है, तब तक आवाज़ों का सफ़र और हमारे प्रसारकों का आपसे ये संवाद जारी रहेगा। खुश रहिए, आबाद रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: अभी आप सुन रहे थे रूपक। आपने सुना इसमें आज आकाशवाणी आवाज़ों में बसी यादें, वाचन एवं संकलन सुनील सक्सेना का और आलेख एवं प्रस्तुति अवधेश कुमार गौतम की थी। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11 बजे हैं। अब दिल्ली केंद्र से समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज चैट बाय अपराजिता नायर। India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes marked the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dongyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
2: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
3: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honored with the Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Goyal said, "This is an acknowledgement of the immense contributions of India's farmers, fisherfolk, scientists and other workers in the agriculture sector." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has also expressed happiness over the conferment of FAO's honor to Prime Minister Modi. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabanna during a handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action and coordination with the Border Guards Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA provided they had entered India before 31st of December 2024. India is said to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations in its report projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Pitele, briefing reporters on the mid-year update to the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Cyprus President Nikos Christodoulides, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai this evening for a three-day official visit to the country. He was warmly received at the airport by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma and Chief Minister Devendra Fadnavis. The swearing-in ceremony of the newly elected members of the 16th Puducherry Legislative Assembly was held today at the Assembly Hall. Pro Tem Speaker A. Anbalagan administered the oath to the newly elected members of the Legislative Assembly. In IPL cricket, Mumbai Indians have set a target of 148 runs for Kolkata Knight Riders at the Eden Gardens in Kolkata tonight. In reply, KKR were 51 for 2 in 6 overs when reports last came in. Put into bat, Mumbai Indians posted 147 runs for the loss of 8 wickets in the allotted 20 overs. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl. Tomorrow, Gujarat Titans and Chennai Super Kings will clash at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad at 7:30 p.m. local time. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11:10 हुए हैं। हमारी द्वितीय सभा के कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होते हैं। इन्हीं मीटर्स पर कल सुबह 5:55 पर अपनी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।